मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की तीसरी तिथि, तदनुसार 24 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:55 और 55 सेकंड सो रहे हैं। आरंभ होती है आज की प्रातःकालीन सभा।

ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रकृति का मनमोहक और संजीवनी रूप, प्रातः की सुंदर बेला। पूर्व

0: दिशा से बिखरती सुनहरी किरणें, पंछियों का मधुर कलरव, मंद मंद बहती शीतल हवाएं, जो संदेश देती हैं कि मन को असीम शांति से सराबोर करें और सकारात्मक ऊर्जा का समावेश करें, प्रातः की सुंदर बेला का आनंद लें। तो उठिए, जागिए और सकारात्मक बेला का आनंद प्राप्त कीजिए। श्रोताओं, हम भी आ चुके हैं स्टूडियो लेकर आपके लिए मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ। आप सभी को सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। श्रोताओं, आप रेडियो सेट को ऑन कर चुके हैं, अपनी दिनचर्या को आरंभ भी कर चुके हैं और आपको इंतजार होगा देश दुनिया में हो रही गतिविधियों को जानने का। तो सुन लेते हैं समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे। श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को होगी। बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बोइंग कंपनी के वैश्विक लोक नीति और व्यावसायिक रणनीति के कार्यकारी उपाध्यक्ष जेफ शौकी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विमानन और अंतरिक्ष निर्माण क्षेत्र में भारत अमरीका सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा और टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। इस समझौते के लिए नियम और शर्तें इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी। श्री गोयल की यात्रा के दौरान बातचीत का एक और दौर ओटावा में आयोजित किया जाएगा। दोनों पक्ष इस वर्ष के अंत तक एक संतुलित और आपसी हित के समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के अंतर्गत भूमि मामलों से जुड़े 5वें उपकार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। रक्षा मंत्रालय के अपर जन सूचना महानिदेशालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सहयोग के नए तरीकों की तलाश के लिए शत्रुजीत ब्रिगेड का भी दौरा किया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जुलाई तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना

0: योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल चार आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिशेख और तौसीफ अतहर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ में, जिसे आज आपके साथ प्रेजेंट करेंगी वैशाली। श्रोताओं, समय हुआ है सुबह के 6:05 का। आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों का प्रसारण आप सुन सकते हैं न्यूज ऑन एआईआर ऐप और डीटीएच के माध्यम से भी। वक्त है कृषि चर्चा का। आज की कृषि चर्चा में हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी किसान भाइयों को बताएंगे धान की सघन नर्सरी के बारे में।
2: शुभ प्रभात। आज की कृषि चर्चा में धान की सघनीकृत जो प्रणाली है, उस प्रणाली के तहत धान की नर्सरी किस तरह हम उगाएं कि बेहतर से बेहतर हमें उत्पादन के लिए अवसर प्राप्त हो सके। सघनीकृत धान प्रणाली आप जानते ही हैं, जिसे अंग्रेजी में SRI पद्धति कहते हैं, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। इसके तहत बहुत सारी सुविधाएं, या ये कहें कि इसके तहत बहुत सारे ऐसी नवीन पद्धतियां समाहित कर खेती करने का प्रयोग किया गया और वह प्रयोग सफल जब रहा तो हमारे बीच आया। सघन धान प्रणाली में धान की किसी भी प्रजाति का प्रयोग किया जा सकता है। इसकी नर्सरी के लिए उच्च उत्पादकता वाली प्रजातियां, संकर धान इसके लिए उपयुक्त होते हैं। इस पद्धति में प्रति हेक्टेयर रोपाई के लिए 5 किलोग्राम और इतनी नर्सरी उगाने के लिए 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर्याप्त होता है। इस विधि में बीज एक दूसरे से नहीं छूने चाहिए और नर्सरी सघन नहीं होनी चाहिए। नर्सरी डालने के पूर्व 1 से 1.25 मीटर चौड़ी उपयुक्त लंबाई की क्यारियां बना लेनी चाहिए। क्यारियों की ऊंचाई जमीन की सतह से 5 से 6 इंच ऊपर रखते हैं। नर्सरी की क्यारी में सबसे पहले 1 इंच सड़ी गोबर की खाद, फिर 1 इंच मोटी उपजाऊ मिट्टी, पुनः 1 इंच मोटी सड़ी गोबर की खाद और चौथी जो परत डालेंगे वह 2.5 इंच मोटी मिट्टी की परत बनाने हैं और इन सबको आपस में अच्छी तरह फिर मिला लेना है। क्यारी के चारों तरफ लकड़ी के पटरे लगा देते हैं, जिससे अंदर की मिट्टी का बहाव न हो सके। पानी की अतिरिक्त मात्रा निकालने की व्यवस्था भी निश्चय ही आप सुनिश्चित करें। सामान्य धान नर्सरी की ही तरह अंकुरित धान को नर्सरी में छींट देते हैं। बीज के ऊपर अच्छी तरह सड़े गोबर की एक पतली सी परत फैला देते हैं। सूर्य की सीधी किरणों से बीजों को बचाने के लिए उन्हें पुआल या फिर केले के पत्ते से ढक देते हैं और बीजों के जमने के बाद उन्हें हटा लेते हैं। नर्सरी में सुबह एवं शाम हल्की सिंचाई करनी चाहिए। नर्सरी रोपाई के खेत के बीच में या मुख्य खेत के समीप होनी चाहिए। सिंचाई के लिए यह सुनिश्चित करना बेहतर हो जाता है यदि हम लकड़ी के पटरे लगा देते हैं, जिससे अंदर की मिट्टी का बहाव न हो सके। पानी की अतिरिक्त मात्रा निकालने की व्यवस्था भी निश्चय ही आप सुनिश्चित करें। सामान्य धान नर्सरी की ही तरह अंकुरित धान को नर्सरी में छींट देते हैं। बीज के ऊपर अच्छी तरह सड़े गोबर की एक पतली सी परत फैला देते हैं। सूर्य की सीधी किरणों से बीजों को बचाने के लिए उन्हें पुआल या फिर केले के पत्ते से ढक देते हैं और बीजों के जमने के बाद उन्हें हटा लेते हैं। नर्सरी में सुबह एवं शाम हल्की सिंचाई करनी चाहिए। नर्सरी रोपाई के खेत के बीच में या मुख्य खेत के समीप होनी चाहिए। सिंचाई के लिए यह सुनिश्चित करना बेहतर हो जाता है यदि हम फव्वारा विधि अपनाते हैं। इसके लिए खेत की जो तैयारी की जाती है उस पर भी ध्यान देने की जरूरत होती है। इस पद्धति से धान की खेती करने के लिए अच्छी भूमि की आवश्यकता होती है। लवणी या क्षारीय भूमि इसके लिए कदापि उपयुक्त नहीं है, क्योंकि बार बार सिंचाई एवं जल निकास के कारण घुलनशील लवण जमीन की सतह पर आ जाते हैं। इस विधि से खेती करने के लिए रोपाई के पूर्व खेत को पूर्णतया समतल कर लेते हैं। रोपाई से पूर्व खेत में प्रति हेक्टेयर 200 से 250 क्विंटल गोबर की खाद मिला लेते हैं और रोपाई से 45 दिन पहले सनई या ढैंचा, जो भी हरी खाद वाली फसल बोई गई है, उसे हरी खाद के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। इस प्रणाली में गोबर की खाद, कंपोस्ट या फिर हरी खाद का विशेष महत्व होता है, क्योंकि उर्वरकों का प्रयोग पौधों की वृद्धि की आवश्यकता अनुसार न्यूनतम मात्रा में किया जाता है। इस तरह से अगर आप धान की नर्सरी SRI पद्धति से जो करने की सोचे हैं उसे करेंगे तो बेहतर होगा। हाँ, थोड़ी सी बात और ध्यान में रखनी होती है, क्योंकि जब इसकी विशिष्टता को, इसकी अच्छाई को आप जानते हैं तो बेहतर ढंग से कर सकने की स्थिति में होंगे। प्रति पौधा 30 से 50 टिलर या 100 टिलर तक संभव होता है, जिसे हम कहते हैं कि एक थान बनता है, वह 30 से 50 पौधों का हो जाता है या फिर वह बढ़कर 100 तक पहुंच जाता है। धान जलीय पौधा होने का लोगों द्वारा विश्वास है। लगातार पानी का भराव रखा जाता है तथा खेत में लगातार पानी भरे रहना चाहिए। धान जलीय स्थिति में जीवित रह सकता है, परंतु जलीय पौधा नहीं है। धान वायु पॉकेट विकसित करने में काफी ऊर्जा खर्च करता है। पुष्पण के समय धान की 70% जड़ सिरा, जिसे होते हैं रूट टिप कह लेते हैं अंग्रेजी में, वह सड़ जाती है। तो इस प्रणाली में खेत में पानी नहीं भरा जाता, बल्कि वानस्पतिक वृद्धि के समय भूमि को नम रखना बेहतर होता है और बाद की अवस्था में मात्र 1 इंच पानी लगाया जाता है। सामान्य प्रणाली की अपेक्षा इस प्रणाली में पानी की आवश्यकता लगभग आधी हो जाती है।
1: धान की सघन नर्सरी, इस विषय पर अभी किसान भाइयों को जानकारी दे रहे थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी। आप सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ, आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। जिस व्यक्ति ने अपनी इच्छाओं को सीमित कर लिया और जो अपने वर्तमान में संतुष्ट है, उससे अधिक प्रसन्न कोई और नहीं हो सकता। आइए सुनते हैं आज का सुविचार।
3: प्रसन्नता जीवन का अद्भुत सौंदर्य है। अंतःकरण की स्थिति का दूसरा नाम प्रसन्नता है। यह चित्त हल्का करने का सात्विक भाव है। निश्चल और सरलता इसका प्रथम उपाय है। तत्काल आनंद देने के अलावा यह आयु और कीर्ति बढ़ाती है। प्रसन्नता आंतरिक संवेदना है। शरीर और मन के लिए प्रसन्नता स्वास्थ्य वर्धक और मित्र तुल्य है। यह बुद्धिमत्ता बढ़ाती है। प्रसन्नता प्राप्त करना अपने वश में है, इसके लिए बार बार सद प्रयास करना पड़ता है। ऐसा न करने पर प्रसन्नता के स्थान पर तनाव बढ़ने लगता है। आंतरिक प्रसन्नता सुखी बनाती है। बड़े दुख को छोटी प्रसन्नता कम करती है। आवश्यकताएं कम करना प्रसन्नता के लिए वरदान है। इसके रसायन में संघर्ष की सफलता का रहस्य छिपा रहता है। प्रसन्न रहने का सबसे सरल उपाय है कि कुछ समय के लिए बालक बन जाएं। सरल चित्र, आनंदमय स्वभाव वाले भगवान स्वरूप बच्चों के साथ तन्मयता में खेलकर आनंद का अनुभव करें। गीत, भक्ति रस के संगीत प्रसन्नता बढ़ाते हैं। चेतना के विकास में एक विशेष गुण जो मनुष्य को पशु से ऊपर सिद्ध करता है, वह है मनुष्य की हंसी। खिलखिलाकर हंसने का वरदान प्रकृति में मनुष्य को मिला है। यह चेतना की एक विलक्षण

0: अवस्था है। दूसरों पर हंसना पीड़ादायक है, स्वयं पर हंसना आत्मबोध। हंसी गंभीरता और मूर्खता का विलोम है। जैन धर्म का जन्म ही हंसी से हुआ। एक निश्चल निर्मल हंसी प्रज्ञा और आत्मचेतना का सबसे प्रखर रूप है। हंसी से तनाव भागता है, इसीलिए हमारे पूर्वजों ने हंसी को उत्सव ही बना दिया। कृतज्ञता, परोपकार और करुणा के बिना प्रसन्नता की हंसी नहीं आती। आंखें मिलाकर प्रसन्नता मिलती है। सच्ची हंसी की भाषा आह्लाद के व्याकरण से जन्म लेती है। हंसने के समय मनुष्य देवता हो जाता है। यह दुर्लभ संयोग दैवी गुणों के विकास से आता है। किसी के गुण की प्रशंसा करना, परोपकार करना और हंसने के भाव में विचार महान बनते हैं। हंसने की कला नैसर्गिक है, यह देव दुर्लभ गुण बनाती है। छोटे बच्चे दिन में 300 बार हंसने के कारण ही ईश्वर के रूप कहलाते हैं। वयस्क मात्र 17 बार हंसते हैं। दिन में कम से कम 3 बार खिलखिलाकर हंसने वाले चिकित्सक के पास नहीं जाते। हंसना व्यायाम है, इससे रस ग्रंथियां पाचक रस का निर्माण करती हैं। हंसना सकारात्मक और रचनात्मक क्रिया है, इससे एंडार्फिन दर्द निवारक रसायन का स्राव होता है। प्रसन्नता से जीवन के रंग खिल उठते हैं। यह एक नैसर्गिक उपहार और शाश्वत आनंद है। हम जितनी अधिक प्रसन्नता और हंसी लुटाते हैं, वह उससे अधिक हमारे पास आती है। प्रसन्नता से परिपूर्ण व्यक्तित्व सम्मोहित करता है। हंसी मन की गांठें खोलती है। हंसने से फेफड़े दृढ़ होते हैं। प्रसन्नता यौवन का सिंगार है, यह लक्ष्य प्रदान करके निंदा निराशा से बचाती है। हंसना जीवन में एक योग है। हंसते समय नकारात्मक भाव विस्मृत हो जाते हैं। किसी को हंसाना एक बड़ी कला है। हंसने के क्रम में आता है मुस्कराना। यह शुद्ध हृदय का स्वभाव है। प्रसन्नता रस एवं आनंद की ज्योतिर्वान रेखा है। स्वाभाविक मुस्कान अलौकिक प्रीति का संचार करती है। हंसने की कला मुखमंडल चमकाती है, इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। कठिन समस्याओं का समाधान हंसी करती है। हृदय विराट बनाने के साथ सेवा करने की प्रेरणा देती है। प्रसन्नता की हंसी जीवन में उस औषधि की तरह है जो मनुष्य के दुखों और घावों को ठीक करने में सर्वाधिक प्रभावकारी है। हंसी वह चमत्कारिक योग है जिससे अनेक समस्याओं का समाधान स्वयं हो जाता है। हंसने की मूल आत्मा प्रकृति के इंद्रधनुषी रंग में है। चाहे पहली किरण में फूलों पर गुनगुनाते भ्रमर हों, तितलियां चहचहाते पक्षी हों या मन के आंगन में खिली हुई प्रसन्नता, लय हंसी है। हंसना स्वाभाविक व्यायाम है। आकर्षित करने और संबंध को दृढ़ रखने में हंसने की कामना हर स्थिति में है। प्रसन्नता और हंसी जीवन का मंगल प्रभात है।
1: हमारे मन के भीतर की शांति और सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम है हंसने की कला। अभी आप सुन रहे थे आज का सुविचार। वाचन स्वर डॉक्टर हरिप्रसाद दुबे का था। और अब आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

ईश्वर की भक्ति ऐसा अमृत है जो हमारे मन के विकारों को दूर करके जीवन को शांति और आनंद से भर देती है। सच्ची भक्ति समर्पण है जो भक्त को अहंकार से दूर करती है और प्रभु के करीब ले जाती है। आइए प्रभु का गुणगान करें।

प्रभु की महिमा का वर्णन शब्दों में करना कठिन है। ईश्वर जिन्होंने सृष्टि को संभाला है, हम भक्तजन उनकी कृपा से ही जीवन पाते हैं।

शक्ति और करुणा का संगम, देवी माँ के शांत और सौम्य स्वरूप का अनुभव और माँ की भक्ति, माँ की कृपा से जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं।

प्रभु श्री राम जिनका जीवन ही दिशा है। कठिन रास्तों पर चलना आसान हो जाता है जब साथ हो सत्य, साहस और संयम का। प्रभु राम के कदम हमें याद दिलाते हैं कि व्यवहार में प्रेम, वचन में दृढ़ता और कर्म में शुचिता ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रभु राम नाम का स्मरण करें।

747 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र और सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ वैशाली के साथ। और अब आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। आज सुनेंगे भाग 181 में व्यथित मंत्री सुमंत्र का अयोध्या में आने और राजमहल में राजा दशरथ के दुख का प्रसंग।

शोक संताप और ग्लानि के सागर में डूबते उतराते सुमंत ने सारा दिन अयोध्या नगरी के बाहर एक पेड़ की छांव में बैठकर बिताया। जब शाम का अंधकार घिरने लगा तो उन्होंने नगर में प्रवेश किया। महामंत्री का अकेले वापस आना सुनकर रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल प्रेतों के निवास स्थल जैसे लगने लगे। सुमंत्र को मौन तथा व्याकुल देखकर रानी कौशल्या उन्हें अपने महल में लिवा ले गईं। वहां का दृश्य अत्यंत हृदय विदारक है। आभूषण रहित मलिन राजा दशरथ धरती पर पड़े हैं। वाणी के नाम पर हा राम हा लक्ष्मण हा जानकी मात्र यही शब्द सुनाई पड़ते हैं। सुमंत्र ने जय जीव कहकर प्रणाम किया तो राजा ने उठकर उन्हें हृदय से लगा लिया।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। गायक कलाकार थे महेंद्र कपूर और मिताली सिंह। आकाशवाणी की इस प्रस्तुति के संगीत संयोजक सतीश भाटिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था। मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ से वैशाली के साथ।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत समाचार।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः दिव्यानन्द झा। अथ वार्ताः। नवदिल्ल्यां हैदराबाद हाउस स्थले अद्य विदेशमन्त्री डॉ सुब्रह्मण्यम जयशंकरः अमेरिका देशीयेन विदेश सचिवेन मार्को रूबियो इत्यनेन समं द्विपाक्षिक संवादं करिष्यति। एतौ क्षेत्रीय वैश्विक शान्ति सुरक्षा संबद्धान् विषयान् समेत्य अनेकेषु भिन्न विषयेषु चर्चां करिष्यतः इति आशास्ते। अमेरिका विदेशमन्त्री गतदिने प्रातः चतुर्दिवसीय यात्रा प्रसंगे भारतं सम्प्राप्तः। द्विपक्षीय सम्बन्धान् सुदृढीकर्तुम् अपि च वाणिज्य रक्षोर्जा सुरक्षा प्राविधिकी हिन्द प्रशान्त व्यूह रचनेत्यादिषु क्षेत्रेषु सहयोग विस्तारार्थं तस्य एषा भारत यात्रा नितरां महत्वाधायिनी वर्तते। गतवासरे सः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह भारतामेरिका व्यापक वैश्विक रणनीति सन्धिं सुदृढयितुं चर्चाम् अकरोत्। प्रधानमन्त्री कार्यालयस्य विज्ञप्त्यनुसारि अमेरिका विदेश मन्त्रिणा रक्षा प्राविधिकी व्यापार निवेशोर्जा सुरक्षा सम्पर्क शिक्षा पारस्परिक जनसम्बन्धादिषु विविध क्षेत्रेषु द्विपक्षीय सहयोगस्य निरन्तर प्रगतेः विषये प्रधानमन्त्री संसूचितः। अस्मिन् अवसरे श्रीमोदी शान्ति प्रयासेभ्यः भारतस्य सतत समर्थनं पुनरुदीरितवान् अपि च सम्भाषण कूटनीति माध्यमेन विवादानां शान्तिपूर्ण समाधानाय पुनरेकदा आह्वानं कृतवान्। वाणिज्योद्योगमन्त्री पीयूषगोयलः अद्यारभ्य भारतीय व्यापार नेतॄणाम् एकेन प्रतिनिधिमण्डलेन सह कनाडादेशस्य त्रिदिवसीय

0: यात्रायां भविष्यति। वाणिज्य मन्त्रालयेन सूचितं यत् श्रीगोयलः व्यापार निवेश भारत कनाडा व्यापकार्थिक सहभागिता वार्तालापं प्रवर्तयितुं ओटावा टोरंटो नगरयोः द्विपक्षीय समागमं करिष्यति। संसदीय कार्य सूचना प्रसारण राज्यमंत्री एल मुरुगुनः अवदत् यत् प्रशासनं सप्तचत्वारिंशदधिक द्विसहस्रतम वर्षपर्यन्तं विकसितं भारतम् इति स्वप्नं साकारयितुं प्रतिबद्धमस्ति। चेन्नई स्थिते आईसीएफ इति संस्थाने आयोजितं आजीविका मेलनं संबोधयन् सः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नेतृत्वे देशः आधारभूत संरचना विकासे वृत्त्यवसराणां वृद्धौ व्यापार सुगमतायां च तीव्रगत्या प्रगतिं करोति। प्रियः श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः एफएम गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने सार्धैकवादनतः भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। भारतीयर्तु विभागेन अद्य पूर्वीयोत्तर प्रदेशाय, पूर्वीय मध्यप्रदेशाय, विदर्भाय च अतितापपरा रक्तवार्णिकी संचेतना प्रसारिता। भारतस्य उत्तर पश्चिमीय मध्य पूर्वीय दिग्विभागेषु कतिपय क्षेत्रेषु समाना एव स्थितिः आगामि सप्तदिवस पर्यन्तं भविष्यति इत्यपि विभागेन सूचितम्। अन्ते क्रीडावार्तासु, इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां गतरात्रौ लखनऊ नगरे इकाना क्रिकेट क्रीडांगणे आयोजिते द्वंद्वे श्रेयस अय्यरेण अर्जितानां एकोत्तर शत धावनांकानां बलेन पंजाब किंग्स दलेन लखनऊ सुपर जायंट्स दलं सप्तभिः क्रीडकैः पराजितम्। क्रीडान्ते अय्यरः स्पर्धा पुरुषः घोषितः। अद्यतने द्वन्द्वद्वये प्रथमं मुम्बय्याम् अपराह्णे सार्धत्रिवादने मुम्बई इण्डियन्स दलं राजस्थान रॉयल्स दलेन स्पर्धिष्यते। ततः सायं कोलकातायां कोलकाता नाइट राइडर्स दिल्ली कैपिटल्स दलयोः द्वन्द्वं भविष्यति। इति वार्ताः।
1: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ में, जिसे आपने ट्यून इन किया है 747 किलो हर्ट्ज पर। समय हुआ है सुबह के 7 बजे का और ये समय होता है स्वास्थ्य चर्चा सेगमेंट का। श्रोताओं, अगर स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखना है तो स्वच्छ और ताजा आहार बेहद आवश्यक है और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में नीना सोनकर हमारे श्रोताओं के लिए लेकर आती हैं सेहत से संबंधित कई तरह की जानकारियां। तो आज की स्वास्थ्य चर्चा में आइए जानते हैं फूड पॉइजनिंग से बचाव के बारे में, बता रही हैं नीना सोनकर।
2: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं, आज हम एक ऐसे विषय की ओर ध्यान दिलाना चाहते हैं जो हमारी रोज की दिनचर्या से जुड़ा है, लेकिन अक्सर हम इसे गंभीरता से नहीं लेते हैं। हम बात कर रहे हैं फूड पॉइजनिंग की, यानी भोजन की विषाक्तता की। ये एक ऐसी स्थिति है जो तब होती है जब हम ऐसा खाना खा लेते हैं जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या किसी भी प्रकार के विषैले तत्वों से दूषित हो चुका होता है। फूड पॉइजनिंग केवल एक असहज अनुभव नहीं है, बल्कि कई बार ये जानलेवा भी साबित हो सकती है, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के लिए। अक्सर हम देखते हैं कि गर्मियों में या यात्रा के दौरान लोग बाहर का भोजन करते हैं और कुछ घंटों के भीतर उन्हें उल्टी, दस्त, पेट दर्द, बुखार या थकान जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। ये लक्षण सामान्य लग सकते हैं, लेकिन ये संकेत होते हैं कि हमारा शरीर किसी बाहरी हानिकारक तत्व से लड़ रहा है और ये लड़ाई हमेशा आसान नहीं होती है। अक्सर फूड पॉइजनिंग का मुख्य कारण होता है दूषित पानी, अधपका या बासी भोजन, लंबे समय तक खुले में रखा भोजन या फिर खाना पकाने और परोसने में की गई साफ सफाई की लापरवाही। गर्मी और नमी वाले मौसम में ये समस्या और भी बढ़ जाती है, क्योंकि बैक्टीरिया जल्दी पनपते हैं, विशेष रूप से दूध और दूध से बनी चीजें, मांसाहारी भोजन, सलाद, कटी

0: हुई सब्जियाँ या फिर खुले में बिकने वाली चाट पकौड़ी, ये सब जल्दी खराब हो सकते हैं और इनके जरिए संक्रमण शरीर में प्रवेश भी कर सकता है। हमारे देश में कई बार भोजन को ज्यादा समय तक स्टोर करने रखने की प्रवृत्ति होती है, विशेष रूप से त्योहारों या समारोहों के समय जब ज्यादा मात्रा में खाना बनाया जाता है। अगर उस खाने को सही तापमान पर नहीं रखा गया या दोबारा गर्म करने में लापरवाही की गई, तो उसमें बैक्टीरिया तेजी से बढ़ सकते हैं। यही कारण है कि कई बार शादी विवाह या बड़े भोज के बाद कई लोगों में एक साथ पेट खराब होने की शिकायत आती है। श्रोताओं, फूड पॉइजनिंग से बचने का सबसे पहला और जरूरी उपाय है साफ सफाई, स्वच्छता। चाहे खाना बनाने वाला हो या खाना खाने वाला, दोनों के हाथ साफ होने चाहिए, बर्तन अच्छे से धोए गए हों, सब्जियां और फल अच्छी तरह से साफ किए गए हों और खाना पकाते समय कच्चे और पके हुए खाने को अलग अलग रखा गया हो। ये सब छोटी बातें हैं, लेकिन फर्क बहुत बड़ा डालती हैं। फ्रिज में रखे खाने को समय समय पर जांचना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि दिखने या सूंघने से पता चल जाए कि खाना खराब है या नहीं। कई बार नुकसानदेह बैक्टीरिया बिना किसी गंध या रंग के भी भोजन को विषैला बना सकते हैं। बच्चों और बुजुर्गों को बचाने के लिए सबसे पहले यही जिम्मेदारी हम सबकी बनती है कि हम उन्हें केवल ताजा और ठीक से पका हुआ खाना ही दें। अगर किसी को फूड पॉइजनिंग हो ही जाए तो सबसे पहले उसे शरीर में पानी की कमी न होने देना जरूरी है। बार बार उल्टी या दस्त के कारण शरीर से बहुत सारा तरल निकल जाता है, जिससे डिहाइड्रेशन हो सकता है। ऐसे में ORS, नींबू पानी, नमक शक्कर वाला पानी या नारियल पानी बहुत मददगार होता है। अगर लक्षण 24 घंटे से ज्यादा रहें, बुखार तेज हो या खून की उल्टी दस्त शुरू हो जाए, तो बिना देरी किए डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। फूड पॉइजनिंग से लड़ने के लिए हमारी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होनी चाहिए। इसलिए कोशिश करें कि आपके दैनिक आहार में विटामिन और मिनरल्स की कमी ना हो। मौसमी फल, सब्जियां, दही, छाछ और पर्याप्त पानी हमारे शरीर को बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करते हैं। दही और छाछ में प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स होते हैं, जो पेट के अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देते हैं और पाचन क्रिया को संतुलित भी रखते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे, कामकाजी लोग जो टिफिन में खाना लेकर जाते हैं या यात्रा के दौरान भोजन कर रहे यात्री, इन सभी को विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। टिफिन को सुबह बनाकर देर शाम तक बिना ठंडक में रखे खाना कभी कभी नुकसानदायक हो सकता है। बाहर खाना खाते समय ये भी जानना बेहद जरूरी है कि दुकानदार सफाई से खाना परोस रहा है कि नहीं और खाने की चीजें सही से ढकी हुई हैं कि नहीं। आज जब हम स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं, तो जरूरत है कि हम खाना केवल स्वाद से न चुने बल्कि स्वच्छता और पौष्टिकता को भी प्राथमिकता दें, क्योंकि अच्छा खाना ही तभी उपयोगी है जब वो शरीर को पोषण दे, न कि उसे बीमारी का रास्ता बना दे। श्रोताओं, अगली बार जब आप खाने की थाली सजाएं, तो स्वाद के साथ साथ सुरक्षा का भी ध्यान रखें, क्योंकि स्वस्थ रहना है तो केवल अच्छा खाना नहीं बल्कि सही, ताजा और स्वच्छ खाना जरूरी है। नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।
1: श्रोताओं, मौसम कैसा भी हो, स्वास्थ्य के लिए हमेशा उत्तम और ताजे भोजन का ही चयन करें। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज फूड पॉइजनिंग से बचाव विषय पर जानकारी दे रही थी नीना सोनकर। अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून इन किया है 747 किलोहर्ट्ज और सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ वैशाली के साथ। आपको बता दें आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। आज रात 10 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। सामयिक चर्चा में सुबह 9:15 पर सुनिएगा प्रदेश में भीषण गर्मी और हीट वेव के आम जनजीवन पर प्रभाव और बचाव के लिए प्रशासनिक इंतजाम पर शैलेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। सुबह 9:30 पर उर्दू प्रोग्राम में आकाशवाणी लखनऊ की पेशकश के तहत समाप्त फरमाइएगा दास्तान किस्सा चार दरवेश। प्रेजेंटर होंगी शाजिया खान, पेशकश आसिफ इकबाल की होगी। आज इसका पहला भाग प्रसारित किया जाएगा। पत्र के लिए

ये धन्यवाद कार्यक्रम श्रोता सुनेंगे आज शाम 7:31 पर। प्रस्तुति सुमोना एस पांडे और नीना सोनकर की होगी। आज रात 8 बजे हिंदी कार्यक्रम में सुनना ना भूलें डॉक्टर अमित राय की वार्ता, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष और अवध के क्रांतिकारी। दिन में 3:15 पर आप सुनेंगे डॉक्टर विपिन कुमार झा की संस्कृत वार्ता गंगा महात्म्य। फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का प्रसारण समय होगा दिन में 3:30। आज इस कार्यक्रम में विषय होगा अस्थि एवं जोड़ संबंधी विभिन्न रोग, कारण, लक्षण और बचाव। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर संजय कुमार श्रीवास्तव, संचालन सुभाष खन्ना का होगा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:31 पर सुनिएगा पंडित निखिल बैनर्जी का राग अहीर भैरव में सितार वादन। बाल गोपाल कार्यक्रम में

राग अहीर भैरव में सितार वादन। बाल गोपाल कार्यक्रम में हमारे नन्हे मुन्ने दोपहर 12 बजे सुनेंगे विजय वीर सहाय की वार्ता कल कल छल छल बहती गंगा। आज इतवार है, मैं दिन में 1:15 पर सुनिए विमल अवस्थी की लिखी झलकी बरखा दूर तू ना जा, निर्देशन डॉक्टर अनामिका श्रीवास्तव का है। बुजुर्गों में होने वाली आम समस्याएं, ये विषय है डॉक्टर ए के त्रिपाठी से की गई भेंट वार्ता का, जिसे आप सुनेंगे अक्षवट कार्यक्रम में आज दिन में 1:30 पर। भेंट करता होंगी नीना सोनकर। नींबू घास की उन्नत खेती, इस विषय पर सुनिएगा दीप चंद्र निषाद से की गई भेंट वार्ता विज्ञान और किसान कार्यक्रम में दिन में 2:30 पर। भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। शाम 4 बजे संकल्प कार्यक्रम में सुना ना भूलें डॉक्टर कृष्ण दत्त से की गई भेंट वार्ता दिव्यांग जन का मानसिक स्वास्थ्य, भेंट करता होंगे राघवेंद्र सिंह। लोकायतन कार्यक्रम में शाम 6:30 पर आप सुनेंगे आद्य प्रसाद सिंह प्रदीप से लोक भाषा अवधि में कहानी पाठ अनहियरिया माँ बिजुरी। शाम 6:50 पर खेती किसानी कार्यक्रम में सफलता की कहानी क्रम के अंतर्गत हमारे किसान भाई सुनेंगे कृषि विविधीकरण विषय पर अनिल कुमार सिंह से की गई भेंट वार्ता, भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। ये थे आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम, जिन्हें आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से 747 KHz पर। मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ आप सुन रहे हैं, हमारे साथ हाजिर होते हैं कुछ ही पलों में कार्यक्रम विविधा लेकर।

विविधा के सभी साथियों को वैशाली का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर किसी छोटे से पंछी के पंख घायल हो जाएं, अगर कोई प्यासा जीव गर्मी में सड़क पर पानी के लिए भटक रहा हो, या हमारी पूजनीय गौ माता भूखी होकर कचरे में खाना ढूंढ रही हो, तो कैसा महसूस होता है? हमारे मन में एक हल्की सी टीस उठती है ना? यही भावना इंसानियत की पहचान है और यही हमें बाकी जीवों से अलग बनाती है। तो आज की विविधा में बात जीवों के प्रति दयालुता, हमारा नैतिक दायित्व की। दोस्तों, ये धरती सिर्फ इंसानों की नहीं है, ये पेड़ पौधों पंछियों जानवरों और हर छोटे बड़े जीव की भी है। हम सब इस प्रकृति रूपी परिवार के सदस्य ही तो हैं, लेकिन दुख की बात तो ये है कि आज आधुनिकता की दौड़ में इंसान धीरे धीरे संवेदनहीन होता जा रहा है। कई बार हम सड़क पर घायल जानवर देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। कुछ लोग मनोरंजन के लिए जानवरों को परेशान करते हैं, कहीं पंछियों के घोंसले तोड़े जाते हैं तो कहीं पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से हमारे पंछी बेघर हो जाते हैं। नदियों नहरों में जहरीला पानी बहाकर हम मछलियों और जलीय जीवों को खत्म कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है, अगर कोई हमारे घर को तोड़ दे, हमें भूखा प्यासा छोड़ दे या हमें चोट पहुंचाए, तो हमें कैसा लगेगा? जीव बोल नहीं सकते, लेकिन दोस्तों, उन्हें भी दर्द होता है, उन्हें भी भूख लगती है, उन्हें भी डर सताता है और उन्हें भी प्यार की जरूरत होती है। भगवान बुद्ध ने सभी जीवों पर दया करने की शिक्षा दी थी। और दोस्तों, हमारे संस्कार भी तो हमें जीवों के प्रति करुणा का भाव सिखाते हैं। भारतीय संस्कृति में गाय, हाथी, नाग, बंदर, गरुण, यानी कि हर जीव को सम्मान दिया जाता है। कहते हैं हर जीव मात्र में ईश्वर का वास होता है। महात्मा गांधी ने कहा था, किसी राष्ट्र की महानता और उसकी नैतिक उन्नति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वहां जीवों के साथ कैसा व्यवहार होता है। सोचिए, अगर हम इंसान थोड़ा सा दयालु बन जाएं, तो ये दुनिया

कितनी खूबसूरत हो जाएगी। 2022 में ऑस्कर विनिंग डॉक्यूमेंट्री फिल्म द एलिफेंट विस्परर्स याद है आपको, तमिलनाडु के जंगल में एक नन्हा हाथी रघु अकेला घायल अवस्था में एक आदिवासी दंपत्ति बोमन और बेली को मिलता है। उन्होंने उसे अपने बच्चे की तरह पाला। जानते हैं रघु जब डरता बोमन उसके कान के पास कुछ फुसफुसाता और जब बोमन बीमार पड़ता ना तो रघु घंटों उसके पास खड़ा रहता। हाथी की भाषा नहीं जानते थे आदिवासी दंपत्ति, लेकिन करुणा की कोई भाषा नहीं होती। हमारे इंसान होने का सबसे सुंदर अर्थ है किसी जीव के लिए अपना दिल खोल देना। दोस्तों, यही है दयालुता की शक्ति और जीवों के प्रति दयालुता हमारा नैतिक दायित्व भी है। ऐसी ही एक मार्मिक कहानी उड़ीसा की अनाथ बाघिन खैरी की है। खैरी जब बहुत छोटी थी अपनी माँ से बिछड़ गई। उस वक्त उड़ीसा के वरिष्ठ वन अधिकारी और उनकी पत्नी ने उसे अपने घर में पाला और उसकी देखभाल की, उसे ऐसा प्यार दिया जैसा कोई अपने बच्चे को देता है। धीरे धीरे खैरी इंसानों के बीच में घुल मिल गई। सोचिए, जिस बाघ से लोग डरते हैं उसी नन्ही बाघिन के मन में प्रेम और विश्वास पैदा हो गया। पता ही क्यों? क्योंकि प्यार की भाषा हर जीव समझता है दोस्तों।

हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, अहिंसा परमो धर्मः। कई शोध बताते हैं कि जो बच्चे जानवरों के साथ बड़े होते हैं ना, उनमें एम्पैथी यानी दूसरों का दर्द समझने की क्षमता अधिक होती है। वे बड़े होकर बेहतर इंसान बनते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जीवों से करुणा का व्यवहार हमारे नैतिक दायित्वों की नींव है। ये सिर्फ उन बेजुबानों की रक्षा नहीं है, ये हमारी अपनी इंसानियत की रक्षा है। तो क्यों ना ऐसा करें, गर्मियों में छत पर पंछियों के लिए पानी रख दें, सड़क पर अगर घायल जानवर को देखें तो उसे अस्पताल पहुंचाएं, अगर कोई पशु या जीव हमें भूखा दिखा तो उसे रोटी खिलाएं। जानते हैं ये भी बहुत बड़ा पुण्य है। कभी कभी ना हमारा छोटा सा प्यार किसी जीव के लिए पूरी दुनिया बन जाता है। दोस्तों, दया और मदद करने से मन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, तनाव कम होता है और हमारे अंदर से एक खुशी उत्पन्न होती है, तो हम बहुत ही खुश महसूस करते हैं। आज जब पर्यावरण संकट बढ़ रहा है, पंछियों की कई प्रजातियां संपन्न हो रही हैं, जंगल काटे जा रहे हैं, ऐसे में जीवों के प्रति दया हमारा नैतिक दायित्व बनता है। तो आइए संकल्प लें कि किसी भी जीव को अनावश्यक कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, पशु पंछियों के प्रति प्रेम और संवेदना रखेंगे, प्रकृति और जीव जंतुओं की रक्षा करेंगे और दूसरों को भी दया का महत्व समझाएंगे। जो इंसान जीवों पर दया करता है ना, वही सच्चे अर्थों में मानव है। तो आज की विविधा में बस इतना ही, वैशाली को दीजिए अनुमति, नमस्कार। ये आकाशवाणी है, हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।

0: नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले में लिया हिस्सा, कहा देश के युवाओं को रोजगार और वैश्विक अनुभव दिलाने के लिए भारत विश्व के कई देशों के साथ कर रहा साझेदारी। राजधानी लखनऊ में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा और वाराणसी में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल हुई रोजगार मेले में शामिल। आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने जताया प्रधानमंत्री का आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में की श्रम और सेवा योजन विभाग की समीक्षा बैठक, नए प्रावधानों के साथ सभी 75 जनपदों में बाल श्रमिक विद्या योजना लागू करने के दिए निर्देश। और लखनऊ के इकाना स्टेडियम में कल खेले गए आईपीएल मुकाबले में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। और अब समाचार विस्तार से। राजधानी लखनऊ, वाराणसी और आगरा सहित देश के 47 अलग अलग स्थानों पर कल रोजगार मेले का आयोजन किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेले का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व के कई देशों के साथ साझेदारी भी कर रहा है, जिसका मकसद देश के युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव दिलाना है। उन्होंने कहा कि देश अब पूरी दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि युवाओं के लिए रोजगार के नए नए अवसर पैदा किए जा रहे हैं। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि पूरी पारदर्शिता के साथ नियुक्ति की प्रक्रिया संपन्न की जा रही है।
2: लखनऊ में 330 अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति पत्र हमने दिए और मैं कह सकता हूँ यह माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 12 लाख से भी ज्यादा

0: के लिए पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां करके इस तरह से महिलाओं के माध्यम से नियुक्ति पत्र देने का काम होता है।
1: वाराणसी के बरेका परिसर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस दौरान 341 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही राष्ट्र सेवा का अवसर भी प्रदान करती है।
2: अपने काम को खुद एनालाइज करिए, खुद उसका विश्लेषण करिए। ये काम मैंने किया, मैं इसे 100% सेटिस्फाइड हूँ। क्या और किसी तरीके से किया जा सकता है? और बेहतर ढंग से किया जा सकता है? और हर काम में इम्प्रूवमेंट का हमेशा स्कोप होता है। और एक दिन का बहुत जल्दी नौकरी छलांग मारनी है, ऐसा भी मत सोचिए। एक स्मॉल स्टेप, दैट इज ग्रो, छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, आपको ये हमेशा दिमाग में आना है।
1: आगरा में रोजगार मेले का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने किया। श्री बघेल ने रोजगार मेले के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया।
3: मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि देश को जो उन्होंने सरकारी नौकरियों के रोजगार के लिए वादा किया था वो पूरा हुआ है। इसके अलावा भी जैसा उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा, तमाम स्टार्टअप के माध्यम से, अन्य माध्यम से भी रोजगार दिए जा रहे हैं।
1: रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में श्रम एवं सेवा योजन विभाग की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर उन्होंने वर्तमान में 20 जिलों में बाल श्रमिक विद्या योजना की चर्चा करते हुए इसे नए प्रावधानों के साथ प्रदेश के सभी 75 जनपदों में लागू करने के निर्देश दिए। एक रिपोर्ट।
4: मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिक केवल उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था और प्रगति की सबसे बड़ी शक्ति है। सरकार की प्राथमिकता है कि श्रमिकों, युवाओं और कमजोर वर्गों को सम्मानजनक जीवन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षित कार्य वातावरण और बेहतर रोजगार अवसर उपलब्ध हों। मुख्यमंत्री ने सेवा मित्र व्यवस्था को रोजगार और जन सुविधा का अभिनव मॉडल बताते हुए कहा कि तकनीक आधारित ऐसी व्यवस्थाएं युवाओं और कुशल कामगारों के लिए नए अवसर तैयार करती हैं। मुख्यमंत्री ने निर्माण श्रमिकों के लिए सभी औद्योगिक शहरों में प्रस्तावित श्रमिक सुविधा केंद्रों यानी लेबर अड्डों को व्यवस्थित रूप से विकसित करने के निर्देश दिए। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है जिसके चलते लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रिकॉर्ड किया जा रहा है। बांदा प्रदेश का सबसे ज्यादा तापमान वाला जिला बना हुआ है। बांदा के अपर जिलाधिकारी कुमार धर्मेंद्र ने बताया कि प्रशासन की ओर से गर्मी से बचाव के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
5: बांदा में जैसा कि टेम्परेचर लगातार उसी स्थिति में बना हुआ है तो इसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन नए प्रयोग रोजाना कर रहा है। अभी तक हम लोग सब विभागों को उनकी क्या जिम्मेदारी है, क्या उनके कार्य हैं, वो उन्हें करने के लिए निर्देशित कर रहे थे।
1: उधर अयोध्या में कल तेज आंधी के साथ हुई बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में कुछ जगहों पर बारिश की संभावना जताई है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों के लिए लू की चेतावनी जारी की गई है। 2 पैन कार्ड मामले में रामपुर में MP-MLA सेशन कोर्ट ने कल सपा नेता आजम खां और अब्दुल्ला आजम की सजा बढ़ाने की अपील पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने आजम खां की 7 साल की सजा को बढ़ाकर अब 10 साल कर दिया है। वहीं उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की 7 साल की सजा बरकरार रखी गई है लेकिन उनके जुर्माने की रकम को बढ़ाया गया है। महोबा जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित अमर्यादित टिप्पणी के मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। भाजपा जिला कार्य समिति के सदस्य नीरज रावत की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे में प्रदेश अध्यक्ष के अलावा निवर्तमान प्रदेश सचिव ब्रजराज सिंह और 30 अज्ञात समर्थक भी शामिल हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कल फिर वृद्धि की गई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। प्रदेश में प्रति लीटर पेट्रोल की कीमतों में करीब 86 पैसे और डीजल में करीब 91 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद लखनऊ द्वारा संचालित मुंशी मौलवी सेकेंडरी तथा आलिम सीनियर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा वर्ष 2026 का परिणाम कल घोषित किया गया।

0: इस वर्ष मदरसा बोर्ड परीक्षा का कुल परिणाम 88.26% रहा। परिणाम में छात्राओं का प्रदर्शन छात्रों से बेहतर रहा। आईपीएल मुकाबले में कल लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच मैच खेला गया। इस मैच को पंजाब ने कप्तान श्रेयस अय्यर की शतकीय पारी के बल पर 7 विकेट से जीत लिया। पंजाब की टीम ने टॉस जीतकर लखनऊ की टीम को पहले बैटिंग के लिए आमंत्रित किया। लखनऊ की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 196 रन बनाए और पंजाब को जीत के लिए 197 रन का लक्ष्य दिया, जिसे उसने 18 ओवर में 3 विकेट खोकर प्राप्त कर लिया। इस हार के साथ आईपीएल के इस सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स का सफर समाप्त हो गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले में लिया हिस्सा। कहा, देश के युवाओं को रोजगार और वैश्विक अनुभव दिलाने के लिए भारत विश्व के कई देशों के साथ कर रहा साझेदारी। राजधानी लखनऊ में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा और वाराणसी में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल हुई रोजगार मेले में शामिल। आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने जताया प्रधानमंत्री का आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में की श्रम और सेवायोजन विभाग की समीक्षा बैठक। नए प्रावधानों के साथ सभी 75 जनपदों में बाल श्रमिक विद्या योजना लागू करने के दिए निर्देश। और लखनऊ के इकाना स्टेडियम में कल खेले गए आईपीएल मुकाबले में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
2: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
3: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ में, जिसे आप सुन रहे हैं 747 किलो हर्ट्स पर। आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों का प्रसारण आप सुन सकते हैं न्यूज ऑन एआईआर ऐप और डीटीएच के माध्यम से भी। और अब आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित निखिल बैनर्जी का सितार वादन। राग है अहीर भैरव।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित निखिल बैनर्जी का राग अहीर भैरव में सितार वादन। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। आप सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ, जिसे संपन्न करने का वक्त हो चला है, तो दीजिए अनुमति कार्यक्रम नमस्ते लखनऊ से। लेकिन श्रोताओं बने रहिए 747 किलोहर्ट्ज पर और सुनते रहिए आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली से।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी, स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक टीसीएस दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी, मध्य और पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे।
4: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को होगी। बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्वाड की वर्तमान पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
3: श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की

0: बात दोहराई और बातचीत तथा कूटनीति के जरिए संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील को दोहराया। विदेश मंत्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर अमरीकी दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने भारत को अमरीका का अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदार बताया। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमरीका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमरीका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थी को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर के संबंध में अगले महीने सहमति पत्र पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीपुरद्वार कालिम्पोंग और दक्षिण दिनाजपुर जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने और उत्तर बंगाल के लिए एक नए एम्स के प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के साथ साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञों और चिकित्सा पेशेवरों का प्रशिक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है। वे कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान बोर्ड के 23वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वस्थ भारत की परिकल्पना विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी।
2: हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत बनाना है। जब हम 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं तो स्वास्थ्य और स्वस्थ भारत एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब हम स्वस्थ होंगे तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
0: सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति हितधारक संगठन या संस्था 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
3: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल चार आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगले कुछ दिन में 7-8 अन्य आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ

0: जिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल से बातचीत के बाद ईरान के साथ एक समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में होर्मुज जल डमरू मध्य खोलना भी शामिल है। एक रिपोर्ट।
3: श्री ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है, शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी, लेकिन उन्होंने समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि समझौते के बारे में इजराइल के साथ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की

0: कहा है कि इसराइल से बातचीत के बाद ईरान के साथ एक समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में होर्मुज जल डमरू मध्य खोलना भी शामिल है। एक रिपोर्ट।
1: श्री ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है, शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी, लेकिन उन्होंने समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि समझौते के बारे में इसराइल के साथ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन से बात की गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने अमरीकियों पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया। अमेरिका और ईरान के बीच 8 अप्रैल को युद्ध विराम पर सहमति बनी थी और तब से दीर्घकालिक शांति समझौते के लिए बातचीत जारी है। अमेरिका द्वारा ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी के कारण ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद कर दिया है। समझौते को लेकर मुख्य रुकावटें ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य और होर्मुज जल डमरू मध्य पर उसके प्रभाव तथा क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति से संबंधित रही है। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा।
0: अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी की घटना हुई है। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेरकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच सीक्रेट सर्विस ने घटनास्थल के पास ही एक संदिग्ध व्यक्ति को गोली मार दी। इस दौरान एक नागरिक भी गोली लगने से घायल हो गया। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में आज भीषण लू चलने की आशंका व्यक्त की है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने 10.09 सेकंड के नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ ये उपलब्धि हासिल की। गुरविंदर का पिछला कीर्तिमान 10.17 सेकंड था। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने 10.20 सेकंड के साथ रजत पदक जीता। प्रणव प्रमोद को 10.29 सेकंड के साथ कांस्य पदक मिला। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच दोपहर 3:30 बजे से मुंबई में खेला जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इस श्रृंखला में पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इनका प्रसारण कल और सोमवार को 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर किया जाएगा। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल सुबह 9:10 से आकाशवाणी से जुड़े रहें। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरतनाज।
2: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के दौरान ये कहना कि देश के नौजवानों को मिले ग्लोबल एक्सपोजर लोक सत्ते में है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री ने कहा, युवाओं को ध्यान में रखते हुए ही हमने किए हैं अंतर्राष्ट्रीय समझौते। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के भारत दौरे को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान कहता है, मोदी से मिले रूबियो, अमरीका आने का न्योता। नवभारत टाइम्स के अनुसार रूबियो से मिलकर पीएम बोले, बात से निकले संघर्ष का हल। रूबियो की भारत यात्रा पर दैनिक जागरण अपने संपादकीय में लिखता है कि उनके भारत दौरे की शुरुआत के बाद जिस तरह उन्होंने अपने समकक्ष से मिलने की परंपरा को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री से मुलाकात की, ये प्रतीत होना स्वाभाविक है कि वे दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ करने में विशेष महत्व दे रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह के महाप्लान स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट पर लोकसत्ते ने संपादकीय में लिखा है कि गृहमंत्री की ये परियोजना वक्त की नजाकत को देखते हुए समीचीन है कि भारत के लिए आवश्यक भी है। अखबार के अनुसार घुसपैठियों को रोकने के लिए हमारी सीमाएं मुस्तैद और सुरक्षित होनी जरूरी है। केंद्र सरकार का जिमखाना क्लब की जमीन 5 जून तक सरकार को सौंपने का समाचार अमर उजाला सहित सभी अखबारों में है। पंजाब केसरी के अनुसार सरकार का कहना है कि ये भूखंड रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत और सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा की आंसर सीट की स्कैन कॉपी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दैनिक भास्कर ने विस्तार से दी है। देश का

0: बड़ा हिस्सा भीषण लू की चपेट में, शीर्षक से जनसत्ता लिखता है। गर्म हवाओं से मस्तिष्क और आंखों पर पड़ रहा है बुरा असर। पत्र ने चिकित्सकों की सलाह को भी प्रमुखता दी है कि गंभीर सिरदर्द, चक्कर आना और बेहोशी जैसे लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। राजस्थान पत्रिका ने इस वैश्विक अध्ययन को प्रमुखता से दिया है कि मुंबई विश्वविद्यालय ने दुनिया को दिए 31 अरबपति। पत्र ने इसे भारतीय सपनों की जीत बताते हुए लिखा है, दुनिया में सबसे अधिक अरबपति बनाने वाले विश्वविद्यालयों की सूची में ये 10वें नंबर पर पहुंच गया है।
1: धन्यवाद फरत। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी। स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक पीसीएस दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी मध्य पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, प्रातः के 8:15 हुए हैं। अब आप सुनेंगे हमारे नन्हे मुन्नों का साप्ताहिक कार्यक्रम अंकुर।

0: सभी नन्हे मुन्ने बाल दोस्तों को नाज़मा दीदी का प्यार भरा नमस्कार। और आज है रविवार, मुस्कुराने का दिन, हंसने का दिन, खिलखिलाने का दिन। और क्योंकि मुस्कुराने की बात चली है तो नेमचंद भैया भी बड़ी मुस्कुराहट लिए आए हुए हैं, तो नमस्कार नेमचंद भैया।
1: आपको भी नाज़मा दीदी हमारा नमस्कार, और सभी प्यारे प्यारे बाल दोस्तों को हमारा नमस्कार। आ जाइए भाई, पास आ जाइए, और पास आ जाइए, हमारा मतलब रेडियो के पास आ जाइए और थोड़ा सा वॉल्यूम इसका बढ़ा लीजिए। और कब तक बढ़ा रखना है पता है नाज़मा दीदी, बताइए।
0: हाँ नेमचंद भैया, पूरे 9 बजे तक।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और नाज़मा दीदी
0: जी, भैया
1: जोधरिया बहुत भारी है, का जम है कुछ या
0: बिल्कुल है नेमचंद भैया, लेकिन इसके लिए तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और जब तक ध्यान थोड़ा सा इधर से हटाइए और प्रोग्राम की तरफ लगाइए।
1: नहीं, प्रोग्राम की तरफ तो लगाएंगे ही, लेकिन ये बताइए कम तो नहीं है इसमें?
0: नहीं नहीं कम नहीं,
1: कई सारे लोग हैं इसमें आकाशवाणी में।
0: अरे भाई क्या बात है,
1: क्योंकि ये भी एक गुलदस्ता है।
0: बिल्कुल।
1: और बहुत सारे हमारे संगी साथी हैं, आकाशवाणी के सम्मानित अधिकारी हैं, और सब मिलकर इस गुलदस्ते को पता है महकाते हैं तो कितनी खूबसूरती आती है ना?
0: क्या कहने हैं।
1: इसीलिए कहा जाता है कि धरती पर हम आए हैं, जीवन में आए हैं बच्चों, तो काम ऐसे करिए कि हमारे बाद भी ये काम हमारे याद रखे जाए, है ना?
0: क्या बात है
1: जी। और तो चलिए बातों का सिलसिला आरंभ करते हैं। दीदी ये बताइएगा कि बरेली की क्या क्या चीज प्रसिद्ध है?
0: बरेली की नेमचंद भैया बहुत सारी चीजें प्रसिद्ध हैं।
1: जैसे
0: सुरमा, फर्नीचर, और नाथ नगरी के रूप में पहचान बना रहे मंदिर, और आला हजरत दरगाह, और आपको बताया बच्चों जॉट रेजिमेंट IVRI, और ITBP, और राम गंगा मेला यानी चौवारी वाला मेला
1: जी।
0: और आपको हम बता दें नेमचंद भैया, भगवान पार्श्वनाथ जैन मंदिर, अहित चित्र, रामनगर, आंवला सहित और अन्य बहुत से स्थान बरेली के लिए मायने रखते हैं। इसके लिए आपको हम बता दें, इसके अलावा बरेली में यूपी बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय है, पासपोर्ट ऑफिस है, और महात्मा ज्योतिबा फुले रोहेलखंड विश्वविद्यालय है, और बरेली कॉलेज है, और क्या क्या है नेमचंद भैया आप बताइए।
1: हमें लग गई थक गई।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं, ये मत समझिएगा नेमचंद, बहुत कुछ है बताने को,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन
1: बिल्कुल।
0: हम चाह रहे हैं जरा आप अपनी लैंग्वेज में बताएं, तो बात ही कुछ
1: बताते हैं। आपने कहा कि बरेली कॉलेज है, इसके अलावा

0: बाल दोस्तों, इनकम टैक्स ऑफिस है और बहुत बड़ा। पता है नाजमे दीदी,
1: जी
0: हमें याद आया इफको।
1: आहा, वाकई में बहुत
0: बहुत
1: बड़ा
0: बड़ा है
1: भाई,
0: इफको है
1: हमने देखा है।
0: जी, देखा है
1: जी
0: जी
1: जी
0: बिल्कुल। और इसके अलावा जानकारी और भरपूर मनोरंजन के लिए बरेली बदायूं मार्ग पर राम गंगा चौबारी के पास और लाल फाटक के नजदीक 100.4 FM आकाशवाणी बरेली का बहुत भव्य स्टूडियो है, भव्य इमारत
1: वाह वाह वाह
0: है। और इसी कैंपस में,
1: जी
0: आकाशवाणी के ही कैंपस में दूरदर्शन भी
1: हाँ
0: है ना।
1: है, बिल्कुल है,
0: इतने बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम यहाँ से देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं।
1: मनोरंजन खूब होता है भाई हमारे श्रोताओं का, निमचंद भैया है ना।
0: जी अच्छा, ये बताइएगा कि खान को कुछ प्रसिद्ध है बरेली में या नहीं है?
1: अरे बरेली में तो हम बता दें आपको, बरेली का पेठा बहुत मशहूर है और बरेली के रोडवेज के पास ही लस्सी भी भाई खूब अच्छी मिलती है। और हम सिविल लाइन्स की बात करें तो वहाँ पर भी बहुत कुछ खाने पीने को मिलता है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं।
0: तो बता से क्या खा लेती हैं और अखबार
1: देखिए बस 4 और 5 से ज़्यादा नहीं, बस
0: चार
1: ये
0: या पांच
1: लास्ट
0: से
1: है। हाँ
0: ज्यादा नहीं,
1: इससे ज़्यादा नहीं।
0: लेकिन एक बार तो आप ये कह
1: जी
0: रहे थे बताशे खाने के लिए रुके थे, तो वहां पर एक साहब जान पहचान के आ गए, तो वो
1: अच्छा
0: आधा मुंह में रह गया। तो कभी खाओ ना तो थोड़ा आड़ ले लेना, अगर आप सड़क वाली साइड से खड़ी होंगी भैया, उधर
1: जी
0: से तो
1: जी
0: निकलते ही हैं लोग,
1: जी
0: है
1: जी
0: ना। वैसे
1: क्योंकि
0: हमने देखा है लड़कियां थोड़ा तिरछा होकर के खाती
1: कभी कभी ऐसा होता है, बताशा
0: जी।
1: बड़ा होता है और मुंह छोटा होता है, तो वो आधा मुंह में रह गया और आधा गिर जाता
0: बिल्कुल,
1: है
0: तरबूज क्या खा ले अच्छा।
1: तरबूज बस 1-2 फाँक, इससे ज्यादा नहीं
0: जी चलिए अब आगे बढ़ते हैं बाल दोस्तों। बात यह है कि हमारे आसपास ही बहुत कुछ होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है बाल दोस्तों कि हमें आपको पता नहीं होता है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि बरेली में बहुत सारी जगह हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, घूम सकते हैं, समझ सकते हैं। और बरेली का जो ऐतिहासिक है, धार्मिक है और पर्यटन की दृष्टि से भी हल्का फुल्का काफी महत्व है, थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं
1: जी
0: साथियों।
1: जी बिल्कुल
0: बरेली कमिश्नरी है बरेली में, ठीक है? क्या है? बरेली में कमिश्नरी है, यानी कि मंडल मुख्यालय है और एक जनपद का भी मुख्यालय है, ठीक है? यहाँ कमिश्नर कार्यालय, ADG कार्यालय और IG ऑफिस है। इसके अलावा शहरी क्षेत्र की अगर बात करें तो बरेली एक नगर निगम है, ठीक है? और ये नाजमा दीदी बहुत सारी आबादी पर बनता है, ठीक
1: जी
0: है?
1: बिल्कुल,
0: नगर पालिका है, नगर परिषद है, उसके बाद
1: ये आबादी के ऊपर डिपेंड होता है,
0: हाँ
1: कहीं
0: बिल्कुल।
1: नगर पालिका जैसी कि ग्राम पंचायत, फिर नगर पालिका और फिर ये
0: आखिर
1: नगर
0: में
1: निगम।
0: नगर निगम, ठीक है?
1: जी
0: और बरेली की अगर बात करें तो इसे राजा जगत सिंह के पुत्र बासदेव और बरल देव ने बसाया था। बरेली के उत्तर में बच्चों नैनीताल, पश्चिम में रामपुर, दक्षिण में बदायूं है तथा पड़ोस में ही पीलीभीत और शाहजहांपुर जनपद हैं।
1: बच्चों, सबसे पहला मोहल्ला बरेली में जगतपुर बसा था, आपको बता दें, जो आज भी पुराना शहर जगतपुर के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में बरेली पांचाल राज्य का अंग था और आंवला के पास अहिच्छत्र यहाँ की राजधानी थी। सन 1540 में शेरशाह सूरी के सेना नायक ने अपने बादशाह शेरशाह सूरी के नाम पर कांवड़ क्षेत्र का नाम शेरगढ़ रख दिया। वासुदेव वरल देव ने खूब नाम कमाया और 1537 से 1560 के आसपास विशाल किला बनवाया और मोहल्ला कोट भी इन्हीं भाइयों की पिता की देन है। सन 1857 में बहुत बड़ा स्वतंत्रता संग्राम बरेली में हुआ, जिसमें बरेली के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1857 में ही हाफिज रहमत खां के पौत्र खान बहादुर खां ने मुंशी शोभा राम और अन्य तमाम साथियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया और आक्रामक लड़ाई में अंग्रेजों को बरेली से खदेड़ दिया। खान बहादुर बहुत बहादुरी से लड़े, लेकिन इन्हें पकड़ लिया गया और 1860 में उनका अंत हो गया और उनके कई साथियों को बरेली के कमिश्नरी में बरगद के पेड़ के नीचे फांसी दे दी गई।
0: बल दोस्तों, सन 1920 में स्वतंत्रता की लड़ाई बरेली में फिर तेजी से लड़ी गई। ये वही समय था जब महात्मा गांधी जी बरेली आए थे और बरेली के कुतुब खाना में उनकी एक बड़ी सभा हुई। इसमें असहयोग आंदोलन को धार देने के लिए श्री दामोदर स्वरूप सेठ, टिकत राय वर्मा, मोती सिंह, पंडित दरबारी लाल शर्मा, बंशीधर पाठक आदि बहुत सारे साथियों का बहुत बड़ा योगदान रहा। आप ये समझिए कि ऐसी हवा बरेली से बनी कि उसने एक बड़ा मोड़ स्वतंत्रता आंदोलन के लिए दे दिया।

0: बच्चों, बरेली का पर्यटन और धार्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्व है। अहिच्छत्र रामनगर महाभारत काल का पांचाल राज्य की राजधानी का अपना महत्व है। और ध्यान देने वाली बात तो ये है कि राजा द्रौपदी की पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर पांचाल राज्य रामनगर आंवला में ही हुआ था। बहुत बड़े क्षेत्र तक ये फैला हुआ है। अब तो यहाँ लीलौर झील भी पर्यटकों को बुला रही है कि भाई आ जाइए और एंजॉय करिए, हमें देखिए। इसके अलावा प्रसिद्ध दरगाह आला हजरत का अपना ही अलग मकाम है बरेली में।
1: बिल्कुल, लग रही है अखबार खूब पढ़ के आई हैं आप।
0: बिल्कुल सही कहा नेमचंद भैया, जब बच्चों को जानकारी देनी है तो खुद भी जानकारी रखनी होगी ना।
1: बिल्कुल रखनी होगी। और आप में से बहुत कम बच्चों को ये पता होगा, ऐसा माना जाता है कि भगवान पार्श्वनाथ परिभ्रमण के लिए बरेली क्षेत्र में आए थे तो कंठासुर ने बहुत घनघोर वर्षा कराई। उस समय भगवान पार्श्वनाथ की रक्षा नागराज धनेन्द्र ने सिर पर अपना फन फैलाकर की थी, इसी कारण इस क्षेत्र का नाम अहिच्छत्र पड़ा। ठीक है बच्चों। और नाजमा दीदी
0: जी भैया,
1: फिल्मों की अगर बात करें तो बरेली के झुमके ने भी बरेली को एक नई पहचान दिलाई। इसके साथ ही साथ बरेली कॉलेज, बरेली बैप्टिस्ट चर्च और बरेली जनपद के ग्राम सेंधा आंवला में बहुत बड़ा उर्वरक कारखाना है, ये भी बरेली की एक पहचान है। और सुरमा बरेली वाला आंखियों में ऐसा डाला, ये तो हम आप जानते हैं, है
0: ना? तो आज आंखियों में सुरमा डाला है आपने, लग तो ऐसे ही रहा है बड़ा।
1: नहीं, हमने तो नहीं डाला, लेकिन आपके लगा हुआ है।
0: हाँ देखिए भाई, बरेली की बात है और सुरमा हम नहीं लगाएंगे तो फिर कैसे देख पाएंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल। मंदिरों की अगर बात करें तो बरेली को अब नाथ नगरी कहा जाने लगा है। भाई मंदिरों की बात करें तो अलखनाथ, तपेश्वर नाथ, धोपेश्वर नाथ, बनखंडी नाथ, त्रिवटी नाथ आदि भव्य मंदिर है और जहां भक्तों का तांता लगा रहता है। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा पर सस्ता सामान, सर्कस, दूधिया हिंग और नखासा सहित जलेबी और श्रद्धालुओं द्वारा गंगा तीरी पकाई जाने वाली खिचड़ी खाने का आनंद एकदम अलग है। राम गंगा मेला चौबारी बरेली को धार्मिक दृष्टि से अलग पहचान देता आ रहा है। इसके अलावा राम गंगा चौबारी घाट पर जो नाजमा दीदी ठंडा शरबत है जो जेठ दशहरा में पीने को मिलता है, उसके भाई क्या कहने।
0: भाई वाह,
1: क्या गिलास पी जाओगे
0: भैया? देखिए गर्मी की बात है तो अगर ऐसे में अगर शरबत मिल गया तो दो चार गिलास पी जाएंगे,
1: ज्यादा पी जाओ।
0: लेकिन आप अपना ध्यान रखिएगा, मटका मत पी जाइएगा आप।
1: और नहीं, बच्चों नहीं, थोड़ा ही पी पाते हैं
0: जी। और बच्चे आपको हम और आगे लेकर चले, थोड़ा सा कुछ और बताएं तो कंपनी गार्डन का भी अपना एक अलग महत्व है। और बरेली को पहाड़ी क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहा जाता है। चौकी चौराहा बरेली और कैंट स्थित चर्च भी बरेली में खूब विख्यात है। ये सेंट स्टीफेन चर्च 1862 में बना था। तो बच्चों ये तो थी चर्चा ऐतिहासिक पर्यटन और धार्मिक दृष्टि से बरेली के महत्व पर।
1: बिल्कुल। तो देश के तमाम हिस्सों से आने वाले साथी जब भी बरेली आए तो वे बरेली को पूरा घूमें, समझें और जानें और झुमका ढूंढने का भी प्रयास करें। और इस गाने को जरूर गुनगुनाएं कि
2: झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे।
1: और नाजमा दीदी
0: जी भैया,
1: ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे माता पिता हैं अगर समझा जाए तो उनके चरणों में सारे तीर्थ समाए हुए हैं।
0: बिल्कुल सही कहा नेमचंद भैया। और बच्चों माता पिता के चरणों में आप ये समझिए कि जन्नत है, यानी कि स्वर्ग होता है। बच्चों माता पिता सहित सभी का सम्मान कीजिए। हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हमारे आपके कर्मों से किसी को ठेस ना पहुंचे, किसी को दुख ना पहुंचे नेमचंद भैया, और किसी का दिल ना दुखे, है ना?
1: बिल्कुल। बच्चों अपना सदकर्म करते हुए हर किसी को इस दुनिया से एक दिन आखिरी विदाई लेनी है, इसलिए काम ऐसे करो जिसे लोग याद रखें। अगर आप अच्छा करेंगे तो आपके साथ ही अच्छा ही होगा। प्यारे बच्चों सच्चाई अच्छाई के रास्ते पर ही चलिए। याद रखिए अच्छाई और बुराई का फल इसी धरती पर है, इसीलिए कहा गया है कि जैसी करनी वैसी भरनी।

0: प्रेमचंद भैया, जैसी करनी और वैसी भरनी, इसीलिए कहा जाता है बच्चों अच्छा ही करिए और अच्छा ही आप पाएंगे।
1: बिल्कुल,
0: है ना?
1: बच्चे अगर शुरू से ही अच्छे संस्कार सीखेंगे, अच्छी चीज़ें सीखेंगे, तो आगे चलकर उनके लिए बहुत आसानी हो गई। और नाजमा दीदी, एक बात और भी है
0: क्या?
1: कि कहा जाता है कि जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारी अच्छाइयां हैं, वही हमारी पहचान है और वही

0: हमारे लिए समाज में मजबूत बनाती हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और नेमचंद भैया, फोन पर भी कुछ बच्चे हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आइए सुनते हैं। हेलो अंकुर। हेलो
2: हेलो अंकुर, में आपका फोन लग गया है और बड़ा भाग्यशाली है, पहली कॉल आपकी लग गई है। जल्दी से प्यारा सा अपना नाम बताइएगा, कहाँ से आपने फोन किया है?
3: मेरा नाम चीची चाची है। मेरा बताइए।
2: जी, आपका नाम कीर्ति शाक्य है, बड़ा सुंदर आपका नाम है। कीर्ति का मतलब आप समझती हैं? बताएं।
3: चार हुई, चार और फैली हुई, कीर्ति यश मान सम्मान ख्याति प्रसिद्धि।
2: क्या बात है, क्या बात है, बड़ा
4: वाह, बहुत अच्छे से
2: बढ़िया
4: इन्होंने
2: तरीके
4: जो
2: से
4: है
2: इन्होंने
4: समझा
2: बताया
4: दिया
2: है।
4: है।
2: तो छुट्टियां चल रही होंगी इस समय तो?
3: यस।
2: जी, तो ये बताइएगा कि आजकल हमारा जो पर्यावरण है बड़ा गंदा होता जा रहा है, तो कीर्ति शाक्य आप हमें ये बताइएगा कि हमारा पर्यावरण शुद्ध रहे, बढ़िया रहे, तो इसके लिए हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए?
3: हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए जिससे हमें ऑक्सीजन मिलती है।
2: बहुत बढ़िया बात आपने कही है। एक कविता हमें याद आ रही है कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये कविता आपको याद है?
3: बंदे लोग हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, तू लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।
2: झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जीवन से आपको क्या प्रेरणा मिलती है, क्या ताकत मिलती है?
3: हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें किसी मुसीबत से डर के नहीं बल्कि हिम्मत से सामना करना चाहिए।
4: भाई नेमचंद भैया,
2: जी
4: देखिए महारानी लक्ष्मीबाई जो थी, उन्होंने अंग्रेजों से जो है बहुत ही मेहनत से, यानी कि सबको एकजुट भी
2: बिल्कुल
4: किया।
2: दीदी, उन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए और गोद में बच्चे को लेकर लड़ना वाकई में बड़ी बहादुरी का काम है और बड़ी ताकत का काम है। उनसे महिलाओं के लिए, खास तौर से बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए, क्या सभी के लिए एक प्रेरणा लेना चाहिए। वे हमारे आपके लिए एक ताकत बनी हुई है कि इन्होंने अंग्रेजों से बहुत कठिन दौर में लड़ाई लड़ी।
4: बिल्कुल, हमें उनसे कुछ सीखने की जरूरत है। अंकुर, कार्यक्रम से क्या सबक हासिल होता है आपको, क्या शिक्षा मिलती है?
3: आप बहुत ज्ञान की बातें बताती हैं, बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा मिलती है, बहुत नॉलेज बढ़ता है हमारा। मैं एक गीत सुनाना चाहती हूँ।
4: बिल्कुल सुनाइए।
3: मुझे इससे तो नहीं है।

0: बात आपने कह दी है।
1: बहुत अच्छे, रेडियो स्टेशन बरेली के लिए आपने फोन मिलाया और बहुत मीठी मीठी बातें की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।
2: बहुत बहुत स्वागत है सभी नन्हे मुन्ने बाल दोस्तों का आपके अपने प्यारे और चहेते कार्यक्रम अंकुर में। और अंकुर में हम बातचीत कर रहे हैं, नन्हे मुन्हे बाल दोस्तों को जोड़ रहे हैं हेलो अंकुर से। हेलो
3: हेलो काजवाड़ी, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग।
2: गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग भाई। वाह क्या कहने हैं, हंसती खिलखिलाती मुस्कुराती एक नन्ही बालिका हमसे मुखातिब हो रही है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। अपना नाम बताइए।
3: मेरा नाम अरिजवा खान है और मैं

0: रामपुर से बिलोंग करती हूँ।
1: बहुत अच्छी बात है। अपने पेरेंट्स का नाम बताइए।
0: मेरी मम्मा का नाम इरम खान है एंड माय फादर नेम इज मोहम्मद नासिर खान।
1: तो आपने अपना क्लास तो बताया ही नहीं, हमें क्लास बताइए।
0: हाँ जी, मैं क्लास 6 में हूँ एंड आपको कुछ साइंस के बारे में, बहुत चीजों के बारे में बताने वाली।
1: तो बताइए अलिशवा, ह्यूमन बॉडी के बारे में आप क्या जानती हैं?
0: हाँ जी, मैं आपको जरूर बताती हूँ। जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी स्केलेटन और नर्वस सिस्टम के थ्रू बनी होती है।
1: अच्छा,
0: तो हमारी और हमारी जो बॉडी है उसमें काफी टाइप के ऑर्गन्स हैं, जैसे कि किडनी है, लंग्स है, एक्सेट्रा। ठीक है, जो हमारा ब्रेन है वो सबसे वाइटल ऑर्गन है।
1: अच्छा,
0: वाइटल ऑर्गन मतलब जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है वो है। अब जो हमारा ब्रेन है उसमें स्कल है, हमारा ब्रेन स्कल के अंदर है, ये आप सबको पता होगा
1: जी।
0: अब जो हमारे स्कल की जो 22 बोन्स है तो वो जो हमारे स्कल को प्रोटेक्ट करती हैं। फिर हम आ जाते हैं हमारे हार्ट को। अगर हम अपने हार्ट के बारे में बात करी जाए तो हमारे हार्ट में 12 होती है कर्व बोन्स की, जिन्हें हम रिब्स भी बोलते हैं।
1: अच्छा,
0: और अगर मैं पूरे स्केलेटल सिस्टम की बात करूँ अपने बॉडी की, तो जो एक अदल्ट ह्यूमन होता है उसके पास 206 बोन्स होती है बॉडी में, एंड जो एक शेप देती है हमारी बॉडी को। जब एक बेबी बर्थ लेता है तो उसकी बॉडी में 300 बोन्स होती हैं। तो जब हम बड़े होते जाते हैं तो वो हमारी बोन्स थोड़ी कम होती रहती हैं, तो वो जब हम बड़े होते हैं तो हमारी टोटल 206 बोन्स हो जाती है।
1: अच्छा बच्चों, हम आपको बता दें मानव शरीर के बारे में, जिसमें हमें अलिशवा ने बताया है कि हमारी बोन्स के बारे में, हमारे मस्तिष्क के बारे में और हमारे हृदय के बारे में। अलिशवा ये बताइए, पेड़ पौधे के बारे में आप क्या जानती हैं?
0: हाँ जी, मैं पेड़ पौधे के बारे में भी काफी जानती हूँ। जैसे कि प्लांट्स होते हैं वो अपना एक रिप्रोडक्शन करते हैं।
1: अच्छा,
0: अब उसमें कुछ प्लांट्स होते हैं जो थ्रू सीड भी होते हैं, कुछ होते हैं थ्रू जो प्लांट होते हैं, जब हम प्लांट सीड करते हैं जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो उनके थ्रू दूसरे प्लांट हो जाते हैं।
1: चलिए बहुत अच्छी बात है। और अगला सवाल हमारे पास बैठे हैं नेमचंद भैया, वो करेंगे आपसे। तो नेमचंद भैया, आपसे अलिशवा मुखातिब है, बातचीत करिए।
2: बिल्कुल, हम इनके लिए सुन रहे थे। और आप मीठा बहुत बोलती हैं, सबसे पहले ये बताइएगा कि क्या क्या खाती हैं आप?
0: जो बना दे।
2: अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपने अभी बात की थी, हम सुन रहे थे, ये जो आपने बताया कि मस्तिष्क के बारे में बताया था और भी जानकारी आपने बताई थी, तो हमारे जो नन्हे मुन्ने साथी हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, कार्यक्रम सुन रहे हैं, उनका स्वास्थ्य बढ़िया रहे, कहते हैं कि जो लोग शरीर से फिट हैं, वे अपने अपने काम में हिट हैं, उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे?
0: जैसे कि अगर हमारी बॉडी कभी कभी कुछ ऐसे फूड होते हैं जो वो डिसॉल्व नहीं कर पाती है, तो उन्हें काफी चीजें चाहिए होती है जैसे डिसॉल्व करने के लिए। तो अगर आपको ज्यादा स्वस्थ रहना है या फिर ज्यादा अच्छा रहना है तो आपको बैलेंस डाइट जरूर करना पड़ेगी।
1: अच्छा, यानी कि हमें दाल चावल सब्जी और तमाम तरह की, यानी कि दूध दही छाछ मट्ठा,
2: जी बिल्कुल,
1: ये सब सभी जरूरी है।
2: कहने का मतलब जी ये है कि जो पौष्टिकता है
1: जी
2: हमारे भोजन में, हमारे नाश्ते में, वो अवश्य होनी चाहिए।
0: हाँ जी, हाँ जी।
2: अच्छा, कुछ बच्चे क्या है, हमने देखा है कि फ्रिज की चीजें जो है बहुत इस्तेमाल करते हैं, क्या इनका कम उपयोग किया जाना चाहिए?
0: देखिए, जैसे कि मम्मा जैसे रात को कुछ खाना बनाती है, अगर वो बच जाता है, जैसे मेरी मम्मा ने फॉर एग्जांपल एक पिज्जा बनाया, अगर वो बच गया तो अगर हम उसे फ्रिज में रखेंगे तो उसके अंदर जितने भी विटामिन एंड मिनरल्स जो भी होंगे वो एक तो डिसॉल्व हो जाएंगे सारे, मतलब आट जाएंगे।
1: अच्छा,
0: और फ्रिज में रखी हुई चीज ज्यादा देर तक खानी नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है, क्योंकि जो फ्रिज के अंदर का एटमॉस्फेयर होता है वो ठंडा होता है, और ठंडी चीजें ज्यादातर हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाती है। फ्रिज के अंदर एक ऐसी गैस होगी, कभी आपने देखा होगा जो फ्रिज होता है उसमें साइड से कभी कभी वो गर्म होता है।
1: अरे वाह, बहुत अच्छी बात बताई
2: बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है। और इसके अलावा जो बच्चे कार्यक्रम सुन रहे हैं उनसे हम ये भी कहना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए आपके लिए तरबूज खाना है, खरबूज खाना है, तो नाजमा दीदी उसके लिए जो पानी का कोई ड्रम है या कोई बड़ा बर्तन है उसमें रख लीजिए, उसके बाद थोड़ा ठंडा कर खाइए, जहाँ तक हो सके वहाँ तक फ्रिज से थोड़ा जो है बचिए। क्या करते हैं, हमने देखा कि फ्रिज में काट के रख दिया, अब वो 6 घंटे ठंडा हो रहा है, उसके बाद खाया, तो उसमें जो पोषक तत्व है वो।
1: ये एक बात बताई नेमचंद भैया ने, अलिशवा आप सुन रही होंगी, फोन पर है इस टाइम। सबसे पहली बात क्या है, फ्रिज में जो हम खाने रखते हैं उसकी पौष्टिकता वैसी नहीं रहती है जैसे फर्स्ट टाइम में रहती है, यानी कि पौष्टिकता खत्म हो जाती है। बहुत अच्छी बात बताइए। चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, यानी कि पेड़ पौधों की तरफ। पेड़ पौधों के बारे में बताइए।
0: स्ट्रॉबेरी प्लांट होता है, चेरी प्लांट होता है, जो मैंने

0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जब कह रही हैं कि आपने कश्मीर में ये वाले प्लांट्स देखे थे, तो कश्मीर गई हैं आप?
1: हाँ जी, मैं कश्मीर जा चुकी हूँ। मैं कश्मीर से बहुत चीजें सीखी है, एडवाइस ऑफ नेचर एंड एवरीथिंग, कि
2: अच्छा,
1: किस तरीके से वहाँ पे ग्रोइंग होती है, किस तरीके से वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, हर चीज मैंने
0: वाह
1: सीखी।
0: वाह, क्या बात है।
2: जी, कुछ पौधे हम अगर किचन गार्डन में लगा देते हैं तो उनसे क्या क्या फायदे हैं?
1: हाँ जी, हाँ जी, मैं कोई इसको बहुत बड़ा वो बताती हूँ। मेरे स्कूल में ना हमारी मैम ने एक पार्ट लिया हमारे गार्डन का, वहाँ पे मैम ने किचन गार्डन बनवाया। हम
0: अरे वाह,
1: लोग क्या कुछ,
0: यानी कि एक
1: हाँ मैंने
0: प्रैक्टिकल ही
1: गार्डनिंग बना
0: बात।
1: रखा है दादी के घर पे।
0: अच्छा
1: हाँ तो मैं आपको बताती हूँ उसके कुछ फायदे। देखिए, सबसे पहले तो किचन गार्डन एक बहुत अच्छी चीज है, उसमें एक तो कोई मिलावट नहीं है, प्लस वो प्योर है, वो हमारी आंखों के सामने ग्रो हो रहा है, हर चीज हम उसकी
0: हाँ
1: खुद केयर कर रहे हैं, वी आर केयरिंग फॉर देम ओनली।
0: वाह,
1: उसकी और उसके काफी फायदे हैं कि अगर जैसे हमारे घर पे कोई चीज खत्म हो गई या घर में कोई है नहीं, तो हम किसी से मंगवा नहीं सकते।
0: मतलब अपनी गार्डन से ले लिया उसको, है ना?
1: हाँ, अपने गार्डन से ले सकते हैं।
2: से हरी मिर्च है या
0: नींबू हो
2: साग है,
0: गया,
2: नींबू
0: हरा
2: है,
0: धनिया हो गया, पुदीना
2: बिल्कुल।
0: हो गया, और इन दिनों तो देखिए पुदीने की चटनी, वही वाह।
2: बिल्कुल
0: तो कश्मीर में क्या क्या देखा आपने?
1: मैंने कुछ प्लांट देखे, और वहां गए थे गुलमार्ग, सोनमार्ग, वहां पे काफी चीजें देखी कि
0: अच्छा,
1: हाउ द पीपल वर डूइंग स्केटिंग, हाउ द पीपल वर सीडिंग द प्लांट एंड एक्सेट्रा। तो मैं तो वहाँ फ्लावर गार्डन गई थी, तो वहाँ पे काफी ढेर सारे फ्लावर, वहाँ पे एक वाटरफॉल होती है जो सीधा माउंटेन्स तरफ से आ जाती है, ठंडा था, मेरा फुट माई लेग्स ऑलराइट, उसका पानी इतना ज्यादा ठंडा था कि बस पैर जम गए थे। जी
2: बातों से ही झलक रहा है, आकाशवाणी बरेली के स्टूडियो में भी ठंडक आ गई।
0: हाँ, बहुत अच्छी बात बताइए, और डल झील के बारे में बताइए।
1: हाँ जी, मैंने देखी, मैंने उसमें बोटिंग भी की थी, हम लोग शिकारा में बैठे थे, और
0: हाँ,
1: वहाँ पे जिसमें कभी कॉफी मिल रही थी और फ्रूट चाट मिल रही थी।
0: नमो ने बाल दोस्त आपको सुन रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहती हैं?
1: मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक बार अपनी लाइफ में कश्मीर का जरूर जाओ, एंड जो आपकी लाइफ है उसे एंजॉय करो, नया अपनी लाइफ के बारे में सीखने को मिलता है कि वहाँ की जगह कैसी है, वहाँ का फर्टिलाइजेशन कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं।
2: सही इन्होंने कहा है, कश्मीर है, इसके अलावा हमारे देश में और भी बहुत सारी सुंदर सुंदर जगह हैं जिन्हें हम देखकर वहाँ के बारे में समझ सकते हैं, वहाँ का कल्चर जान सकते हैं, वहाँ की संस्कृति जान सकते हैं, वहाँ की वेशभूषा है, वहाँ का
0: खान
2: खान
0: पान,
2: पान है,
0: रहन सहन है,
2: और जी बिल्कुल रहन सहन है, बहुत कुछ सीख
0: पहनावा
2: सकते
0: है,
2: हैं।
0: वहाँ के गीत संगीत है। वाकई में बहुत अच्छी बात आपने बता दी है। गीत संगीत की बात चलिए तो बताइए, कौन सा गीत सुनेंगी आप?
1: आई लव माई।

0: तो ये था हेलो अंकुर। वनक्कम कुझंडाइगेल ये दिंदिया विरक्कु अंगलई अनुवदन वरावोर किरोम। नमस्कार बच्चों, दक्षिण भारत में आपका हार्दिक स्वागत है। ये हम बात कर रहे थे तमिल में बच्चों। प्यारे बाल साथियों, दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो घूमने फिरने के लिहाज से तो ये हमारा एक बहुत अच्छा सफर रहेगा, है ना नेमचंदिया
1: जी।
0: दक्षिण भारत अपने अंदर अनेकों सुंदर सुंदर पर्यटक स्थलों को समाये हुए है। हरियाली और वहां की आबो हवा के तो क्या ही कहने। दक्षिण भारत के राज्यों के बारे में बताएं तो तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है बच्चों। मैसूर पैलेस, मरीना बीच, मीनाक्षी मंदिर के तो क्या ही कहने। साउथ के लोग शिक्षित होने के साथ साथ बच्चों हम आपको बता दें अपना जीवन सरल और अनुशासित तरीके से जीते हैं। यही परिवार और जो है अपनी संस्कृति को बड़ा महत्व देते हैं ये लोग। अधिकांश क्षेत्रों में गर्म और नम मौसम रहता है। समुद्र के पास होने के कारण वर्षा अधिक होती है निमचंद भैया यहाँ पर।
1: और बोल बहुत जोर से रही है, लग रही दूध ज्यादा पी के आई है आप।
0: बिल्कुल, डोसा इडली सावर के बारे में खा लीजिए थोड़ा सा ताकि हम साउथ की ओर रहे, है ना।
1: बिल्कुल, खान पान की अगर बात की जाए तो डोसा है, इडली है, सांवर बड़ा है और नारियल से बनी जो सब्जियां हैं यहाँ खूब खाई जाती हैं और चावल भी खूब बड़े चाव से खाया जाता है। और यहाँ का भोजन भैया आप खाएंगे तो बस आप ये कहेंगे कि बस खाते रहो, बहुत स्वादिष्ट होता है और बहुत हल्का होता है। और इसके अलावा हमें एक बात और याद आ गई, दक्षिण भारत अपनी शास्त्रीय संगीत के लिए बहुत प्रसिद्ध है। नाच में दीदी
0: जी भी
1: कौन कौन से नृत्य हैं बताइए।
0: नृत्य हैं हम आपको बता दें नेमचंद भैया यहाँ पर है नाडू, भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी और शांत वातावरण तो बहुत ही प्रसिद्ध है यहाँ का हम आपको बता दें। और प्राकृतिक सुंदरता भरे कई सारे बीचों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है साउथ। कुछ पहाड़ी क्षेत्र हैं जैसे ऊटी है और कुर्ग है तो यहाँ का मौसम ठंडा और सुहावना रहता है। बच्चों जब ऊटी की बात चली है तो चलिए आपको ऊटी की भी सैर करवा ही देते हैं। बच्चों आपको बताते चले, ऊटी को उद्गमन मंडल भी कहा जाता है। ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है और नीलगिरी की पहाड़ियों में बसा है। ये दक्षिण भारत के पश्चिम भाग में बसी एक प्रसिद्ध पहाड़ी पर्यटन स्थल है। पहाड़ों की रानी ऊटी में चाय के बागान, हरियाली और ठंडा मौसम इसकी पहचान है। यहाँ पर तमिल भाषा के साथ हिंदी और अंग्रेजी भी अच्छे से बोली जाती है। बच्चों ऊटी घूमने के लिए टॉय ट्रेन में, यानी एक छोटी ट्रेन होती है 3 डिब्बों वाली नेमचंद भैया, इसमें जब बैठा जाया हा क्या आनंद आता है। जब उसमें आप बैठेंगे बच्चों तो आपको वो पहाड़ी सुरंगों से घुमाती हुई हरियाली के बीच ठंडी हवाओं के झोंकों के साथ प्रकृति के सुंदर दृश्य देखने को मिलेंगे। आहा क्या बात है, मन करता है कि बस वहीं रह जाओ।
1: बात सही कह रही हैं आप। उस गाड़ी पर जब बैठते हैं और आसपास का जो कुदरती नजारा होता है उसे देखते हैं तो मन एकदम प्रफुल्लित हो जाता है, एकदम आनंद आ जाता है। और नाजमा दीदी पता है जब वो रुक करके चलती है थोड़ा सा हल्का सा अगर ब्रेक लिया तो फिर आप ये समझिए कि इतना बढ़िया लगता है कि देखते
0: हैं। निमचित भैया जो टॉय ट्रेन है वो चलती इतनी धीमी है कि आप उस पर चढ़ और उतर सकते हैं, लेकिन सावधानियों को देखते हुए हमें उतरना नहीं चाहिए। लेकिन बीच बीच में पहाड़ियों पर स्टॉप बने हुए हैं।
1: बिल्कुल बने हुए हैं। और एक ट्रेन हमने देखा है कि ऋषिकेश से हरिद्वार को आती है
0: जी,
1: तो बीच में वो जो पुलिया पड़ती है ना, अगर आप गई होंगी
0: जी,
1: तो उसके नीचे अंधेरा सा छाता है लेकिन जो पहाड़ी है इतनी बढ़िया लगती है कि यार क्या बात है, कितना दिमाग लगाया है पहाड़ काट।

0: कि ये लाइन बनाई गई है।
1: क्योंकि हम चल रहे थे ऊटी की ओर, तो बच्चों ऊटी को रोज गार्डन, ऊटी का रोज गार्डन अगर आपने नहीं घूमा तो समझिए कुछ नहीं देखा। पहाड़ी ढलानों पर सुंदर तरीके से बने बगीचे पर, ढलान पर अलग अलग रंग और आकार के फूल, इतनी इतनी वैरायटी शायद ही कहीं और देखने को मिले। इसे ऊटी की सबसे सुंदर जगहों में से एक माना जाता है और पायकारा लेक भी अपने आप में बहुत सुंदर है। पाइन के लंबे लंबे पेड़ और बीच में झरना गिरता हुआ इस झील को और भी सुंदर बनाता है। इस झील में बोटिंग का भी आप आनंद उठा सकते हैं। यहाँ पर आप खूब सेल्फी भी लीजिए, लेकिन अपना ध्यान भी रखिएगा। उसके बाद जाइएगा टी गार्डन में। यहाँ पर आपको चाय की पत्तियाँ कैसे तोड़ी जाती हैं और चाय के पौधों की देखभाल कैसे की जाती है, चाय कैसे हम तक पहुँचती है, पूरा प्रोसीजर आपको जानने को मिलेगा। यह नहीं बच्चों, अपने भारत देश में बहुत कुछ है जानने और समझने को। कश्मीर से कन्याकुमारी तक बहुत कुछ है घूमने को।
0: बिल्कुल। और साथियों, आज की पाठशाला में अगला चैप्टर आपके लिए है एटीएम कार्ड के उपयोग के बारे में, जो समझदारी है उस पर आधारित है। तो नजमा दीदी
1: जी भैया,
0: एटीएम तो आप चलाती हैं, बताइए क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए एटीएम चलाने में।
1: नेमचंद भैया, सावधानी तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम वो आपको बता दें, सभी के लिए उपयोगी ये बात है कि ये जानकारी खास तौर से बच्चों के लिए विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम बच्चों से कहना चाहेंगे कि एटीएम का उपयोग अपने माता पिता या बड़े भाई बहन की देख रेख में ही करें।
0: तो पैसा तो खूब जोड़ रहे होंगे, क्योंकि जोड़ा तो हैं आप।
1: देखिए, पैसा नहीं जोड़ेंगे तो फिर भविष्य के बारे में कैसे सोचेंगे, है ना?
0: बिल्कुल।
1: तो ये भी ज़रूरी है, पैसा खर्च करने के साथ साथ भविष्य के लिए जोड़ने में ही समझदारी है बच्चों, हम आपको बता दें। और सबसे पहले हम आपको बताएं कि एटीएम का पूरा नाम जो है ऑटोमेटेड टेलर मशीन है, इसे स्वचालित मशीन भी कहते हैं। भारत में एटीएम की शुरुआत 1987 में हुई, लेकिन इसका जो तेजी से फैलाव या विस्तार हम कह सकते हैं वो 2000 से हुआ था। जहाँ तक हो सके वहाँ तक आप जो है केबिन के अंदर अकेले जाएं, जहाँ पर जो एटीएम है नेमचंद भैया, जो वो केबिन कहलाता है, तो केबिन में अकेले ही जाएं, अनजान व्यक्ति से मदद ना लें और कार्ड पर अपना पिन नंबर भी ना लिखें। इसे ये याद रखें कि अपना जो कार्ड है वो किसी और के लेन देन में भी ना इस्तेमाल करें। बहुत सी बातें हो गई हैं, उनका भी ध्यान रखें और इसको जो है अपने बड़ों की देख रेख के में ही इस्तेमाल करें।
0: बिल्कुल। तो समझ लियो भैया, अगर काऊ को जाके पिन अगर बताए दही तो जा समझो कि बा भरी भी मलैया कतई खाली हो जाएगी। इसलिए पिन को नहीं बताना है, इसका ध्यान रखना है। और अगर बताए दही तो समझ लो दूध और दही की बाजो पूरी भरी मलैया है, सब खाली हो जाएगी, डर रहता है। ठीक है,
1: मलैया
0: विशेष ध्यान रखना है।
1: हाँ, अब मलैया ये समझ लीजिए आपका झोला भी हो सकता है, आपका बैंक अकाउंट भी हो सकता है।
0: वही है, बच्चे समझ गए होंगे नाच में दीदी।
1: और आपको बच्चे ये भी ध्यान रखना है कि पेमेंट के दौरान पूरी नजर रखें, अपनी नजर को ओझल ना होने दें और आपका ध्यान बट ना जाए, इसलिए केबिन के अंदर मोबाइल पर बात करने से बचें बच्चों।
0: बिल्कुल। और अब प्रश्नों की बारी है, तो प्रश्नों को नोट करिएगा। पहले प्रश्न में हम आपको बहुत ही प्यारी और मधुर एक धुन सुनवा रहे हैं। इस धुन को ध्यान से सुनिएगा और बताइएगा कि ये धुन किसी धार्मिक संगीत की है या फिल्मी गाने की है।

और अगला प्रश्न आपके लिए है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अभी हाल ही में कौन बने हैं? ठीक है, अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन की याद में मनाया जाता है? और अगला प्रश्न में आपको बताना है कि दुख का विलोम शब्द क्या है? और आखिरी प्रश्न दिमाग पर कुछ ज्यादा जोर देने वाला है।

0: ये मेल बेमेल शब्दों पर आधारित है। इस प्रश्न में तीन जोड़े एक मेल के हैं तथा एक बेमेल है। बेमेल जोड़ा कौन सा है ये आपको बताना है। और ये शब्द हैं, पहला है दही और जलेबी, दूसरा है पेंसिल और कटर, तीसरा है माता और पिता, और चौथा है थाली और सड़क। और नाजमा दीदी
1: जी भैया,
0: पिछले रविवार को कौन कौन से सवाल किए गए थे ये भी बच्चों को बताए देते हैं। पहला सवाल किया गया था कि जायद की फसलें कौन कौन सी हैं, किन्हीं दो फसलों के नाम बताइएगा। ठीक है, तो नाजमा दीदी आपको पता ही है, तरबूज है, खरबूज है, ककड़ी है, ये सब ये फसलें हैं। और अगला सवाल आपसे किया गया था कि अभी हाल ही में बंगाल के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, उनका नाम आपको बताना है। तो सभी ने सही उत्तर लिख करके भेजा है, श्री शुभेंदु अधिकारी साहब, ये बंगाल के मुख्यमंत्री हैं।
1: तीसरा प्रश्न पूछा था अंधकार का विलोम शब्द क्या है, तो बच्चों इसका उत्तर है प्रकाश। और एक मुहावरा पूछा था आपसे, वो मुहावरा आपको बताना था क्या?
0: मुहावरा था कि रस्सी जल गई पर ऐंठ ना गई, मतलब सब कुछ बर्बाद होने के बावजूद भी अकड़ या घमंड का बने रहना। ठीक है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और नाजमा दीदी अब चलने का समय हो चला है, मन तो नहीं कर रहा है कि बच्चों के बीच से जाएं, लेकिन समय बहुत बलवान होता है, समय के आगे किसी की नहीं चली है।
1: बिल्कुल नहीं चली है निमचंद भैया।
0: हंसता मुस्कुराता हुआ आज का ये सफर बस यहीं तक, आगे लेते हैं। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारे नन्हे मुन्नों का साप्ताहिक कार्यक्रम अंकुर। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। प्रातः के 9 बजे हैं। अब आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ बचपन।
1: प्रस्तुत है गंगवार बाल चिकित्सालय निकट महिला थाना चौकी चौराहा बरेली द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ बचपन।
2: गंगवार हॉस्पिटल निकट महिला थाना चौकी चौराहा बरेली।
3: समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों के इलाज की विशेष सुविधा।
2: अविकसित फेफड़ों के उपचार के लिए सर्फेक्टेंट थेरेपी।
3: टेम्परेचर नियंत्रण के लिए विशेष इंक्यूबेटर जिराफ ओमनी बेड।
2: सांस नियंत्रण के लिए सीपैप वेंटिलेटर HFNC और ईयर वो मशीनें।
4: बच्चों के जन्म के समय होने वाली जटिलताओं के लिए
2: खास तरह के वेंटिलेटर HFO ऑक्सीलेटर क्रिटिकल थेरेपी हाइपोथेरेमिया।
3: ब्रेन मॉनिटरिंग के लिए CFM बेड साइड इको अल्ट्रासाउंड की सुविधा।
2: साथ ही बच्चों में पीलिया सेप्टिक इन्फेक्शन निमोनिया जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज की विशेष सुविधा। बरेली का अत्याधुनिक बाल चिकित्सालय
3: गंगवार हॉस्पिटल
2: निकट महिला थाना चौकी चौराहा बरेली।
4: इमरजेंसी सेवाओं के लिए डायल करें 9457096487।
5: नमस्कार, मैं हूँ मुकेश कुमार पांडे और मेरे साथ मौजूद है बरेली के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गंगवार साहब। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
6: सभी श्रोताओं को नमस्कार और पांडे जी आपको भी मेरा नमस्कार।
5: डॉक्टर साहब, जब भी आपके साथ बातचीत होती है एक शब्द आप इस्तेमाल करते हैं, थेरेप्यूटिक हाइपोथेरेमिया। ये थेरेप्यूटिक हाइपोथेरेमिया क्या है? क्या कोई मशीन है या कोई दवा है? क्या है, आखिर हमारे श्रोता क्या समझे इसे?
6: थेरेप्यूटिक का मतलब जो इलाज के लिए इस्तेमाल हो रहा है
5: जी,
6: थेरेपी के लिए इस्तेमाल।
5: अच्छा,
6: हाइपोथेरेमिया मतलब जो ठंडा कर रहे हैं।
5: अच्छा,
6: ये थेरेप्यूटिक हाइपोथर्मिया रिसेंट एंड लेटेस्ट ट्रीटमेंट है HIE के बच्चे। HIE मतलब जो बच्चे पैदा होने के बाद होते नहीं है, जिनको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उन बच्चों को हाइपोक्सिक इस्केमिक एन्सेफलोपैथी हो जाती है, जिसमें कि बच्चा सुस्त हो जाता है, बच्चे को दौरे पड़ने लगते हैं, बच्चा किन्हाने लगता है, बच्चे की सांस खराब होती है, और बच्चे को दौरे पड़ने के साथ फिर बाद में मल्टीपल ऑर्गन्स में भी नुकसान होता है, जैसे कि किडनीज हैं, GIT है, लंग्स हैं, ब्रेन है। तो इन बच्चों को नुकसान मिनिमाइज करने के लिए जो डैमेज हो रहा है हाइपोक्सिया से, ऑक्सीजन की कमी से, उस डैमेज को कम से कम करने के लिए जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट है वो थेरेप्यूटिक हाइपोथर्मिया। थेरेप्यूटिक हाइपोथर्मिया दो तरह से देते हैं। एक पहले सिलेक्टिव देते थे हेड कूलिंग, जिसमें सिर्फ ब्रेन को या सिर्फ सिर को ठंडा करते थे
5: जी।
6: और दूसरा है होल बॉडी हाइपोथर्मिया। तो जो लेटेस्ट जाँचें हुई या जो रिसर्च हुई उसमें ये पाया गया कि जो होल बॉडी हाइपोथर्मिया, जिसमें पूरे शरीर को ठंडा रखते हैं, दैट इज मोर इफेक्टिव देन सिलेक्टिव हेड कूलिंग।
5: अच्छा,
6: तो उसके लिए

0: ऑटोमेटिक मशीन है जो बच्चे को 72 आवर्स के लिए पूरे बच्चे को ठंडा रखते हैं 34 डिग्री के पास
1: जी।
0: नॉर्मल टेम्परेचर हमारा 37 होते हैं।
1: अच्छा,
0: इन बच्चों को 34 या 34.5 डिग्री पे ठंडा रखते हैं जिससे इनके ब्रेन डैमेज कम हो, इनको नुकसान कम हो
1: जी।
0: लेकिन ये उन्हीं बच्चों पे अप्लाई लगा सकते हैं आप जो बच्चे आपको 6 घंटे के अंदर मिल जाए।
1: अच्छा,
0: पैदा होने के बाद
1: जी।
0: दूसरा, जिन बच्चों का वजन 1.8 केजी से ज्यादा हो।
1: अच्छा।
0: तीसरा, जो बच्चे बहुत ज्यादा सिक ना हो, जो सीवियर HIE है, ग्रेड 3 HIE है, उसमें जब तक बच्चा स्टेबल ना हो जाए तब तक थेरेप्यूटिक हाइपोथर्मिया अवॉइड करना चाहिए
1: जी।
0: तो इसलिए जो सोर्स लिमिटेड कंट्रीज है, कई बार वहाँ पे रिजल्ट्स अच्छे थेरेप्यूटिक हाइपोथर्मिया के नहीं मिल पाते हैं।
1: अच्छा।
0: तो थेरेप्यूटिक हाइपोथर्मिया एक ऐसे सेटअप में देने के लिए आवश्यक है कि आप उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग कर सकें। तो उसके लिए ऑटोमेटेड मशीन है जो 72 घंटे बच्चे को ठंडा रखते हैं, जिसमें टेम्परेचर बच्चे का डिस्प्ले होता है, मशीन का डिस्प्ले होता है, और साथ में आपको सेरिब्रल फंक्शन मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, ब्रेन परफ्यूजन कैसा है।
1: अच्छा।
0: इसके लिए CFM मॉनिटर आपको आवश्यक है, जिससे कि आपको ये पता लग जाए कि बच्चे को दौरे पड़ रहे हैं या नहीं पड़ रहे।
1: अच्छा।
0: तो थेरेप्यूटिक हाइपोथर्मिया लेटेस्ट ट्रीटमेंट फॉर वर्थ एस्फिक्सिया या वर्थ एनोक्सिया या HIE हाइपोक्सिक इश्केमिक एन्सेफलोपैथी। जो बच्चा पैदा होने का जब सांस नहीं लेता है तो कोशिश होनी चाहिए डॉक्टर्स की कि उसे थेरेप्यूटिक हाइपोथर्मिया दें और 6 घंटे के अंदर शुरू करें और उसके लिए प्रॉपर मॉनिटरिंग करें।
1: जी जी, बहुत सारी बातें डॉक्टर साहब आपने बता दी कि अगर बच्चा नहीं रोया है या सांस ठीक नहीं है तो 6 घंटे के अंदर थेरेप्यूटिक हाइपोथर्मिया देने की आवश्यकता होती है। ये खास तरह की मशीन है या कई मशीनों को एक साथ मिला करके दिया जाता है?
0: मशीन है जो बच्चे के, जिसमें मैट्रेस होती है, जो बच्चे के उस पर लिटा देते हैं और वो बच्चे को ठंडा करती है।
1: अच्छा, बच्चे को ठंडा रखना जरूरी होता है ताकि
0: ठंडा भी इतना ना हो जाए कि उसको नुकसान हो जाए, 34 डिग्री से नीचे भी ना चला जाए। तो 34 या 34.5 डिग्री के बीच में आपको टेम्परेचर मेंटेन करना।
1: फिलहाल तो ये डॉक्टर का काम है, डॉक्टर को ही करने दें तो ज़्यादा अच्छा है, खुद इस नापतोल में ना उलझें तभी ज़्यादा उचित होगा, एक बच्चे के लिए भी और उसकी सेहत के लिए भी। डॉक्टर साहब कौन सा गीत सुनवाएंगे पहले हमारे श्रोताओं को? आज
0: एक गीत है, मौसम मौसम लवली मौसम, थोड़ी सी विफाई
1: अनवर और सुलक्षणा पंडित के स्वर से सजा ये गीत। श्रोताओं, हम आप सभी को सुनवा रहे हैं डॉक्टर कुलदीप गंगवार साहब की पसंद।

0: अच्छा, बहुत प्यारा गीत जिसे अनवर साहब ने और सुलक्षणा पंडित ने गाया, आपने सुनवाया हमारे श्रोताओं को। अब ये बताइएगा, जो थेरेप्यूटिक हाइपोथर्मिया जिस मशीन की हम बात कर रहे हैं, एक बार मैं दोबारा आपसे ये जानना चाहूँगा, ये एक ही मशीन होती है या फिर कई मशीनों को एक साथ जोड़ करके और पूरे सिस्टम की मॉनिटरिंग करते हैं?
1: मशीन एक होती है लेकिन ऑटोमेटिक होती है
0: जी,
1: जिसमें कि बच्चे को जब कूलिंग शुरू करते हैं तो 37 से 34 तक ले जाना होता है, वो

0: स्लोली ग्रेजुअली ले जाते।
1: अच्छा अच्छा,
0: एक साथ झटके से बच्चे को ठंडा नहीं कर सकते
1: जी।
0: ऐसे जब आप रिवार्मिंग करते हैं हाँ। तो रिवार्मिंग के लिए आपको 6 से 8 घंटे चाहिए होते हैं 34 से 37 डिग्री आने के लिए।
1: अच्छा,
0: तो मशीन जब चूंकि उसमें इस तरह से फीड होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, स्लोली ग्रेजुअली बच्चे का टेम्परेचर घटाती है, उस हिसाब से बढ़ाती है। और उसमें जो आपका मॉनिटरिंग टेम्परेचर मॉनिटरिंग बच्चे का टेम्परेचर और पूरा आता रहता है, और दूसरा आपको सेरेब्रल फंक्शन CFM मॉनिटरिंग करनी होती है
1: जी।
0: तीसरा आपको वेंटिलेट भी करने पड़ते हैं बच्चे, क्योंकि बहुत सिक बच्चे होते हैं
1: जी। डॉक्टर साहब, कई बार आप बताते हैं कि बच्चे को ठंडा नहीं होना चाहिए जन्म के तुरंत बाद, अगर बच्चे को छू के और यहाँ आप बच्चे को ठंडा करने की बात कर रहे हैं
0: जी। जी, एक्चुअली क्या है ना, जब हाइपोथर्मिया अपने आप हो रहा है, स्पेशली बच्चा सिक है, बच्चे को अगर सेप्सिस है,

0: अपने आप हो रहा है।
1: हाँ
0: स्पेशली बच्चा सीख है, बच्चे को अगर सेप्सिस है, और खासतौर से जो बच्चे प्रीटर्म होते हैं वो अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो वो बच्चे ठंडे हो जाते हैं। कोई भी ठंडा बच्चा बहुत नुकसान में होता है उस समय ऑलरेडी।
1: अच्छा,
0: तो वो हाइपोथर्मिया जो वो तकलीफ है
1: जी जी,
0: इसमें हम लोग इंड्यूस कर रहे हैं, हम जानबूझ के बच्चे को ठंडा कर रहे हैं
1: जी जी।
0: तो जब हाइपोथर्मिया अपने आप हो रहा है तो वो तो नुकसानदायक है, जब हम लोग उसके थेरेप्यूटिक यूज के इस्तेमाल इलाज के लिए कर रहे हैं तो वो एक अलग चीज है,
1: वो उस समय उसकी जरूरत है,
0: जरूरत है
1: जी जी,
0: वो उसके बचाव के लिए
1: जी। अच्छा, जिन बच्चों को इस तरह की सुविधा नहीं मिल पाती या जन्म के 6 घंटे के अंदर ऐसे स्थान पर उन बच्चों को इलाज के लिए नहीं पहुंचाया जा पाता जहां थेरेप्यूटिक हाइपोथर्मिया जैसी उपलब्ध हो मशीन या तकनीक, तो उन बच्चों का भविष्य कैसा होता है, क्या नुकसान हो सकते हैं?
0: देखिए, अभी तक जो स्टडीज में जो रिसर्च हुआ है उसमें ये पाया गया है कि अगर बच्चे को थेरेप्यूटिक हाइपोथर्मिया दी जाती है तो उसमें जो ब्रेन डैमेज है वो कम होता है।
1: अच्छा,
0: क्योंकि सेकेंडरी जो एनर्जी फेलियर है वो नहीं हो पाता है, प्राइमरी एनर्जी फेलियर तो विद इन 6 आवर जब हो जाते हैं तो ब्रेन का नुकसान कम होगा, तो आगे चल के सेरेब्रल पैल्सी होने का डर भी कम रहेगा।
1: अच्छा,
0: तो हो सकता है ये बच्चे, जो बच्चे हाइपोथर्मिया में रहते हैं उनका नुकसान कम होगा।
1: अच्छा, 6 घंटे की शर्त क्यों है डॉक्टर साहब?
0: 6 घंटे की शर्त है, आर्बिट्रेली है वैसे तो, लेकिन 6 घंटे के बाद एक्चुअली क्या होता है, बॉडी में दूसरे तरह के मैकेनिज्म शुरू हो जाते हैं जो कि डैमेज करने लगते हैं, और उस समय फिर हाइपोथर्मिया काम नहीं करता।
1: अच्छा, यानी 6 घंटे से ज्यादा लेट हो गया।
0: हाँ,
1: तो इस मशीन की उपयोगिता
0: आधा घंटे 1 घंटे में तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए 12 घंटे बाद बच्चा आ रहा है तो थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है, और 24 घंटे बाद अगर आ रहा है तो फिर तो नहीं देना चाहिए।
1: जी जी जी। अच्छा, कितने लंबे समय तक इस मशीन का इस्तेमाल होता है, ये किस बात पर?
0: 72 घंटे के लिए सिर्फ देते हैं, 3 दिन के लिए।
1: अच्छा,
0: उसके बाद 3 दिन के बाद आपको मशीन हटानी होती है, शुरू के 3 दिन में मेन नुकसान होता है बच्चे।
1: डॉक्टर साहब, चूंकि ये मशीन है, नई तकनीक है, तो निश्चित ही हाइपोथर्मिया के द्वारा इलाज देना थोड़ा महंगा भी होता होगा, क्या बताना चाहेंगे?
0: इलाज इसलिए महंगा होता है, सिर्फ हाइपोथर्मिया मशीन इस्तेमाल नहीं होती, साथ में आपको मल्टीपल मॉनिटरिंग चाहिए होती है, बच्चा वेंटिलेटर पे होता है, और कई बार बच्चा आइनोट्रॉप्स पे होता है, तो इन सब चीज़ों के लिए कई सारी मशीनों की जरूरत पड़ जाती है, सिर्फ एक हाइपोथर्मिया की मशीन की नहीं, हाइपोथर्मिया प्लस आपका सेरेब्रल फंक्शन मॉनिटरिंग प्लस वेंटिलेशन प्लस मॉनिटरिंग प्लस ABG गैसेस, ऑल दिस थिंग्स आपको जरूरत हैं।
1: जी जी जी, ये सब देने की आवश्यकता होती ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी बातें बताई हैं और कई समस्याओं की ओर इशारा किया, अगर बच्चे को समय पर थेरेप्यूटिक हाइपोथर्मिया नहीं मिला तो उसके दिमाग में शरीर में कई तरह के नुकसान होते हैं, क्या खास सुझाव है आपका उन श्रोताओं के लिए जिनके घर में अभी बच्चे पैदा होने वाले हैं, उस समय वो क्या क्या बातें ध्यान रखें?
0: देखिए, एक तो हमेशा टच में रहें लेडी डॉक्टर अपने, जिसको माँ को दिखा रहे हैं समय के साथ साथ दिखाते रहें, अल्ट्रासोनोग्राफी कराते रहें, उनकी जांच कराते रहें, और अपने डॉक्टर से पता रखें कि बच्चे की स्थिति कैसी चल रही है, अगर कोई भी संभावना इस बात की बन रही है कि बच्चा समय से पहले पैदा हो सकता है तो माँ को एंटीनेटल स्टेरॉयड लगना चाहिए, जिससे कि लंग्स की मेच्योरिटी थोड़ा बेहतर हो जाती है।
1: जी जी।
0: दूसरा, फिर डिलीवरी ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे पूरा ए सेप्सिस कंडीशन के बीच में बच्चा रिवाइव किया जा सके, CPR दिया जा सके। तीसरा, फिर उसका इलाज ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे सारी फैसिलिटीज हो।
1: बिल्कुल, बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं डॉक्टर साहब। और एक महत्वपूर्ण बात और, कौन सा गीत आप सुनवाएंगे अब हमारे श्रोताओं के लिए?
0: देखिए, गीत है मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मन रे तू काय को धीर न धरे,
1: चित्रलेखा फिल्म का गीत है, मोहम्मद रफी साहब की आवाज है, और श्रोताओं डॉक्टर कुलदीप गंगवार साहब की पसंद का ये गीत आप सबके लिए। और अब इसी के साथ आज के स्वस्थ बचपन कार्यक्रम से मुझे दीजिए अनुमति, अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: सुन रहे थे गंगवार बाल चिकित्सालय निकट महिला थाना चौकी चौराहा बरेली द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ बचपन।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ बचपन। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। प्रातः के 9:15 हुए हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। बस कुछ पलों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आप सुन रहे थे चित्रलोक कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में आज हमने राजेश रोशन और मजरूह सुल्तानपुरी की कहानी आपको सुनवाई।
1: आप सुन रहे हैं हमारे प्रोग्राम विविध भारती से। आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।
2: आज के फनकार

मजरू सुल्तानपुरी का जन्म आजमगढ़ के निजामाबाद में 1 अक्टूबर सन 1919 में हुआ था। उनका असल नाम था असरार उल हसन खान। उनके पिता पुलिस विभाग में थे और वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा असरार उल हसन इंग्लिश की पढ़ाई करे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को पारंपरिक शिक्षा के लिए मदरसे में दाखिल किया और अरबी व फारसी में काबिल बनाकर आलिम का सर्टिफिकेट दिलवाया। बाद में असरार उल हसन उर्फ मजरू ने लखनऊ के तकमील उल तिब कॉलेज से यूनानी चिकित्सा की तालीम भी हासिल की और वो हकीम कहलाए, लेकिन शायराना तबीयत की वजह से वो हकीमी ठीक से कर नहीं पाए और सुल्तानपुर में रहकर गजलें लिखते रहे और मुशायरों में शिरकत करते रहे। तत्कालीन दौर में वो शायर जिगर मुरादाबादी के सानिध्य में भी रहे। हकीम

फिल्म से शायर बनते बनते असरार उल हसन खान की शख्सियत मशहूर शायर मजरू सुल्तानपुरी में कब तब्दील हो गई, ये खुद उन्हें भी पता नहीं चला।

सन 1945 में मजरू सुल्तानपुरी तत्कालीन बॉम्बे शहर में साबू सिद्दीक इंस्टीट्यूट में एक मुशायरे के सिलसिले में आए और अपनी पुरअसर शायरी से सुनने वालों के दिलों पर छा गए। सुनने वालों में उस समय जाने माने फिल्मकार A.R. कारदार भी शामिल थे। वो मजरू साहब से बेहद मुतासिर हुए। उन्होंने जिगर मुरादाबादी के जरिए मजरू से संपर्क किया और संगीतकार नौशाद से मजरू साहब की मुलाकात तय कर दी। दौर था 1946 के साल का, फिल्म थी शाहजहां और फनकार थे K.L.

वामपंथी विचारधारा के समर्थक मजरू सुल्तानपुरी ने 1949 में बलराज साहनी के साथ कुछ समय जेल में भी बिताया। आर्थिक रूप से कमजोर भी हुए, लेकिन सिद्धांतों से कभी भी समझौता नहीं किया।

1950 से लेकर 1960 के पूर्वार्ध तक मजरू सुल्तानपुरी भारतीय सिनेमा में अपनी गीतकारी के साथ पूरे शबाब पर रहे। सन 1965 में राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म दोस्ती के एक गीत के लिए फिल्म फेयर के श्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मजरू साहब को प्रदान किया गया।

दोस्तों, मजरूह सुल्तानपुरी ने हर बड़े संगीतकार के साथ काम किया, जैसे नौशाद, मदन मोहन, एसडी बर्मन, रोशन, रवि, शंकर जयकिशन, ओपी नैयर, उषा खन्ना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आरडी बर्मन, अनु मलिक, राजेश रोशन से लेकर आनंद मिलिंद, जतिन ललित और ए आर रहमान तक सभी के संगीत में मजरू ने अपने बोल पिरोए।

आरडी बर्मन के संगीत में भी मजरूह के गीतों ने कई बार धूम मचाई, चाहे वो फिल्म तीसरी मंजिल हो या हो जमाने को दिखाना है। सभी गानों ने सुनने वालों के कदमों को थिरकाया है।

24 मई सन 2000 को न्यूमोनिया बीमारी के गंभीर हमले से मजरू साहब उबर नहीं पाए और मौत ने आखिरकार उन्हें अपनी आगोश में ले लिया। जिंदा दिल शायरी का मतवाला और रूह को छू लेने वाले गीतों का ये रचयिता बेशक आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने गानों के जरिए सदा हमारे दिलों पर राज करता रहेगा।

0: प्रस्तुत करता रमेश गोखले। अब दीजिए राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

0: हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो

0: देते हैं सुकून।
1: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
1: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी,
1: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोताओं, प्रातः के 10 बजे हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम आकाशवाणी के दीवाने, और आज आकाशवाणी के दीवाने में हैं हशमत अली साहब।
3: आपको रोजाना अपने कार्यक्रम में कोई ना कोई नई जानकारी सुनवाते, तो आज हम जिस गांव में पहुंचे हैं, अब उन्हीं भैया की जुबानी जान लेते हैं, उनको परिचय का नाम और कहाँ रहता है। क्या नाम भैया आपको?
4: हमारा नाम हशमत अली है।
3: घर के जिस गांव में खड़े हैं, जो गांव को क्या नाम?
4: लटूरी गांव।
3: किस ब्लॉक में पड़ता है
4: ये? भोजीपुर ब्लॉक में पड़ता है।
3: तहसील?
4: बरेली।
3: जिला बरेली को?
4: जिला बरेली।
3: बात करें आपकी उम्र की, तो आपकी उम्र कितनी हुई?
4: लगभग 38-40 के करीब हुई।
3: पढ़ाई लिखाई करी आप?
4: हाँ, पढ़ाई लिखाई करी है।
3: कहाँ तक पढ़ाई लिखाई करी?
4: 8वां पास करा है।
3: अच्छा, 8वां पास करो, बाकी आगे ना पढ़े?
4: ना, बाकी आगे ना पढ़े।
3: क्या कारण रहो जो बाकी आगे पढ़ाई लिखाई नहीं करी आपने?
4: ऐसा कुछ घर के हालात के हिसाब से आगे ना पढ़ पाए।
3: अच्छा, हम देख रहे हैं जो रेडियो आपके पास रखो वो है, आप रोजाना रेडियो सुनते?
4: हाँ, रोजाना रेडियो सुनते।
3: कौन कौन से कार्यक्रम सुनते रेडियो?
4: कार्यक्रम में हेलो बरेली है अपना, और किसान बाड़ी है, और बाकी के अपने विविध भारती के जो प्रसारण होते हैं वो भी सुनते हैं।
3: कब से है आपको रेडियो सुनने का शौक?
4: रेडियो का लगभग 20-25 साल हो गए।
3: 20-25 साल होगी। आज के दौर में तो मोबाइल ज्यादा चल रहा है, आप रेडियो के बहुत ज्यादा शौकीन है, क्या कारण है?
4: रेडियो में जो सुनने की क्वालिटी है वो मोबाइल वगैरह में नहीं है।
3: वो नहीं है?
4: हाँ, वो नहीं है। रेडियो का सुनने का मजा ही कुछ अलग है।
3: जैसे आप खेत पर हैं, समो रेडियो साथ में है। हाँ। तो काम भी चल जाता है और रेडियो भी सुनते रहते
4: हैं। हाँ। उसमें जो है कि अगर रेडियो एक जगह रखा और सुन ले आराम से, अब मोबाइल को कहाँ संग लिए फिरंगे वहाँ।
3: ना, सही बात है। अच्छा, रेडियो के 90 साल पूरे हो चुके हैं, यानी कि जो जन जन की वाणी आकाशवाणी के 90 साल पूरे हो गए हैं। 90 साल को सफर बहुत लंबा होता है।
4: हाँ, काफी लंबा सफर है 90 साल का, और रेडियो जो है अपने आज भी उसी चरम पर है जो पहले था।
3: जो पहले था? हाँ। यानी कि जो लोकप्रियता पहले थी वही लोकप्रियता
4: वही आज है।
3: आज रेडियो पर आपकी और हमारी बातचीत बहुत सारे भैया बहन सुन रहे होंगे, क्या कहना चाहोगे?
4: हम तो यही कहना चाहेंगे कि अपनी फसल का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखें और नियमित रेडियो सुनते रहें, जिससे कि अच्छी से अच्छी जानकारी हमें लोगों को मिलती रहे।
3: बहुत अच्छी बात है आपने कही कि खेत में मेहनत करते रहें, नियमित रेडियो सुनते रहें, जिससे कि अच्छी से अच्छी जानकारी हम लोगों को मिलती रहे। हसमत अली जी, आपने हमसे बातचीत करी, बहुत अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा करी, जाके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
4: नमस्कार।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आकाशवाणी के दीवाने। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर, और अब आप सुनेंगे आपकी पसंद में अपनी पसंद के गीतों को।

श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपकी पसंद में, और साथ ही कीजिए स्वीकार हमारा प्यार भरा नमस्कार। और श्रोताओं, गर्मी में रखिए खास ख्याल, बहुत ज़रूरत हो तभी दोपहर में घर से बाहर निकलिए, नहीं तो ज़रूरी काम जितनी जल्दी हो 10 बजे तक बाहर वाले निपटा लीजिए। मार्केट जाना है तो आप बहुत जल्दी जो है 10-11 तक काम निपटा ही लीजिए, क्योंकि दोपहर में इस समय निकलना खतरे से खाली नहीं है। और जो ये गर्मी पड़ रही है, हवा जो ये लू मतलब

चल रही है गर्म हवा, ये आपको अच्छे खासे से बीमार कर देती है। एकदम से आपके जो बॉडी की एनर्जी है वो एकदम से वीक हो जाती है। तो इसीलिए जो है अपना खास ख्याल रखें और पानी खूब पिएं, रसेदार फल सब्जियों का सेवन करें। इस समय खीरा बहुत खाइए, ककड़ी बहुत खाइए, वैसे खाइए जिससे एक तो एनर्जी तो मिलती ही है और साथ ही साथ इसमें इन मात्राओं में इसमें पानी इतना होता है तरबूज है इन फलों में कि लीची कि आप के अंदर पानी की कमी नहीं हो पाती है। और पानी आपको प्यास कम लगे फिर भी पानी अपने हिसाब से ज़्यादा पीजिए। और साथ ही जो आते हैं एनर्जी बूस्ट करने वाले पाउडर हैं उनको डाल के आप पानी पिए जिससे कि आपके अंदर पानी की कमी होने से पहले ही रिकवरी हो जाए। और खास ख्याल रखें थोड़ी बहुत तबीयत गड़बड़ लगे तुरंत डॉक्टर को संपर्क करें, ये हमारा आपसे विशेष अनुरोध है। और अब पढ़ते हैं आपके बहुत सारे कमेंट्स हम तक पहुंचे हुए हैं। आज पहला कमेंट्स आप लोगों का हम तक पहुंचा है, छबीलपुर गुन्नौर से हैं हरवेश कश्यप, अर्जित कश्यप, दिव्यांश कश्यप और गायत्री कश्यप का। सेक्टर नंबर 2 आवास विकास कासगंज उत्तर प्रदेश से हैं पवन गौड़, सुयश गौड़, आशीष गौड़, तन्मय और अपूर्वा का। ज्योति नगर नोखा राजस्थान से हैं आप सभी लोग, पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोवर्धन धरा, घनश्याम भार्गव, बाबू गौरी और हसन सिक्का का। वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज बरेली से हैं जीशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख, करुला मुरादाबाद से हैं अयूब खान, इरम गुड़िया और शुएब खान का। मोहल्ला हलवाइयां शेरकोट जिला बिजनौर से हैं मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर का। औला से हैं डॉक्टर गुलाम मोहम्मद अंसारी, सुल्ताना अंसारी और उनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त कटरा चांद खां मौर्य मंदिर। वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से हैं अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, आरोही और स्वाति मौर्य का। ये कमेंट हमारे पास पहुंचा है जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से हैं भाई प्रेम सिंह बड़वाल, सुखवीर काजल बड़वाल, लखवीर बड़वाल, रानो कृष्णा, श्रीमती छिंदो, प्रवीण शीतल, नवीन रंगीला, निशान अनमोल और प्यारे बेटे चटकू मटकू का। जिला रामपुर ग्राम खंडिया गेट कॉलोनी से हैं अमरजीत, शिवम, सुखलाल, अमरपाल, ऋषिपाल, सिद्धार्थ और यश का। पाकुड़ झारखंड से हैं उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णवानंद, सत्यमानंद। बोड़ागाछी पश्चिम बंगाल से हैं मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। गढ़ी कोटाहा जिला पंचकूला से हैं सराजुद्दीन अंसारी, नसीबन बेगम, शानिया अंसारी, मोहम्मद इलियास, मुशाहिद हुसैन, अक्सा अंसारी, आयशा अंसारी, उमर अंसारी और समीना अंसारी का। आप सभी लोगों ने पसंद किया है ये गीत, फिल्म का नाम है धर्मात्मा और इस गीत को गाया है मुकेश ने।

0: है तो टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों, लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: आपकी चाय, EMI किराया कैसे मैनेज करूं? एक जुगाड़ है, अच्छा पैसा मिलेगा। कैसे? अपना बैंक डिटेल्स दो, कुछ लोग पैसे भेजेंगे, उनके बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कमीशन मिलेगा। इतना इजी? काहे का इजी, ये तो मनी म्यूल है। इल्लीगल पैसा घुमाते हैं दूसरे के अकाउंट से, अपराध है, जेल हो सकती है।
7: ना भाई ना।
8: अपने बैंक अकाउंट को सेफ रखें, किसी को यूज ना करने दें। RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

भाणी नादुरा महाराष्ट्र से हैं श्री कृष्ण बाठे संदीप बाठे। बागपत उत्तर प्रदेश से हैं संजय ढिंगिया नमन ढिंगिया और अपार ढिंगिया का। रिंगनी छत्तीसगढ़ से हैं दिनेश वर्मा करुणा वर्मा। आरे नगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से हैं उत्तम सिंह जंघेल मोरस जंघेल अनिल कुमार अजीत कुमार आयुष जंघेल और नंदनी जंघेल का। धमदा ग्राम सुखरी कला से हैं अमित जंघेल शकुन जंघेल आरुषि ओशिका आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल का। सौंगा धमतरी छत्तीसगढ़ से हैं फनेश कुमार चंदन सावित्री देवी चंदन मोहित कुमार चंदन देविका रानी चंदन गजेंद्र कुमार और हेयांश कुमार चंदन का। पद्मा टाकिज नेपानगर मध्य प्रदेश से हैं सुदर्शन शाह पल्लवी शाह प्रखर कुशल नीति सुरभि अश्विन मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह का। मानपुर साबित जिला मुरादाबाद से हैं शेख जियाउर रहमान शेख अताउर रहमान और शेख हबीबुर रहमान। दुर्गा कॉलोनी हांसी से हैं राजू मिगलानी बबीता मिगलानी सुभाष योगी और बब्बू डब्बू का। खुर्जा उत्तर प्रदेश से हैं तिलक राज अरोड़ा प्रकाश अरोड़ा चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा का। कस्बा सेथल जिला बरेली से हैं फरियाद हुसैन अंसारी ताहिर हुसैन अंसारी तासिफ हुसैन अंसारी मोहम्मद अजहान अंसारी अलमीर बशर अंसारी। सहनपुर से हैं राधा नामदेव अपर्णा नामदेव अभिषेक नामदेव और हर्षेश शर्मा का। सादुलशहर राजस्थान से हैं रामकुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़। ग्राम वीरपुर पोस्ट बिलसड़ तहसील अलीगंज एटा से हैं विपिन कुमार शाक्य सपना शाक्य रविंद्र राजेश रमेश चंद्र शाक्य राजीव प्रदीप शाक्य रंजीत सिद्धार्थ शाक्य सुजाता कुमारी संघमित्रा प्रज्ञा शाक्य प्रतिज्ञा शाक्य मम्मी पापा और उनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। राजकमल रेडियो श्रोता संघ आष्टी जिला जालना मराठवाड़ा से हैं सैयद यूनुस सैयद नोमान तनवीर मसरत सैयद निजामुद्दीन। धोतर जोड़ा आष्टी से हैं दशरथ सागुते और अनुष्का सागुते का। गांव फरासी जिला हिसार से हैं राजकुमार डूडी प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी का। जिला नांदेड़ एताला महाराष्ट्र से हैं शंकर लाल जायसवाल गणेश लाल जायसवाल शुभम प्रसाद जायसवाल और दुर्गेश्वरी जायसवाल का। जिला मुरादाबाद महेशपुर ग्राम महेशपुर खेम से हैं तौफीक अहमद सिद्दीकी अतीक अहमद सिद्दीकी मोहम्मद दानिश सिद्दीकी। बहड़ी से हैं इश्तियाक अहमद इदरीसी इकरान अहमद इदरीसी। पुराना तालाब डुबराव से हैं वली उल्लाह अंसारी असमा नाज अंसारी और शबनम बानो। जेल रोड बक्सर से हैं राज एसडी अंसारी और फातिमा नाज। चमन पार्क दिल्ली से हैं डॉक्टर सोनम और डॉक्टर अदीबा। धनोरी तेलीवाला से हैं निसार सलमानी नौशाद सलमानी बेबी आलिया और आयान बाबू का। जलालाबाद वेस्ट से हैं सुरेश गगनेजा पूनम गगनेजा विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा का। रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं विनोद बंडलकर वीणा बंडलकर और विविधा बंडलकर। कस्बा मीरगंज बिजली घर से हैं आदर्श दिवाकर लव दिवाकर ओमेंद्रपुरी गोस्वामी भाई कल्लू मिस्त्री। गांव लोहरडा जिला बागपत से हैं जगमोहन सिंह प्रजापत श्रीमती मुन्नेश देवी अर्जुन भारती अंजलि नितिन जगमोहन सुतीर नूतन भुवनेश्वरी देवी। करावल नगर दिल्ली से हैं श्री रामनाथ प्रजापति और श्रीमती सुमन देवी। आप सभी लोगों ने पसंद किया है ये गीत। फिल्म का नाम है गैम्बलर और इस गीत को गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने।

श्रोताओं, ऐसे में आपने ट्यून किया है 100.4 FM आकाशवाणी का बरेली केंद्र। जहां है आप वहां है हम। और ये कमेंट हम तक पहुंचा है फेसबुक पर आप सभी का। गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा से हैं राधेश्याम शर्मा और इंदिरा शर्मा। उत्तम नगर दिल्ली से हैं भोतराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश का। भोपालगढ़ राजस्थान से हैं धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार का। गांव मांडीवाला फजलका पंजाब से हैं ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, रजत और बेबी गरिमा बगड़िया का। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से हैं रविंद्र सिंह छावड़ा, इंद्रजीत कौर छावड़ा और स्वीटी छावड़ा का। अनारकली बाजार जगराव से हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्य मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, विनोद पुरी, जयपाल यादव और उनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त।

0: EMI किराया कैसे मैनेज करूं?
1: एक जुगाड़ है, अच्छा पैसा मिलेगा।
0: कैसे?
1: अपना बैंक डिटेल्स दो, कुछ लोग पैसे भेजेंगे, उनके बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कमीशन मिलेगा।
0: इतना इजी? काहे का इजी, ये तो मनी म्यूल है।
1: इल्लीगल पैसा घुमाते हैं दूसरे के अकाउंट से, अपराध है, जेल हो सकती है।
0: ना भाई ना।
2: अपने बैंक अकाउंट को सेफ रखें, किसी को यूज ना करने दें। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोताओं, ये कमेंट हम तक पहुंचा है आप सभी लोगों का। गांव कलमंडी खुर्द जिला झालावाड़ राजस्थान से हैं अनूप सिंह नथावत। उनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त चंदौसी रोड उत्तर प्रदेश से हैं। मुकेश गौतम, सुनील गौतम, अमन गौतम और शालू गौतम का ग्राम कोठा मक्खन बरेली से हैं। अफरोज अंसारी, फारूक अंसारी आदर्श नगर मलोट पंजाब से हैं। राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान, सौरभ, शाइना और मैंडी शर्मा का बहड़ी से हैं। अंजुम भाई और खालदा बेगम नंगल खेड़ा फगवाड़ा पंजाब से हैं। बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मुनीश शर्मा और राहुल शर्मा गाड़ी खाना चाईबासा झारखंड से हैं। जीवन विश्वकर्मा, मंजू विश्वकर्मा, नितिन विश्वकर्मा, सावन कुमार, सचिन और शक्ति का सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से हैं। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप कालका से हैं। शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, तल्लीताल नैनीताल से हैं। मोहन सिंह रावत, ममता रावत और वान्या रावत का

बाबा कुटीर रायगढ़ से हैं शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार राजेश्वरी और उत्कर्ष चौहान का। पहादा पलारी छत्तीसगढ़ से हैं नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशांत देवांगन, लखनलाल देवांगन, सावित्री बाई देवांगन। पलारी छत्तीसगढ़ से हैं नीतीश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग पुना राम देवांगन और कृष्णा देवांगन का। जेल रोड दिल्ली से हैं लाल बाबू दीवाना, उमा राज, दिव्या भारती और बेताब रेडियो लिसनर्स क्लब बिहार से हैं वसीम अक्रम, बेबी जोई और गुड़िया खातून का। मौलागढ़ नई बस्ती बरेली से हैं तरुणो अंसारी, तराना अंसारी, भाई अजरुद्दीन, मोहम्मद हुसैन अंसारी और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। लंघान पंडरिया छत्तीसगढ़ से हैं उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल और भारती बघेल का। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से हैं पीएस नभाकर, निर्मला नभाकर, विशाल नभाकर और नारायण इंगले का। सोपान तायड़े, आशीष मुहेकर का। भोजपुर तका सहारनपुर से हैं मोहम्मद इंतजार, मोहम्मद जावेद, राणा प्रधान, राहत अली और वकील अहमद का। भवानी पेट सोलापुर महाराष्ट्र से हैं रितिका मस्कीन, विष्णु मस्कीन, वाणी आरव, चंद्रकला गणेश, काशीनाथ, संगीता मस्कीन, आरोही प्रियांश, शिसोनी। शाहजीनगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से हैं संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे का। हयात कॉलोनी अररिया बिहार से हैं फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल और नफीसा प्रवीण का। और ये कमेंट हम तक पहुंचा है आप सभी लोगों का। पीलीभीत से हैं धर्मेंद्र कुमार, विजेंद्र कुमार, सुरेंद्र पाल और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से हैं लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी का। आप सभी लोगों ने पसंद किया है फिल्म अलग अलग का ये गीत। इस गीत को गाया है किशोर कुमार ने।

0: EMI किराया कैसे मैनेज करूं?
1: एक जुगाड़ है, अच्छा पैसा मिलेगा।
0: कैसे? अपना बैंक डिटेल्स दो, कुछ लोग पैसे भेजेंगे, उनके बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कमीशन मिलेगा।
1: इतना इजी?
0: काहे का इजी, ये तो मनी म्यूल है।
1: इल्लीगल पैसा घुमाते हैं दूसरे के अकाउंट से, अपराध है, जेल हो सकती है।
0: ना भाई ना। अपने बैंक अकाउंट को सेफ रखें, किसी को यूज ना करने दें। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं आपकी पसंद में अपनी पसंद के गीतों को आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। जहां हैं आप वहां हैं हम, ओनली ऑन 100.4 FM पर। और ये कमेंट हम तक पहुंचा है, रानीगंज बंगाल से हैं रवि और इंदर, छत्तीसगढ़ से हैं रामचंद्र माखीजा और काफिर भाई। ये कमेंट हमारे पास पहुंचा है आप सभी लोगों का, अलकनाथ मंदिर के सामने से हैं गंगवार बैग लाइन बरेली से, बेचेलाल गंगवार, गुड्डी देवी, प्रशांत देव, ज्ञानेंद्र देव और इला देवी गंगवार, बर्फा देवी, सुनील यादव, संजय अग्रवाल, अश्विनी कुमार मौर्य, मास्टर विनोद दीक्षित, राज, महावीर कश्यप, रमेश चंद्र सैनी और रोविन भाई का ये कमेंट हमारे पास आया है। मेदुशा दोना मुकेश राणा का, इन्होंने अपनी जगह का नाम नहीं लिखा है। राजनंद गांव छत्तीसगढ़ से हैं नारायण लाल साहू, कुलवंती सेवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार, प्रणय कुमार साहू, रुद्रांश प्रताप साहू, जनुवानी स्मृति नगर दुर्ग छत्तीसगढ़ से हैं सुरित रमेश साहू, तारा विद्या साहू, जितेंद्र कुमार, ऋषिवन लाल, किशन कुमार, सुरिता देवी साहू, त्रिलोक कुमार, राजा रणजीत सिंह साहू। मजनू का टिल्ला से हैं कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से हैं उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक का। तहसील फरीदपुर जिला बरेली से है राज सिंह, अनारकली, यश कुमारी, रुपेंद्र कुमार सिंह, पूजा प्रजापति, वंदना प्रजापति, दुष्यंत प्रजापति, गार्गी और भोलू का। एटा रोड गंजुंडवारा से है बीपी गौतम, सरिता गौतम, एम कलीम जख्मी, डी एच बच्चन का। लाल कुर्ती रुड़की कैंट से है राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आर के राजा का। और ये कमेंट हमारे पास आया है, अलागंज शाहजहांपुर से हैं उदित यादव, अभय यादव, निवांशी, प्रशांत यादव, डॉक्टर आरवी सिंह, अरजीत यादव और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। पदमपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से हैं मेहरा अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। मोहल्ला गड़ैया बरेली मस्जिद के पास से हैं बेबी रजिया शमसी, सलीम शमसी, अजीम शमसी और केसर शमसी का। फजल का पंजाब से हैं खेड़ा परिवार के लोग, भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाडी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, टिवांशी खेड़ा, वाणी खेड़ा, आरबी खेड़ा, जीवन सिंह और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। हिंगोली महाराष्ट्र से हैं शाहजी बोड़खे, श्रीमती नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े का। संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से हैं एडवोकेट वारिस अली खान, इस्लामुन निशा, शकील अहमद, शहनाज खान और बेबी नुसरा खान का। प्रमीलागंज आलोट जिला रतला मध्य प्रदेश से हैं बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई वर्मा, माया शोभा, राहुल ज्योति, अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश और ऋषि वर्मा का। मारहरा दरवाजा एटा से हैं नबी हसन अब्बासी, अनम अब्बासी, यशफ शहनाज, नवेद हसन अब्बासी, रसीद वारसी, सुहेल हसन अब्बासी। मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुगिसापुर से हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता मोहम्मद, नसीब पलक, लुगना और यश मंसूरी का। बीट शहर महाराष्ट्र से हैं नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री महत्रे, अंजलि करवा, बाला साहेब परवा, राम निवास अग्रवाल, धनंजय टूबल और पी बी कुलथे का। गांव भटूनी जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से हैं ईश्वरलाल मेहर, सुमित्रा मेहर, रेहांश मेहर, सृष्टि मेहर और मणिनाथ से हैं डॉक्टर अद्भुत कुमार दीक्षित। बठिंडा रोड मंडी डब्वाली से हैं राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तनिया नारंग का। पटेल नगर मरोड पंजाब से हैं डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप, आरजू जाजोरिया और गुड्डू का। राजपुर मध्य प्रदेश से हैं घीसु दिलावरे, लक्ष्मी, माधुरी, सोनाली, भगवान, पुष्पा, नेहा, एकता, अस्मिता, सौरभ, कुणाल दिलवारे का। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं सोहन जोशी, हरमिंदर चावला, शिव कुमार शर्मा, लोकेश जोशी, बेबी वैदेही जोशी, बेबी हनिस्का जोशी, अंकिता जोशी। अनूपपुर मध्य प्रदेश से हैं श्रीमती जयवंती केवट जी। खंडवा मध्य प्रदेश से हैं अब्दुल गफ्फार डावर जी। शाही मार्केट सुहारा जिला बिजनौर से हैं आशिक चौधरी,

रिहाना अदीब अरफत और कादिर चौधरी का। चंदपुर सीबीगंज बरेली से हैं पुनी अंसारी, सना अंसारी, ताहिरा अंसारी, आरजू अंसारी, अली हैदर अंसारी और शाहना अंसारी का। वडिंग खेड़ा पंजाब से हैं मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। ग्राम दुरा बांधा भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नवीन कुमार साहू, युवराज साहू। गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर से हैं सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा नाजिया, आफिया इब्राहिम, सद्दाम और अदीब हसन का। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से हैं रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और बेबी बॉय हिमाक्ष का। चंडीगढ़ से हैं सतीश अनेजा और विमला अनेजा। सिद्धार्थनगर दिव्यापुर बावली से हैं गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले और अवंतिका येले का। चक 14 पीएसबी जिला श्री गंगानगर से हैं कुलदीप सिंह, राजविंदर कौर, संदीप सिंह, जसकरण सिंह, हरदीप सिंह, मनराज विर्क और इनके परिवार के सभी सदस्य और साथ ही इनके सभी दोस्त। मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगेना बरेली से हैं बेनी सिंह सागर, वनीला सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश सागर उर्फ बंटी, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, रचना भारती, श्रीमती ओमवती भारती, खनक शगुन सारांश, आयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और प्रथम सिंह का। मलियाना सरधना मेरठ से हैं अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन और मुस्कान जैन का। साथी हैं मास्टर जीवीएम। आप सभी लोगों ने पसंद किया है ये गीत। फिल्म का नाम है मुगले आजम और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने।

0: EMI किराया कैसे मैनेज करूं? एक जुगाड़ है, अच्छा पैसा मिलेगा। कैसे? अपना बैंक डिटेल्स दो, कुछ लोग पैसे भेजेंगे, उनके बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कमीशन मिलेगा। इतना इजी? काहे का इजी, ये तो मनी म्यूल है। इल्लीगल पैसा घुमाते हैं दूसरे के अकाउंट से, अपराध है, जेल हो सकती है।
1: ना भाई ना।
2: अपने बैंक अकाउंट को सेफ रखें, किसी को यूज ना करने दें। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: और ये कमेंट हम तक पहुंचा है आप सभी लोगों का। ग्राम पंचायत बैठना पाठन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हैं बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, निधि निखिल वर्मा, उमेश मिथिलेश वर्मा और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। गुजरात गांधीग्राम से हैं प्रवीण सोनी, कलावती सोनी और जगदीश जौहरी। कस्बा उगेती से हैं देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज कुमार गुप्ता, पंकज बजाज, प्रिंस और प्रशांत गुप्ता, कार्तिक गुप्ता और निर्भय गुप्ता का। और ये कमेंट हमारे पास आया है, इन्होंने अपनी जगह का नाम लिखा है, गंज डुंडवारा से हैं शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान और अनु खान का। बड़ी गेवी चौराहा वाराणसी से हैं आप सभी लोग अरुण कुमार मालवीय और इनके परिवार के सभी सदस्य और मालवीय परिवार के सभी दोस्त। ग्राम रसुड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से हैं गोविंद वैष्णव, दिव्या, सोमन, सुमन, कोमल परी और कृतिका रमेश चंद्र डांगी का। ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से हैं मानिक राम प्रजापति, श्रीमती सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार, प्रशांत प्रजापति। ग्राम कालापारा से है रामचंद्र गुप्ता पांडे और राम रजवाड़े का। ग्राम ढकिया केसरपुर से हैं जिला पीलीभीत से अनिल कुमार राजपूत, सत्यपाल राजपूत, कैलाश राजपूत, राम गुलाम राजपूत, रामेश्वर दयाल और भगवत शरण का साथी हैं इनके समस्त ग्रामवासी। सदर बाजार कुरावली से हैं अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा का। सनावत से हैं शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बोडाना। मोतालाना महाराष्ट्र से हैं विजय सुलरकर, रतनवाला सुलरकर, आरती गौरी और ओम कुमार सुलरकर का। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुविहा नेवाता जिला गाजीपुर से हैं प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांचल राय का। शेरकोट बिजनौर से हैं नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम बाकी और अब्दुल गनी का। कमर कॉलोनी बड़वाहा जिला खरगोन से हैं प्रवीण श्रीमाली और मीना श्रीमाली का। मदरसा गेट भाऊपुर मड़ियाहू जौनपुर से हैं इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इरशाद, नवेद इरशाद और अजरा तबस्सुम का। रायपुर अन्य जिला बनारस से हैं मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नौरीन अंसारी और आफिया परवीन का। और ये कमेंट हमारे पास पहुंचा है आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से हैं उत्तराखंड से मेराज जहां, गुलाम साबिर राही और ताज मोहम्मद अंसारी का। गांव जाखौ से हैं शंभू दयाल खटक, बिमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार और कुमारी पूजा खटक का। गांव थाना पंजाब से हैं हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता का। गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से हैं मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजी शेख, दानिश शेख, अमरन आफरीदी। जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से हैं मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोडाना। सुदामा नगर खंडवा से हैं लक्ष्मी नंदिनी, रोहित ऋतु और मुकेश जगताप का। गली सिकलापुर बरेली मौर्य मंदिर, रतनमाला मौर्य, मुकेश मौर्य, प्रिंस मौर्य, प्रियांशी मौर्य, पुष्पा मौर्य, गौरव मौर्य और चंद्र प्रकाश मौर्य का। गांधीनगर सेक्टर 2 गुजरात से हैं जी के परमार और ज्योत्सना परमार का। फुलाय नगर बीड महाराष्ट्र से हैं बालाजी प्रसाद करवा, गीतांजलि करवा, आकाश करवा और आकांक्षा करवा का। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से हैं दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। ओखला संगम बिहार दिल्ली से हैं रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता और सुंदरम गुप्ता का। मुजफ्फरपुर बिहार से हैं राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, कल्पना कुमारी, मुन्नी कुमारी, चांदनी कुमारी, नंदिनी कुमारी और इनके सभी दोस्त। मजनू का टीला से हैं कमल मालूजा, मधु मालूजा, सागर मालूजा और सतना एमपी से हैं उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक का। होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से हैं जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। मझरा दौलतपुर आंवला जिला बरेली से हैं भगवान सिंह यादव, अर्पित यादव और देव सिंह यादव का। आप सभी लोगों ने पसंद किया है ये गीत, फिल्म का नाम है

0: EMI किराया कैसे मैनेज करूं?
1: एक जुगाड़ है, अच्छा पैसा मिलेगा।
0: कैसे?
1: अपना बैंक डिटेल्स दो, कुछ लोग पैसे भेजेंगे, उनके बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कमीशन मिलेगा।
0: इतना इजी? काहे का इजी, ये तो मनी म्यूल है।
1: इल्लीगल पैसा घुमाते हैं दूसरे के अकाउंट से, अपराध है, जेल हो सकती है।
0: ना भाई ना।
2: अपने बैंक अकाउंट को सेफ रखें, किसी को यूज ना करने दें। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं आपकी पसंद में अपनी पसंद के गीतों को, और ये कमेंट हमारे पास पहुंचे हैं आप सभी के निकट बिजली घर कस्बा मीरगंज बरेली यूपी से हैं कल्लू भाई मिस्त्री, मोहम्मद नईम, मोहम्मद फहीम, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद नसीम, अनाबिया फातिमा, बाबर अजीम और हमजा का। साथ में हैं इनके आदर्श दिवाकर, लव दिवाकर, यशपाल दिवाकर, उमेंद्र पुरी गोस्वामी, मुकेश गिरी और राजीव पुरी गोस्वामी। रामपुरा किसानान मझरा सिमरिया से हैं, तहसील मीरगंज से राम कुमार वर्मा, भगवान दास वर्मा, रविंद्र वर्मा, तेज प्रकाश वर्मा, सोमपाल वर्मा, शशि कुमार वर्मा, नथुलाल वर्मा, ननकी सिंह वर्मा और एचएल वर्मा, छोटे से विवेक और हिमांशी वर्मा का। 31 वाटिका सनसिटी विस्तार से हैं भक्ति सिंह, हिमांशु मिश्रा, राम मिश्रा, श्याम मिश्रा, कन्हैया मिश्रा, आशीष त्रिपाठी, सत्यदेव वर्मा और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त साथी हैं दिव्यांशी सिंह और कन्हैया सिंह, और साथ में हैं इनके आप सभी लोग उषा वर्मा और इनके परिवार के सभी सदस्य। आप सभी लोगों ने पसंद किया है ये गीत, लेकिन साथ ही साथ बहुत से कमेंट आप सभी लोगों के हम तक पहुंचते हैं। और श्रोता, हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जब एक बार कमेंट कर देते हैं तो प्लीज़ बार बार कमेंट ना करा करिए। और ये कमेंट हमारे पास पहुंचा है जिला नांदेड़ जैतला महाराष्ट्र से हैं शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, दुर्गेश्वरी जायसवाल का। ग्राम महेशपुर खेम से हैं तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी। बहड़ी से हैं इश्तियाक अहमद इदरीसी और इकरार अहमद इदरीसी का। आप सभी लोगों ने पसंद किया है कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज़ में जुर्म फिल्म का ये गीत।

0: श्रोताओं, अभी हम सुन रहे थे आपकी पसंद में अपनी पसंद के गीतों को। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। प्रातः के 11 बजे हैं और अब आप सुनेंगे कार्यक्रम आपका पत्र मिला। प्रस्तुति है मिथिलेश श्रीवास्तव की और प्रस्तुति सहयोग दिया है गजेंद्र यादव ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपका पत्र मिला।
1: में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है और स्टूडियो में स्वागत है मिथिलेश श्रीवास्तव जी आपका। आपको भी नमस्कार।
2: नमस्कार गजेंद्र जी, श्रोताओं को भी नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। खैर मकदम और क्या कहा जाए,
1: खुशामदीद।
2: खुशामदीद भी है
1: जी।
2: और गर्मियों के साथ।
1: हाँ ये तो है।
2: पिछले कार्यक्रम में हमने मौसम की बात की थी।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: अब जो है गर्मी परेशान कर रही है
1: और ये हर बरस परेशान करती है।
2: बिल्कुल।
1: और उस परेशानी को हम हर बार कहते हैं बहुत गर्मी है।
2: बहुत गर्मी,
1: बहुत गर्मी है।
2: और इस बार तो वो सूर्य देव कुछ ज्यादा ही तप रहे हैं, नौतपा लग रहा है।
1: बिल्कुल। आने वाले समय में भी अगर यही प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ चल रही है,
2: हाँ,
1: अगर ऐसी ही जारी रहती है तो आने वाले दिन और भी आने वाले बरस, आने वाला समय हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा गर्माहट भरा हो जाएगा।
2: बिल्कुल। और कहा भी जा रहा है वो जो सुपर अलनीनो
1: जी,
2: जो प्रशांत महासागर में शायद
1: जी,
2: तो वहां से जो जलवायु में सब प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं उसकी वजह से 1937 में जो बहुत ज्यादा गर्मी हुई थी,
1: बिल्कुल
2: वैसा कुछ दोहराव होने की आशंका जताई जा रही है। तो अपना बचाव करके रखें, ये बहुत जरूरी है। तमाम श्रोताओं को हम लोग ये बार बार बताते हैं।
1: मित्रेश जी, इससे पहले कि प्रकृति का कोप हम सब पर भारी पड़े,
2: हाँ,
1: हमें उस प्रकृति की शरण में जाकर फिर से उसका वही पुनरुद्धार करना है, जीर्णोद्धार करना है जो हमने उसके साथ दोहन किया है।
2: दोहन किया है और करते जा रहे हैं। 5 जून को पर्यावरण दिवस भी आ रहा है।
1: बिल्कुल।
2: तो उसी बहाने कम से कम हम लोग अगर एक एक पेड़ भी लगाएंगे तो जितने हमारे श्रोता हैं, कम से कम 15,000 फॉलोअर्स हैं, उससे ऊपर हैं, सभी लोग एक एक पेड़ लगाएं, उसकी देखभाल करें तो बहुत कुछ परिवर्तन होगा।
1: बिल्कुल। तो मिथिलेश जी, परिवर्तन तो कार्यक्रमों में भी होते रहते हैं
2: जी।
1: हमारी जो श्रोता हैं वो भी अपनी अपनी शिकायतों में परिवर्तन की बात करते हैं कभी किसी संबंध में तो कभी किसी संबंध में।
2: जी जी जी।
1: आज के इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं ईमेल्स के साथ।
2: हाँ, जरूर।
1: तो आज का जो पहला ईमेल है वो हम पढ़ते हैं। आप हैं विनेश कुमार जी, निकट बैंक सेंटर चनेटी बरेली से।
2: जी जी।
1: तो आप लिखते हैं कि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, इनके जो मैसेज की शुरुआत होती है बेहतरीन किसी भी ऐसे विषय पर होती है जो हम सबके लिए बहुत जरूरी।
2: बिल्कुल बिल्कुल। तो
1: वहां धीमा चलाएं और अपना अनमोल जीवन बचाएं, तेज रफ्तार जिंदगी पर बात।
2: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है, प्रेरणादायक बात है।
1: अच्छा मिथिलेश जी, इन्होंने जो शिकायत की है
2: जी,
1: उस शिकायत के अनुसार अभी पिछले शुक्रवार को,
2: हाँ हाँ,
1: फिल्म भी फ्राइडे में ये बता दिया गया कि जो भी आप आखिरी मैसेज भेजते हैं,
2: हाँ हाँ,
1: वही मैसेज हमें शो होता है प्रीव्यू में।
2: बिल्कुल।
1: तो आपने अगर गलत लिखा है तो गलत शो होगा और वो शामिल।
2: ये वैसे ही है कि मान लीजिए आप एग्जाम में कोई भी सवाल पूछा गया और उसका उत्तर आपने एक बार सही लिखा और फिर दोबारा फिर लिख दिया उसका, या फिर जैसे OMR सीट होती है
1: जी,
2: उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, कलर करना होता है एक ऑप्शन, एक आपने सही कर दिया है, बाद में आपको लगा नहीं नहीं ये वाला नहीं ये वाला सही है और गलत उत्तर आपने डाल दिया
1: जी,
2: तो मार्क तो उसी को किया जाएगा
1: जी,
2: माना तो वही जाएगा जो बाद में आपने किया है।
1: बिल्कुल।
2: तो यही बात हुई है आपके साथ
1: मिथिलेश जी। हमारे सभी कार्यक्रम पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ प्रसारित किए जाते हैं।
2: बिल्कुल।
1: तो सभी कार्यक्रम निष्पक्ष हैं, इस बात का विश्वास रखिए दोस्त, आपको मायूसी नहीं होगी।
2: बिल्कुल नहीं। आप अगर लिख रहे हैं
1: जी
2: तो आगे क्या लिखते हैं?
1: आगे तो बस कार्यक्रमों के बारे में इन्होंने लिखा है।
2: 21 मई
1: को इनको नमस्ते बरेली ब्रजेश जी, ऋतिक जी से जो विश्व चाय दिवस पर बातचीत की गई थी बहुत अच्छी थी, आपकी पसंद में भी आपने अच्छे कमेंट लिए, झुमका गिरारे में चाय की मिठास पर लोगों से बातचीत का अंदाज बहुत अच्छा था, अनुरोध गीत में भी आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी, 20 मई को आपकी पसंद में हरीश जी ने ढेर सारे कमेंट के साथ कार्यक्रम पेश किया, 19 मई को आपकी पसंद में परवेज जी की प्रस्तुति अच्छी थी, शानदार थी, नमस्ते बरेली में गर्मी से एहतियात के संबंध में लोगों से जो बातचीत की गई वो अच्छी लगी, झुमका गिरारे में दूल्हा मियां की बाजार से आपने जो प्रोग्राम कवरेज किया बहुत अच्छा था, ग्राम जगत में डाकघर की बचत योजनाओं के बारे में पूनम जी की रवि कुमार जी से बातचीत ज्ञानवर्धक थी, 18 मई को आपकी बात आकाशवाणी के साथ में आपने काम के प्रति कितने ईमानदार, ये टॉपिक रखा
2: था जी,
1: हाँ हाँ,

0: तो इस विषय पर लोगों के विचार अच्छे लगे। युववाणी में छात्रा अर्पिता से बातचीत जो की गई थी वो भी पसंद आई। 17 मई को हेलो फ्रेंड्स में वैभव जी की प्रस्तुति अच्छी थी। ग्राम जगत में दारा सिंह जी ने लोकमंत्री में बहुत अच्छे गीत सुनवाए। अंकुर में भूकंप के बारे में जानकारी अच्छी थी। आपकी पसंद में संजय जी की प्रस्तुति अच्छी थी। सभी प्रस्तुतकर्ताओं को शानदार प्रस्तुति देने के लिए बधाई और शुभकामनाएं।
1: जी आपको भी बधाई शुभकामनाएं, और आपकी जो शिकायत है उम्मीद करेंगे कि दूर हो जाएगी। और जो आपने कहा है 17 मई वाला हेलो फ्रेंड्स आपको पसंद आया, तो उसमें एक खास बात थी। उसमें वैभव मिश्रा के साथ साथ राघव अग्निहोत्री भी थे, उस दिन को होस्ट थे।
0: जी
1: और राघव अग्निहोत्री जो हैं वो इन्वर्टिस विश्वविद्यालय के पत्रकारिता के छात्र हैं।
0: जी
1: वहां पे आकाशवाणी की टीम गई थी, और वहां पे आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आशुभाषण एक्स्टेम्पोर प्रतियोगिता कराई गई थी।
0: जी
1: पर्चियां रख दी गई थी, पर्चियों में कई सारे टॉपिक्स थे, उन टॉपिक्स पे स्टूडेंट्स को एक पर्ची निकाल के उस पर तुरंत बोलना था। तो ये प्रतियोगिता हुई थी, उसमें भी द्वितीय स्थान प्राप्त किया था उन्होंने। तो पुरस्कार स्वरूप उन्हें बुलाया गया युववाणी में को होस्ट बनने के लिए।
0: जी
1: तो उस दिन ये खास था उस कार्यक्रम में।
0: जी
1: फिलहाल आपने कार्यक्रम सुना, अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: मित्रेश जी, अगला जो ईमेल है वो हमें ग्राम पंचायत करेली से महजबी अंसारी और इनके परिवारीजनों की ओर से मिला है।
1: जी
0: आज का पत्र मिला कार्यक्रम पेश करने वालों को मेरी तरफ से आदाब। मैं आकाशवाणी
1: आदाब
0: के सभी कार्यक्रमों को सुनती हूँ।
1: जी।
0: पिछले हफ्ते आपका पत्र मिला कार्यक्रम सुनकर अच्छा लगा, क्योंकि उसमें हमारा मेल भी शामिल किया गया और बहुत अच्छे जवाब मित्रेश जी ने दिए। इसी दिन का अंकुर कार्यक्रम भी नेमचंद भैया नाजमा दीदी के साथ बच्चों से फोन पर मीठी मीठी बातचीत की गई, ये पसंद आई। तेरह गुनारी संसार में वार्ता सुनी, जीवन में एकता का महत्व, ये वार्ता बहुत अच्छी थी। और साथ साथ किचन टिप्स भी सुने। चौथे कनाडी संसार में चर्चा सुनने को मिली, दवाई खरीदते समय रखें सावधानी। और श्रीमती रेणु जी ने बताया कि दवाओं का सही उपयोग कैसे करें। झुमका गिरारे में मोहम्मद परवेज जी के साथ ये कार्यक्रम सुना। दूल्हा मियाँ दरगाह पर ये टीम पहुंची थी, और हम चाहते हैं कि अगले हफ्ते में ईद उल अजहा होने वाली है, इसलिए अगला झुमका ईद पर अगर हो जाए तो बेहतर रहेगा।
1: हाँ, तो मंगलवार को संभवतः हम कोशिश करेंगे झुमका उसी पे हो जाए,
0: जी
1: है ना। उसमें आप लोग भी कुछ उसके इनपुट में मदद कीजिएगा।
0: जी
1: जी
0: बरेली जंक्शन से हमारे साथी हैं गरीब भाई।
1: जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत आपका।
0: गर्मी ज्यादा पड़ रही है
1: हाँ
0: इसलिए
1: हाँ
0: पानी ज्यादा पिए हैं।
1: बिल्कुल
0: बहुत जरूरी काम हो तभी बाहर निकले, अन्यथा घर पर ही रहें। हमारी ओर से आपको नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: सभी प्रोग्राम बहुत अच्छे चल रहे हैं। 15 मई को फिल्मी फ्राइडे उन्होंने सुना, अनुरोध गीत की प्रस्तुति अच्छी लगी। आपकी बात आकाशवाणी के साथ में, विषय आपकी कौन सी आदत आप छोड़ना चाहते हैं, छूटती नहीं, बहुत अच्छा टॉपिक था। शीशपाल जी की प्रस्तुति भी शानदार लगी, और लकी थ्री इनको अच्छा लगा। 16 मई को नमस्ते बरेली में रावत जी की प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। 17 मई को अंकुर में नेमचंद भैया नाजमा दीदी ने बहुत अच्छी जानकारियां हम लोगों को सुनवाई। संजय जी ने अनुरोध गीत में काफी अच्छे गाने सुनवाए। मन भावन में परवेज जी की प्रस्तुति अच्छी लगी। आपकी बात आकाशवाणी के साथ में, आपको गुस्सा कब और क्यों आता है, इस विषय परवेज जी ने काफी अच्छे विचार प्रस्तुत किए, और श्रोताओं के विचार भी अच्छे सुनने को मिले। आपका स्वास्थ्य में मिथिलेश जी की बातचीत बहुत ही ज्ञानवर्धक थी। कुछ याद है जरा जरा में गौरव जी की गौर साहब से बातचीत बड़ी अच्छी लगी।
1: क्या बात है।
0: 19 मई को झुमका गिरारे प्रोग्राम में परवेज जी द्वारा दूल्हा भैया की मजार से जो प्रस्तुति दी गई थी बहुत अच्छी थी। 20 मई को इन्होंने हरीश जी के द्वारा जो कार्यक्रम पेश किया गया, यंग बरेली और अनुरोध गीत, ये सुना, इनको बहुत पसंद आया। 21 मई को ब्रजेश तिवारी जी की नमस्ते बरेली कार्यक्रम और अनुरोध गीत में प्रस्तुति अच्छी लगी। आपकी बात आकाशवाणी के साथ में सुदेश सैनिक जी की प्रस्तुति अच्छी थी। आप सभी को बहुत बहुत बधाई।
1: आपको भी बहुत बहुत बधाई, और आपने कई सारे प्रोग्राम्स के बारे में तफसील से बताया है। बहुत पुराने श्रोता हैं और मन लगाकर सुनते हैं, तो ऐसे ही हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए। और जो आपकी बात आकाशवाणी के साथ के विषय की बात की है आपने,
0: जी
1: अच्छे लगे हैं आपको।
0: जी
1: तो एक श्रोता का मेरे पास मैसेज आया था कि आप इस तरह के विषय रखते हैं, विषय हैं या व्यक्तिगत सवाल कर रहे हैं आप, तो आप लोग जरा इस पे भी थोड़ा हमें सुझाव दीजिए।
0: जी
1: कि ज्यादातर श्रोता तो यही कह रहे हैं कि सवाल बड़े अच्छे लग रहे हैं,
0: जी
1: लेकिन एक श्रोता ने अगर ये कहा है कि ये व्यक्तिगत सवाल आप कर रहे हैं, तो इस पे भी आप अपनी राय दीजिए कि आपको ये सवाल अच्छे लग रहे हैं या फिर व्यक्तिगत सवाल लग रहे हैं।
0: बिल्कुल ठीक कहा मिथिलेश जी आपने। कुछ सारे भाव, कुछ ऐसी चीजें जो हम सभी में कॉमन होती हैं, तो मुझे लगता है कि इनका व्यक्तिगत से तो जोड़ना ठीक नहीं होगा,
1: हाँ
0: क्योंकि
1: बिल्कुल
0: भावार्थ है और हम इंसान हैं। हम में से कई लोगों की आदतें एक जैसी होती
1: एक
0: हैं,
1: जैसी होती
0: है
1: है।
0: ना। और कुछ सर्वमान्य चीजें हैं जैसे कोई बुराई है वो
1: हाँ
0: अधिकतम लोगों में हो सकती
1: हो
0: है,
1: सकती है।
0: तो मुझे लगता है कि ये व्यक्तिगत तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे श्रोता मित्र हमें बता सकते हैं
1: हाँ और
0: कि
1: क्या।
0: क्या
1: और
0: ये
1: हम तो उनसे भी हमने यही कहा और आप सभी से कहते हैं कि आप सभी श्रोता भी हमें विषय भेज सकते हैं,
0: बिल्कुल
1: और कुछ विषय कई बार आप में से ही कुछ सुझाए हुए होते हैं।

0: ना, तो जैसे एक बार एक विषय फैमिली डॉक्टर पे था, हमने सवाल डाला था कि आपका फैमिली डॉक्टर कौन है, तो हमारे श्रोता हैं लाल मोहम्मद अंसारी साहब, उन्होंने सुझाव दिया कि आप ये डालिए फैमिली डॉक्टर कैसा होना चाहिए, हमने उसको ऐड कर दिया।
1: जी
0: तो आप लोग भी अगर इस तरह के विषय देंगे या कुछ ऐड करने का सुझाव देंगे तो हम उस पर विचार जरूर करेंगे। और हमारी तो पूरी कोशिश है लोक सेवा प्रसारक के रूप में कि हम आप लोगों को इन्फोटेनमेंट दें, जागरूकता फैलाएं, वो भी मनोरंजन के साथ, यही
1: बिल्कुल।
0: कोशिश होती है।
1: तो अब अगले मेल की ओर
0: हाँ
1: बढ़े।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: हमारे ये साथी हैं ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से, लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री
0: अच्छा
1: अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, आशिक हुसैन अंसारी, अल्ताफ हुसैन अंसारी और मुन्ना अंसारी
0: हाँ,
1: लिखते हैं कार्यक्रम
0: नाम
1: पेश करने
0: लिया,
1: वाले।
0: उनका ईमेल भी आ
1: जी
0: गया,
1: जी
0: क्या
1: बिल्कुल।
0: बात है।
1: तो कहते हैं कार्यक्रम पेश करने वाले मित्रेश जी और साथी को हमारी ओर से प्यार भरा आदाब।
0: आदाब।
1: आकाशवाणी के 90

0: कार्यक्रम पेश करने वाले मिथिलेश जी और साथी को हमारी ओर से प्यार भरा आदाब।
1: आदाब।
0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर सभी स्टाफ को, श्रोताओं को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।
1: आप सबको भी बहुत बहुत बधाई।
0: ईद उल जुहा की भी इन्होंने बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद भेजी है
1: जी। ढेरों मुबारकबाद आप सबको भी।
0: केंद्र से प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं, सभी कार्यक्रमों को मन लगाकर सुनते हैं। 17 तारीख को आपकी पसंद जो पेश किया गया था उस और बहुत अच्छा लगा। आपका पत्र मिला कार्यक्रम भी इनको बहुत पसंद आया। परवेश जी ने जो कार्यक्रम किया था आपकी बात आकाशवाणी के साथ, वो खूबसूरत अंदाज में पेश किया, बहुत अच्छा लगा। हरद्वारी लाल जी ने लोकमंजरी कार्यक्रम बहुत अच्छे से पेश किया। 19 तारीख को झुमका गिरारी इन्होंने सुना, जो इनको बहुत अच्छा लगा। परवेश जी को बधाई दीजिएगा
1: जी। बिल्कुल, लोग सुन रहे होंगे
0: जी। इसी दिन हेलो किसान वाणी में सब्जियों की खेती में होने वाली बीमारियां और उनका समाधान, ये जानकारी अच्छी थी। मिथिलेश जी को
1: जी शुक्रिया आपका। जो विशेषज्ञ आते हैं दरअसल उनका कमाल होता है, उनके पास इतनी जानकारियां होती हैं।
0: बिल्कुल,
1: हम तो बस माध्यम होते हैं।
0: अच्छा, इन्होंने 20 तारीख के आपकी बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा है
1: अच्छा
0: कि ये हमें अच्छा नहीं लगा उस दिन का।
1: अच्छा, क्यों, क्या हुआ?
0: क्योंकि इसमें किसी भी श्रोता की पसंद का गाना नहीं सुनवाया। अच्छा। गाने आपने अपनी पसंद के ही सुनवाते रहे जो उद्घोषक थे। और इसी दिन हरीश जी ने आपके पसंद अनुरोध गीत बेहतरीन अंदाज में पेश किया, गाने बहुत अच्छे थे।
1: कौन थे, उनका नाम लिखा?
0: संजय जी का नाम लिखा हुआ है।
1: हाँ, तो
0: 20 तारीख का संजय जी का आपकी बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम में।
1: तो हाँ, वाकई ये प्रोग्राम तो दरअसल ये है कि श्रोताओं से हम उस विषय पे विचार जानते हैं और उन्हीं के पसंद के गाने भी सुनाते हैं
0: जी।
1: तो अगर ऐसा उन्होंने किया है तो ये तो गलत है। वो कार्यक्रम सुन रहे होंगे तो इस चीज में सुधार लाएंगे, है ना। और हमारी कोशिश होती है कि हम आप सबकी उम्मीदों पे खरा उतरे। और कोई गलती होती है तो देखिए, हमारे जो भी साथी हैं उनको हम ताकीद करते हैं, बताते हैं, और जो बेहतर करते हैं उनको ज्यादा मौका देते हैं। हमारी यही कोशिश होती है। तो फिलहाल ये गलती की बात उन तक हम पहुंचा देंगे
0: जी।
1: और फिर आगे क्या लिखते हैं?
0: आगे लिखते हैं कि एक अनुरोध है आपसे। मनभावन कार्यक्रम, लकी 3 कार्यक्रम, शेरे नक्षत्र कार्यक्रम, कवि गोष्ठी, ये 2 बजे से कर दें।
1: अच्छा,
0: तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि रस रंग और सब रंग कार्यक्रमों की आपके यहाँ भरमार है। थोड़ा कम हो जाएगा तो कोई हर्ज नहीं है।
1: चलिए, और भी लोग लिखेंगे तो फिर हम सभी श्रोताओं की डिमांड पे अगले जो हमारा FPC चेंज होता है उसमें हम बदल देंगे।
0: मिथिलेश जी, अब आगे बढ़ते हुए अगला जो ईमेल है वो हमें खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा जी ने भेजा है। लिखते हैं कि कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ताओं को सप्रेम नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: आकाशवाणी बरेली से प्रसारित सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं, कार्यक्रम बेहद पसंद भी आ रहे हैं। 15 मई का फिल्मी फ्राइडे इनको बहुत अच्छा लगा, पसंद आया। कार्यक्रम इतना पसंद आता है कि समय का बिल्कुल भी पता नहीं चलता ये कार्यक्रम कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ।
1: अच्छा,
0: कार्यक्रम की मस्ती में पूरी तरह से खो जाते हैं। 16 मई का नमस्ते बरेली देवेंद्र रावत जी ने बहुत सुंदर पेश किया। कार्यक्रम में बट सावित्री व्रत की कथा बहुत ही ज्यादा पसंद आई। 17 मई का इनको आपका पत्र मिला, कार्यक्रम अच्छा लगा और कार्यक्रम सुनकर इनका दिल खुशी से झूम गया। श्रोताओं के जो पत्र प्यार पूर्वक शामिल किए गए, उत्तर भी बड़े आदर से दिए गए। आपकी बात कार्यक्रम में इस सप्ताह के विषय सभी सराहनीय योग्य लगे।
1: क्या बात है,
0: ये कार्यक्रम सुनने में आनंद आ रहा है। 18 मई का नमस्ते बरेली में थिएटर कलाकार से जो संजय जी ने बातचीत सुनवाई वो इनको बहुत पसंद आई। नमस्ते बरेली कार्यक्रम आपकी पसंद, आपकी बात, अनुरोध गीत और अन्य कार्यक्रम नीतू त्रिपाठी जी, संजय कुमार, अमृता जी, श्रृंगार शेखर पाठक जी, शीश पाल जी, देवेंद्र रावत जी, हरीश कुमार जी, मोहम्मद परवेश जी, ब्रजेश तिवारी, सुदेश जी, इन सभी की शानदार प्रस्तुतियों में कार्यक्रम सुनकर भरपूर आनंद लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और YouTube पर आपका पत्र मिला कार्यक्रम में 10 मई लिखी है, जबकि ये कार्यक्रम 17 मई का आ रहा है, 10 मई का कार्यक्रम नहीं है।
1: चलिए, 10 मई भी अपलोड हो जाएगा। 17 मई वाला तो अपलोडेड है, आप बता ही रहे हैं
0: जी।
1: 10 मई वाला भी अपलोड हो जाएगा, ये भी अपलोड हो जाएगा। लेकिन आप लोग रेडियो पे सुनिए, पिछले कार्यक्रम में भी हमने यही किया
0: जी। बिल्कुल,
1: YouTube पे क्यों सुन रहे हैं, ये आप लोग गलत आदत डाल रहे हैं अपनी।
0: हाँ, YouTube पे तो बाद में अगर नहीं सुन पाते हैं,
1: कभी कभार वो मान लीजिए साल भर में 1-2 बार हो गया कि नहीं सुन पाए रह गया
0: जी। बिल्कुल,
1: आप लोग रेडियो के श्रोता हैं और हम लोग भी रेडियो में काम कर रहे हैं, वो तो ऑप्शनल है, एक हम एक तरह से सहेज के रख रहे हैं।
0: बिल्कुल, आर्काइव में हमारे पहुंच रहे हो।
1: हाँ,
0: और उसके लिए बरसों बाद भी
1: और जमाने के साथ वो डिजिटलाइज हो जाए और कोई बात नहीं है, लेकिन पहली बार आप रेडियो पे ही सुनिए। ये बार बार हो रहा है कि हाँ यूट्यूब पे, और ये तो आदत सही नहीं है।
0: चलिए अब
1: हाँ,
0: आगे बढ़ते
1: हम लोग
0: हैं।
1: की यूएसपी है रेडियो
0: जी बिल्कुल
1: और दूसरे यूएसपी है चिट्ठी, तो दोनों से ही हटते जा रहे हैं आप लोग,
0: बिल्कुल।
1: ये मत करिए।
0: अनुखलाल मौर्य जी हैं कटरा चांद का, पुराना शहर बरेली से। हमेशा की तरह आपका पत्र मिला कार्यक्रम पेश करने वालों को सप्रेम नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: शुक्रवार को दिन में 1 बजे अनुरोध
1: हाँ
0: गीत कार्यक्रम में इन्होंने सुना
1: हाँ हाँ
0: जो इनको बहुत अच्छा लगा, गाने पसंद आए थे। इसी दिन का शाम 5 बजकर

0: 20 मिनट पर लकी थ्री कार्यक्रम भी सुना ब्रजेश तिवारी जी के साथ। इसमें हम श्रोताओं की पसंद पर जो गाने सुनवाए गए बहुत अच्छे थे। और रविवार को इन्होंने अंकुर कार्यक्रम सुना नाजमा दीदी और नेमचंद भैया के साथ। बातचीत और रिकॉर्डिंग जो सुनवाई गई वो बहुत अच्छी थी, गाने भी अच्छे प्ले किए गए और जानकारी बहुत अच्छी थी। इसी दिन सुबह 10 बजे आपकी पसंद कार्यक्रम बहन मुनव्वर जहां जी ने पेश किया, इसमें गाने अच्छे लगे थे। और इसी दिन शाम 5:30 पर मन भावन कार्यक्रम सुना, श्रोताओं की शब्दावली पर जो गाने सुनवाए गए थे अच्छे थे। सुबह के बारे में बात करते हैं, सोमवार को 8:15 पर नमस्ते बरेली कार्यक्रम सुना, बरेली शहर की जो जानकारियां थी सुर्खियां थी वो इनको अच्छी लगी, जानकारी मिली। और शाम 7:31 पर इसी दिन उन्होंने अनुरोध गीत कार्यक्रम सुना, इसमें जो गाने सुनवाए गए थे बहुत अच्छे थे। मंगलवार सुबह 10 बजे नीतू जी के साथ आपकी पसंद कार्यक्रम सुना, इसमें श्रोताओं के कमेंट्स शामिल किए गए, गाने भी बहुत अच्छे थे। 4 बजे आपकी बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम सुना श्रृंगार शेखर पाठक जी के साथ, इसमें फेफड़ों पर जो जानकारी दी गई थी बहुत अच्छी थी।
1: क्या बात है,
0: और जो गाने सुनवाए थे वो भी अच्छे थे। तो अनोखे लाल जी बस यही कहते हैं,
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनोखे लाल जी, बहुत पुराने श्रोता हैं आप और चिट्ठी पत्री से अब आप मेल पे स्विच कर गए हैं, चिट्ठी भी लिखिए अच्छा लगेगा हमें।
0: बिल्कुल अच्छा, हर जगह छाए हुए हैं ये।
1: हाँ।
0: हमारे पेज पर जो कमेंट हैं उनमें भी इन्होंने चिट्ठी पत्री ही भेजी है।
1: अच्छा वही फोटो खींच के डाल देते हैं।
0: जी जी
1: ये भी अच्छा तरीका है, कम से कम ये तो है कि हाँ भाई चिट्ठी ही है, उसका हाईटेक अंदाज है।
0: बाकी
1: बाकी तो अनोखे लाल अनोखे हैं,
0: ठीक है।
1: और उसके अलावा गुड़ की मिठास भी होती है उनकी चिट्ठियों में,
0: कभी नारियल की सौंधी सौंधी खुशबू भी आती है नारियल पानी की, है ना।
1: बिल्कुल शीतलता है, आजकल गर्मी का मौसम है तो उनके शब्दों में नारियल की शीतलता होती है।
0: बिल्कुल आवाज की दुनिया के प्यारे से दोनों दोस्तों को खान परिवार का प्यार भरा सलाम।
1: सलाम आपको भी,
0: अर्थ है
1: इरशाद,
0: हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: एडवोकेट वारिस अली खान साहब हैं संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से।
1: क्या लिखते हैं,
0: लिखते हैं कि 17 मई का आपकी बात आकाशवाणी के साथ विषय, आपको गुस्सा आता है कब और क्यों?
1: हाँ, कब आता है और क्यों आता है।
0: 18 मई का आपकी बात आकाशवाणी के साथ टॉपिक आपने रखा था, काम के प्रति आप कितने ईमानदार, ये मुझे बहुत अच्छा लगा।
1: क्या बात है, साथ में ये भी था क्या कभी कभी बेईमानी चलती है।
0: चलती है, हाँ ये तो बस छोटी सी लाइन थी।
1: हाँ,
0: है ना।
1: हाँ,
0: तो ये तो एक कोशिश थी आपकी कि किस तरह से दिल के उस झरोखे में झांका जाए जहाँ कई बार हम अपने काम के साथ थोड़ी सी बेईमानी
1: कर जाते हैं और छुपा ले आते हैं।
0: हाँ, ये तो है,
1: ये व्यवहारिकता है भाई, इंसानी स्वभाव है
0: जी।
1: कहीं ना कहीं जो बहुत ईमानदार रहने की कोशिश करता है कई बार ऐसी मजबूरियां भी होती
0: हो जाती हैं,
1: छोटी छोटी बेईमानी कर जाते हैं नहीं चाहते हुए भी।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो स्वभाव है कोई ऐसे ही, क्योंकि अब देखिए युग की भी बात है, कहा हमारे जो सनातन धर्म में जो है सतयुग और त्रेता फिर द्वापर फिर ये कलयुग है, तो बेईमानी की जो प्रतिशतता है कलयुग में बढ़ गई है, धीरे धीरे बढ़ती गई
0: जी।
1: तो आपका लक्ष्य शुद्ध होना चाहिए, उद्देश्य अच्छा है तो थोड़ा बहुत झूठ चल जाता है ऐसा कहा गया है। कुछ जो है कई बार वो छोटी छोटी बेईमानी जो है आपकी बुद्धिमत्ता के रूप में भी
0: जानी जाती है।
1: उद्देश्य अगर आपका सही है तो
0: सही है, बात तो। ये है। कई बार कहा गया है कि वो झूठ जिससे किसी को नुकसान ना हो, जिसकी किसी का दिल ना दुखे, जिससे किसी का बुरा ना होता हो, तो झूठ
1: झूठ झूठ नहीं होता,
0: नहीं होता है।
1: वो सत्य से भी बढ़के हो जाता है।
0: बिल्कुल,
1: कई बार तो।
0: तो अब आगे ये लिखते हैं कि 19 मई का इनको झुमका गिरेरे प्रोग्राम जो था वो अच्छा लगा, क्योंकि इसमें जो जानकारी दी गई थी वो दूल्हे मियाँ जी की मजार है उसके बारे में जो बातचीत की थी कहानी और प्राचीन समय से वो इनको बहुत अच्छी लगी। और कहते हैं कि झुमका गिरेरे मेरा पसंदीदा कार्यक्रम है, 18 और 19 मई का आपकी पसंद और अनुरोध गीत मुझे बहुत अच्छा लगा, मगर मेरी एक शिकायत है, मेरे पत्र को मनभावन और लकी थ्री में शामिल नहीं किया जाता। आपकी बात आकाशवाणी के साथ में कुछ गिने चुने श्रोताओं के ही कॉल अटेंड की जाती हैं। मैंने कई बार कोशिश की मगर कॉल किसी ने नहीं रिसीव की।
1: नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हो सकता है आप या तो गलत नंबर पे लगा रहे हो या गलत रिंग जा रही हो, क्योंकि हमने तो कह रखा है कि एक श्रोता की अगर कॉल आज लग गई तो आप कम से कम एक हफ्ते बाद उनको लीजिए, और यही किया भी जा रहा है, तो हो सकता है कुछ तकनीकी दिक्कत हो। और दूसरे आप ये भी बताइए, जैसे बरेली की स्टोरी जो है दुल्हे मियाँ के मज़ार आपको अच्छी लगी, तो आप रहते लखनऊ में हैं, बरेली से इतना लगाव, इसकी वजह भी बताइए, क्या आपका
0: देखिए
1: नेटिव प्लेस है ये?

0: नेटिव प्लेस की बात भी हो सकती है मिथिलेश जी, एक चीज और
1: हाँ
0: भी है।
1: हाँ
0: देखिए, एक है प्रदेश की राजधानी
1: हाँ
0: और एक दूसरी है देश की राजधानी, और
1: हाँ
0: इन बीचों के बीचों बीच में है दिल,
1: दिल,
0: जिसको
1: हाँ
0: कहते हैं बरेली। तो
1: बरेली,
0: मुझे लगता है कि लखनऊ टू दिल्ली जाते हुए कई बार बरेली की फिजाओं से गुजरते होंगे,
1: हाँ,
0: और ये तो वैसे
1: उनका दिल
0: भी,
1: यहीं कहीं भटकता
0: और फिर
1: होगा,
0: सबसे बड़ी बात तो झुमके की
1: झुमका
0: है
1: की,
0: ना,
1: बिल्कुल सही बात है,
0: पुराना दौर गाना झुमका गिरा रे,
1: झुमका गिरा
0: कैसे
1: रे।
0: भूल सकते हैं। अच्छा,
1: हाँ
0: कई गाने हैं मिथिलेश जी
1: हाँ
0: जिनमें
1: हाँ
0: बरेली का जिक्र आया
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: है ना,
1: हाँ
0: और एक तो फिल्म भी है
1: हाँ फिल्म भी है,
0: बरेली
1: बरेली की
0: की,
1: बर्फी,
0: बर्फी।
1: अभी नई फिल्म है, बहुत ज्यादा पुरानी
0: जी
1: नहीं
0: जी बिल्कुल।
1: है।
0: अच्छा, एक चीज और भी है, बरेली में कशिश है ही कि वो सबको खींचता है अपनी
1: खींचता
0: ओर।
1: है, बिल्कुल मुझे ही खींच लिया, और
0: अच्छा
1: अभी तक मैं लखनऊ से यहाँ आ गया, मैंने वापस ट्रांसफर की कोशिश भी नहीं की, ना कर
0: जी,
1: रहा हूँ।
0: अच्छा, हम लोग भी ये कोशिश करते हैं कि ये जो खींचने की कशिश है ना, वो यूं बरकरार रहे, अपने
1: हाँ
0: प्रोग्राम के माध्यम से, अपनी
1: जी
0: बातचीत के और अपने टॉपिक्स के माध्यम से आगे
1: हाँ
0: बढ़े।
1: जी जरूर,
0: अगला ईमेल पढ़ते हैं। एकता क्लब सिंधौली, तहसील बीरगंज, जिला बरेली से इमरान शेख, जेशान वारसी, रेहान शेख, मोहम्मद सुहेल,
1: हाँ
0: अयुब खान और इनके सभी साथी हैं।
1: जी,
0: तो ये लिखते हैं कि बरेली की फिजाओं में मोहब्बत का रंग है,
1: क्या बात है।
0: हर एक गली में बसता दिलों का उमंग है, झुमकों की तरह इसकी पहचान मशहूर है, जो जाए यहाँ कहे यही मेरा संग है। कहा था अभी हमने।
1: क्या बात है, बिल्कुल यही कहा ही था। हाँ
0: तो लिखते हैं कि प्रस्तुतकर्ताओं को एकता क्लब की तरफ से प्यार भरा नमस्कार।
1: नमस्कार,
0: आकाशवाणी बरेली के तमाम कार्यक्रम हम
1: हाँ
0: नियमित सुनते हैं और बेहद पसंद आते हैं।
1: हाँ
0: काफी समय से आकाशवाणी बरेली के रेडियो के साथ हम बिताते हैं। 16 मई का आपका पत्र मिला कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। मिथिलेश श्रीवास्तव सर ने श्रोताओं के पत्रों के और ईमेल के जवाब बड़े ही शानदार तरीके से दिए, और पत्रों और ईमेल को बड़े ही दिलचस्प अंदाज में पेश भी किया गया। आकाशवाणी बरेली का मेरा पसंदीदा कार्यक्रम फिल्मी फ्राइडे है, जिसे बड़े ही खूबसूरत अंदाज में पेश किया जाता है। फिल्मों को फ्राई करने का जो तरीका है वो वाकई लाजवाब है।
1: क्या बात है,
0: 20 मई का
1: रेसिपी कुछ हमें भी बताइए,
0: अरे
1: मसाले कौन सा इस्तेमाल
0: वो
1: करते
0: ये कुछ
1: हैं।
0: सीक्रेट रेसिपी होती है हमारी, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के कुछ पेय पदार्थ हो या अंतरराष्ट्रीय स्तर के, तो उनकी
1: हाँ
0: अपनी जो रेसिपी है वो सीक्रेट रहती है।
1: वही तो ब्रांड वैल्यू होती है।
0: बिल्कुल। तो मिथिलेश जी, एक
1: चलिए
0: चीज और
1: बहुत
0: भी
1: अच्छा।
0: है, आजकल जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे फूड स्टॉल्स होते हैं, उन पर जो फूडी ब्लॉग करने वाले, ब्लॉगिंग के लोग होते हैं, तो वो जाके पूछते हैं, और वो स्टॉल वाला ये कहता है कि भैया ये नहीं
1: ये
0: बताएंगे,
1: नहीं
0: ये
1: बताएंगे।
0: तो हमारी सीक्रेट रेसिपी है या मसाला है।
1: कई बार हमने, जैसे मैं लखनऊ में अक्सर घर पे आता हूँ, तो वहाँ पे गोमती नगर में विकल्प खंड में एक चाय की दुकान है, चाय पकती रहती है सस्पेन में या भगोने में, पूरी पकती रहेगी, मैं इंतजार करूंगा अब मिले अब मिले, वो लास्ट में एक छोटे से डब्बे में से ऐसे चुटकी भर निकालेगा डालेगा, उसके बाद उसकी चाय पूरी होती है।
0: क्या बात है, वही सीक्रेट है,
1: वही सीक्रेट है, और फिर उसकी चाय लाजवाब बनती है, क्या
0: क्या
1: टेस्ट
0: बात
1: आता
0: है,
1: है।
0: वही कशिश बनाती है आपको खींचने की, और इसी के इंतजार में आप रहते हैं और चाय पकती रहती
1: पकती
0: है,
1: रहती है।
0: और पकने के बाद फिर वो जो सीक्रेट है
1: हाँ
0: वो घुलता है उस चाय में, और
1: हाँ
0: फिर वो आपके दिलो दिमाग को दीवाना बना देता है।
1: बिल्कुल, और वही दीवानगी हमारे श्रोताओं में भी देखने को मिलती है, और इसी सिलसिले हमने शुरू भी किया है,
0: जी,
1: आकाशवाणी के दीवाने।
0: दीवाने, और ये
1: हाँ
0: आज से नहीं 90 साल से हैं।
1: 90 साल से हैं दीवानगी चल रही है, हालांकि बहुत सारे लोगों ने 90 साल नहीं देखे होंगे, फिर भी जो किसी ने 50 साल देखे हैं,
0: जी
1: 40 साल
0: बिल्कुल
1: देखे हैं, 20 साल देखे हैं,
0: बिल्कुल
1: सब लोग अपनी दीवानगी, अपना इजहार मोहब्बत
0: जी।
1: बयां करिए आकाशवाणी के प्रति।
0: तो हम भी तो ये कहते हैं इनसे
1: हाँ
0: कि आप हमें दीवाना बनाते रहिए और
1: हाँ
0: हम आपको दीवानगी में बरकरार रखेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: आगे बढ़े,
1: आगे बढ़िए, बिल्कुल
0: ये लिखते हैं कि इनको 20 मई का ग्राम जगत बहुत अच्छा लगा,
1: हाँ
0: और श्रोताओं के लिए जो जानकारी दी गई थी बहुत अच्छी थी। सुरेंद्र भैया, कृष्णवीर भैया के बीच शानदार तालमेल देखने को मिला। 22 मई का नारी संसार कार्यक्रम सुना, जो बहुत अच्छा लगा, इसमें महिलाओं के लिए उपयोगी जानकारी थी और बच्चों के लिए अनुशासन कितना जरूरी, इस पर हुई चर्चा बहुत प्रभावशाली थी।
1: क्या बात है।
0: सेहत की जिम्मेदारी, गर्मी से हिफाजत, शदीद गर्मी, तेज धूप के दौरान इस मौसम में अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं ताकि जिस्म में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन ना हो। धूप में निकलते वक्त सर को ढक कर रखें और हल्के रंग के कपड़े पहनें। कोशिश करें कि दोपहर के वक्त बाहर कम निकलें, क्योंकि यही वक्त सबसे ज्यादा गर्म होता है। अपनी और अपने घर वालों की हिफाजत करें, क्योंकि सेहत है तो आपके पास सबसे बड़ी दौलत है।
1: जी बिल्कुल, सेहत ही सबसे तंदुरुस्ती हजार नियामत है, कहा ही जाता है, आपके पास करोड़ों रुपए हों लेकिन अगर आप सेहतमंद नहीं हैं तो आप बेहद गरीब महसूस करेंगे खुद को,
0: जी
1: बिल्कुल 100%।

0: की बात कही है, ये एकता क्लब से जो लोग हैं इन्होंने, तो आगे भी ऐसे ही हमें कमेंट करते रहें, यही उम्मीद है।
1: जी बिल्कुल। और अगला एक और ईमेल हमें मिला है,
0: हाँ
1: ये हमारे साथी हैं सुल्तान रजा, इकबाल रजा, जीशान खान, अफजल खान, मोनिश रजा, सादिक रजा, ये
0: हाँ
1: हमें ईमेल करते हैं कुतुब खाना सब्जी मंडी बरेली से।
0: अच्छा
1: आपके यहाँ के सारे प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं, देवेंद्र रावत जी और
0: हाँ
1: शिप्रा मैडम, रोचना मैम, मुनव्वर जहाँ, ब्रजेश तिवारी, शीशपाल परवेज, नीतू त्रिपाठी, बाकी सारी आपके केंद्र से एक से अच्छे कार्यक्रम पेश होते हैं। एक
0: हाँ
1: शिकायत है, सदाबहार
0: अच्छा
1: गीत सुबह में किया करें,
0: अच्छा
1: सुबह
0: अच्छा
1: 7:30 बजे से अच्छा रहेगा, बाकी हम लोग सारा दिन आपका प्रोग्राम सुनते हैं। और मेरा ये संदेश अगर शामिल हुआ तब आगे से और विस्तार से सारी बातें हम लिखेंगे। धन्यवाद।
0: अच्छा अच्छा तो बिल्कुल आगे विस्तार से लिखिए। देखिए आज आपका ये मैसेज शामिल हो गया, और मुझे लगता है ये व्हाट्सएप पे भेजा है इन्होंने,
1: जी
0: और आप बिल्कुल आप सारे माध्यमों से आप लिख सकते हैं। सदाबहार गीत जहाँ तक सुबह 7:30 बजे करने की बात है, तो देखिए हम लोग आकाशवाणी बरेली से जो कार्यक्रमों की शुरुआत हम लोग 8:15 बजे कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो राजधानी
1: जी
0: हमारी है लखनऊ, वहाँ से भी अच्छे कार्यक्रम प्रसारित होते हैं, सुबह से ही शुरू होते हैं,
1: बिल्कुल
0: तो वहाँ से हमने कर दिया है। एफपीसी में बदलाव था, बहुत दिनों से है ये, अभी 1-2 महीने की बात नहीं, काफ़ी पहले से है ये। और जो सदाबहार गीत आप सुनना चाहते हैं, तो विविध भारती पे दोपहर के 2:30 बजे
1: जी
0: आते ही हैं सदाबहार नगमे,
1: जी
0: तो वहाँ से आप सुन सकते हैं। फिर भी अगर बहुत सारे श्रोता इसकी डिमांड करेंगे, तो हम इस पे विचार करने पे बाध्य हो जाएंगे,
1: बिल्कुल। अब चलते हैं मिथिलेश जी कमेंट्स की तरफ।
0: कमेंट्स की तरफ। बिल्कुल
1: तो आज का जो पहला कमेंट हम पढ़ने वाले हैं वो
0: हाँ
1: हमारे कौन कौन साथी हैं, कुछ दोस्तों ने तो फरमाइशें भेज दी हैं, लेकिन कुछ दोस्तों ने थोड़ी बहुत बात लिखी है, कुछ लोगों ने बहुत सारी चीजें लिखी हैं।
0: हाँ हाँ हाँ
1: एक शिकायत है, सबसे पहले यही पढ़ते हैं।
0: जी
1: 17 मई को इन्होंने आकाशवाणी के दीवाने में एक वीडियो हमें भेजा था पेज पर, लेकिन पेज पर आपने नहीं डाला है। और हमारे ये साथी हैं बनवारी लाल कुशवाहा जी।
0: बनवारी लाल कुशवाहा जी,
1: जी
0: तो आप ऐसा करिए मेल कर दीजिए, क्योंकि कई बार वो दिखता नहीं है आपने कहाँ भेजा है, एक बार फिर से भेज देते तो अच्छा रहता।
1: बिल्कुल
0: 17 मई को फेसबुक पेज पर नहीं डाला गया, वीडियो आपने कब भेजा है ये समझ में नहीं आ रहा है, हमें
1: बिल्कुल
0: प्राप्त नहीं हो पाया दरअसल, इसलिए सबसे अच्छा तरीका आप मेल कर दीजिए। मेल कर देंगे तो हमें निश्चित तौर पे मिल जाएगा, और दूसरे आप चाहें तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं,
1: जी
0: व्हाट्सएप का जो नंबर है वो भी हम एक बार प्रोग्राम के आखिर में बताते हैं, और अभी अभी भी बता सकते हैं,
1: बिल्कुल
0: हम आपको बता देते हैं व्हाट्सएप नंबर जो मेरे पास रहता है, प्रोग्राम हेड का नंबर है ये है, हाँ 9457-39-5859। बीच में जब ये लैंडलाइन वाला नंबर खराब हुआ था, तो
1: जी
0: उस समय ये नंबर हमने इस्तेमाल के लिए दिया था, तो वही नंबर है 9457-39-5859।
1: इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं
0: व्हाट्सएप
1: अपना
0: भी कर
1: वीडियो।
0: सकते हैं, वीडियो कर सकते हैं, और कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं ये भी बता सकते हैं। एक
1: जी
0: एक मैसेज आपने शामिल भी किया है,
1: बिल्कुल
0: वहीं से किया गया है,
1: जी
0: तो बिल्कुल आप वहां कर देंगे, या फिर जो ईमेल आईडी है उस पर भेज देंगे, आपका पत्र मिला बरेली
1: जी
0: @gmail.com पे,
1: बिल्कुल।
0: उस पर भेज देंगे तो भी मिल जाएगा।
1: अच्छा, अब तो इनके पत्र और कमेंट शामिल हो रहे हैं, तो अब तो दिक्कत नहीं है इनको।
0: हाँ हाँ बिल्कुल, अब तो शामिल हो रहे हैं।
1: जी, पिछले शुक्रवार को ही इनका कमेंट शामिल हुआ है।
0: हाँ।
1: सादुल शहर, जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ जी, चंद्रकला रेवाड़ जी और इनका पूरा परिवार बहुत विस्तृत रूप से अपना कमेंट हमें भेजे हैं।
0: हाँ।
1: लिखते हैं कि बरेली से प्रसारित कार्यक्रम नियमित रूप से सुनते हैं, प्रोग्राम बहुत पसंद आते हैं इसलिए सुनते हैं। सभी अनाउंसर जितने भी कार्यक्रम को तैयार करते हैं, मेहनत को हम सलाम करते हैं आप सबकी।
0: जी
1: आकाशवाणी
0: शुक्रिया।
1: बरेली श्रोताओं का बहुत बड़ा परिवार है, इस परिवार के साथ जुड़ना और परिवार के साथ अपनी राय, अपनी प्रतिक्रियाएं, अपनापन का एहसास हमें आकाशवाणी बरेली से होता है। यहाँ के प्रोग्राम की जितनी भी तारीफ करें उतना कम है, कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है जो श्रोताओं को पसंद ना आए। कम से कम ये तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आकाशवाणी बरेली का प्रोग्राम हमें बहुत अच्छा लगता है। अगर हमें कोई कमी नजर आती है तो हम जरूर आपको अवगत कराते हैं, लेकिन प्रोग्राम एक से बढ़कर एक है, पसंद आ रहे हैं, इसलिए बड़े गर्व की बात है। आकाशवाणी बरेली से जुड़कर श्रोता एक परिवार बन गया है और ये परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, ये भी हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और जो 90 साल का सफर आकाशवाणी ने तय किया है, उसकी खुशी में आप सभी ने सभी श्रोताओं को जोड़कर उनके विचारों को प्रोग्राम में शामिल करके श्रोताओं का दिल जीत लिया है। आप सबको बहुत शुभकामनाएं।
0: बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी, और दिल तो आपने भी जीता है, आप इस तरह से हौसला अफजाई कर रहे हैं, इससे भी हमें काम करने की प्रेरणा मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और तो आप कह रहे हैं कि श्रोताओं का परिवार बन गया, जी बिल्कुल, रेडियो से जुड़ा हुआ परिवार तो है ही, बहुत सारे हमारे श्रोता जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, पुराना वाला फोन यूज करते हैं, कीपैड वाला, और बहुत सारे शायद वो भी यूज नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो लोग

0: भी हमारे साथ जुड़े हैं, और जो लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल बखूबी जानते हैं, स्मार्ट तरीके से कर रहे हैं, ऐसे लोग फेसबुक से भी जुड़े हैं। आप देख ही सकते हैं 15,000 से ज्यादा फॉलोअर्स इस समय हमारे हैं, तो उनको और बढ़ाइए, परिवार को और बड़ा करिए, और ताकि और लोगों से हम जुड़ेंगे तो और अच्छा लगेगा, दूर दूर तक हमारी आवाज़ पहुंचेगी और आपका परिवार बढ़ता जाएगा। फिलहाल आपका ये बेहतरीन कमेंट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया
1: अगले हमारे जो श्रोता हैं
0: जी।
1: वो BL धाकड़ साहब हैं।
0: धाकड़, क्या
1: हाँ
0: बात है,
1: बिल्कुल, और इनका मतलब है भेरूलाल बख्तरिया धाकड़, इनके नाम
0: अच्छा
1: का पूरा
0: क्या
1: फुल
0: बात
1: फॉर्म
0: है,
1: है।
0: बहुत अच्छा है।
1: उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से कमेंट करते हैं,
0: हाँ
1: आकाशवाणी बरेली से प्रसारित सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं।
0: हाँ
1: 21 मई को सुबह नमस्ते बरेली में चाय दिवस पर चाय प्रेमियों से चर्चा और चाय को फूंक फूंक कर पीते हुए चाय का महत्व बताया।
0: क्या बात,
1: कार्यक्रम की प्रस्तुति सराहनीय लगी। उसी दिन का झुमका गिरारे और आपकी बात आकाशवाणी के साथ भी चाय पर ही केंद्रित था।
0: जी,
1: आपके सभी कार्यक्रम सराहनीय लगते हैं।
0: थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और उस दिन ड्यूटी ब्रजेश तिवारी की थी, आपको अच्छा लगा, और ऐसे ही हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए। और भी कुछ अच्छा हम क्या कर सकते हैं ये भी बताइए, कुछ
1: बिल्कुल।
0: आइडियाज, क्योंकि हमारे श्रोता ने कहा है कि परिवार है, तो हम सब मिलके आइडियाज जो है फ्लोट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: जी
1: आगे बढ़ते हुए कुछ दोस्तों के नाम शामिल कर रहे हैं जिन्होंने
0: हाँ
1: कमेंट में सिर्फ आपका पत्र मिला से संबंधित अपने रिएक्शंस हमें भेजे हैं।
0: जी, जरूर।
1: सार सलमानी जी धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से हैं, और ताज मोहम्मद अंसारी और इनके सभी साथी हैं गुलाम साबिर राही मेहरा जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से। और ये जो कमेंट हमें मिले हैं वो
0: प्रकाश कुमार दास भी लिख रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, और तालियां भी बजा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया
1: बिल्कुल,
0: आपका।
1: राजू कुमार जी को भी कोई शिकायत नहीं है, कार्यक्रम शानदार लगते हैं। मिथिलेश जी अब तो मुझे
0: हाँ
1: लगता है कोई कमेंट बाकी रहा नहीं है,
0: हाँ
1: और ईमेल भी शामिल हो गए, और आज
0: हाँ
1: तो एक नई शुरुआत हुई है, व्हाट्सएप पे भी आपके पास
0: व्हाट्सएप
1: कुछ
0: पे, हाँ
1: दोस्तों
0: नहीं
1: के।
0: पहले भी बताया था,
1: जी जी
0: वो हमारे श्रोता भूल जाते हैं,
1: हाँ
0: तो कोई बात नहीं, आप बिल्कुल नोट कर लीजिए एक बार फिर से कि व्हाट्सएप नंबर है 9457 39 58 59।
1: बिल्कुल
0: जो लोग हिंदी ना समझ पा रहे हो, हिंदी अंकों को,
1: जी जी
0: उनके लिए 9457 39 58 59 ये
1: बड़ा आसान
0: व्हाट्सएप।
1: नंबर है ये तो।
0: जी।
1: अच्छा, ईमेल अगर करना चाहते हैं हमारे श्रोता मित्र तो हमें ईमेल कर सकते हैं आपका पत्र मिला bareilly@gmail.com पर। और पत्रों के लिए पता तो जरूरी है, तो
0: जी बिल्कुल,
1: कार्यक्रम आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बरेली, PIN code 243001। अगले हफ्ते ढेरों शिकायतें सुझावों और तारीफों के साथ हम फिर हाजिर होंगे।
0: हाँ।
1: तब तक के लिए आपका पत्र मिला कार्यक्रम से गजेंद्र,
0: और मिथिलेश को दीजिए अनुमति।
1: कीजिए स्वीकार हम दोनों की ओर से सब प्रेम, नमस्कार।
0: नमस्कार
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपका पत्र मिला। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। अब आप आनंद लेंगे लोकगीतों का, और आज कलाकार हैं लोकगीतों में गीता पंत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लोकगीतों को, आज कलाकार थी गीता पंत। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर।

0: FM 100.4 MHz यानी कि आकाशवाणी बरेली आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम, अनुरोध गीत, आपकी पसंद, आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें। हमारी ईमेल आईडी है AIRBareilly@gmail.com। एक बार फिर से सुन लीजिए AIRBareilly@gmail.com।
1: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे हमारे अगले कार्यक्रम, रिले करेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पदम के तहत 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इन एपिसोड में पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इनका प्रसारण कल और सोमवार को 101

आकाशवाणी गोल्ड पर किया जाएगा। इन्हें न्यूज ऑन एयर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे कल और सोमवार को सुबह 9:10 से आकाशवाणी से जुड़े रहें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि राजस्व मामले के त्वरित पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण को शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि भूमि और राजस्व से जुड़े मामलों में अनावश्यक विलंब किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निर्धारित समय सीमा के बाद भी लंबित रहने वाले मामलों में संबंधित अधिकारियों और कार्मिकों को जवाबदेही तय करते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। कल लखनऊ में राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों के निस्तारण की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीक आधारित व्यवस्था, जवाबदेही और समयबद्ध कार्यप्रणाली के माध्यम से राजस्व न्यायालयों की कार्यक्षमता को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर ब्रज घाट में कल होने वाले गंगा दशहरा पर्व को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं पुलिस प्रशासन ने आज डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर के जरिए मेला क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले होंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर 3:30 से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 से होगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। प्रतियोगिता में कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जॉइंट्स को हरा दिया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 1 बजे प्रसारित होगा।

0: सुबह की खूबसूरत शुरुआत। सुकून से भरा दोपहर,
1: पुरानी जींस और गिटार,
0: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
1: जगा,
0: फिर रात को फुर्सत के वो पल,
2: ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा,
0: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज। एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: शरीर में हॉर्मोन्स की कमी या अधिकता,
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं 300 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी चरक हॉस्पिटल दुबग्गा लखनऊ।
3: शरीर में हॉर्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी,
5: थायराइड इम्बैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
4: 12:05 दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन 100.7 FM रेनबो के लोकप्रिय कार्यक्रम हेल्थ एंड फिटनेस में आप सभी का मैं समरीन स्वागत करती हूं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण विषय में, जो है गर्मियों में हार्ट को कैसे बेहतर रखें और उसका ख्याल रखें। तेज धूप, बढ़ता तापमान, डिहाइड्रेशन और अनियमित दिनचर्या का असर सिर्फ हमारी त्वचा पर और शरीर पर नहीं होता, बल्कि हमारे दिल पर भी इसका खासा असर पड़ता है। खासतौर पर

0: हार्ट पेशेंट्स और बुजुर्गों को इस मौसम में अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत होती है। इन्हीं महत्वपूर्ण मुद्दों पर और बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं चरक हॉस्पिटल के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष झा। डॉक्टर साहब, आपका एफएम स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: एफएम के श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।
0: जी डॉक्टर साहब, पहला सवाल जो मैं आपसे जानना चाहूंगी वो है कि गर्मियों के मौसम में दिल की सेहत को किस तरह से बनाए रखें और किस तरह से ये हमारे हार्ट को प्रभावित करता है।
1: गर्मियों के मौसम में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है और उससे हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है। गर्मियों के वजह से हार्ट की धड़कन बढ़ने लगती है, हार्ट को ब्लड 2 से 3 गुना ज़्यादा पंप करना पड़ता है। तो गर्मियों के वजह से दिल की जो नलिकाएँ हैं वो थोड़ी फैल जाती हैं, उसकी वजह से हार्ट को ब्लड सप्लाई ज़्यादा मेंटेन करना पड़ता है और साथ में धड़कन एबनॉर्मल हो जाती है, ब्लड प्रेशर का ऊपर नीचे उतार चढ़ाव भी में होता रहता है, तो हार्ट पे काफी असर पड़ता है, इसलिए हमें हार्ट का दिल का काफी ध्यान रखने की जरूरत है।
0: जी, तो दिल का ख्याल अगर आप भी रखना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 0522-223-8845 पर, और इसके अलावा दूसरा नंबर है 0522-298-2377 पर। इसके अलावा अगर आपकी कॉल नहीं लग रही है तो आप हमें fmakashwadi@gmail.com पर मेल भी कर सकते हैं। हमारे साथ एक श्रोता जुड़े हैं, आइए जानते हैं कि उनकी दिल से जुड़ी क्या समस्या है। हेलो
2: जी मैम,
0: क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं और डॉक्टर साहब से क्या सवाल है आपका?
2: मैम, मैं बिजनौर से बोल रहे हैं, मेरा नाम प्रीति है।
0: प्रीति
2: जी मैम,
0: प्रीति जी बताइए क्या समस्या आप इस वक्त महसूस कर रही हैं?
2: मैम, हल्का हल्का सीने में दर्द होता रहता है ना, हार्ट में, तो यही दिक्कत है। इससे कैसे बचा जा सकता, क्या उपाय हैं?
1: प्रीति जी, आपको चलने वलने से दर्द होता है या हर समय दर्द होता रहता है?
2: नहीं, चलने फिरने से सर दर्द नहीं होता है, कभी कभी होता है।
1: कभी कभी आप अपना कुछ ब्लड टेस्ट या ECG टेस्ट कराया है?
2: जी सर, करवाया है।
1: और वो ये ECG और वो ब्लड टेस्ट में कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कराए हैं, वो नॉर्मल है क्या आपका?
2: जी सर, नॉर्मल है।
1: तो आप एक TMT टेस्ट करा लीजिए, वो हार्ट के जो आपकी फंक्शन को अच्छे से देख लेगा, और किसी आसपास के किसी जो हृदय रोग विशेषज्ञ हैं उनसे मिल लीजिए।
2: ओके सर।
0: डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि जब ज़्यादा गर्मी होती है तो क्या हार्ट अटैक के या ब्लड प्रेशर बढ़ने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, और अगर ऐसे में इस तरह की कोई समस्या हम महसूस करें तो तुरंत हमारी क्या कार्रवाई होनी चाहिए?
1: अत्यधिक गर्मी की वजह से हार्ट अटैक की समस्याएं बढ़ जाती है और साथ में ब्लड प्रेशर का भी उतार चढ़ाव होता रहता है। अगर हमें इस तरह से कोई दिक्कत लगे, अचानक ज़्यादा पसीना आए या सीने में कोई दर्द होता है, तो तुरंत ही नज़दीकी किसी डॉक्टर या किसी अस्पताल चले जाएं, वहां अपनी सारी जाँचें करा लें।
0: डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर और जुड़ चुके हैं, आइए उनसे जानते हैं। हेलो,
3: हेलो,
0: हाँ सुन पा रहे हैं आप हमें? क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं और क्या समस्या है?
3: हमारा नाम हिमांशी अरोरा, कोकोनाडा जिला से बात।
0: हिमांशी सीतापुर से बात कर रहे हैं क्या? डॉक्टर साहब से क्या सवाल है आपका?
3: हमारा सवाल है, माथा मतलब दर्द किया करता है।
0: हाँ हाँ, तो ये गर्मियों में ज्यादा बढ़ गया है या हमेशा से आपको सर दर्द की समस्या थी?
3: गर्मियों में बढ़ गया है।
0: डॉक्टर साहब,
1: आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करा लीजिए, गर्मियों में जो बढ़ रहा हो सकता है ब्लड प्रेशर के उतार चढ़ाव की वजह से होता है। दूसरा, अगर कोई स्ट्रेस तो नहीं लिया है आपने, तो अगर स्ट्रेस है तो आप स्ट्रेस को कम कीजिए और ब्लड प्रेशर चेक करा लीजिए। इसके बाद भी अगर दिक्कत होती है तो किसी नज़दीक के किसी भी चिकित्सक से मिल लीजिए।
0: डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर कोई हार्ट पेशेंट है तो वो किन किन बातों का ध्यान रखे जब ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है, जैसे अभी इस वक्त बेहद गर्मी है, नौतपा भी शुरू होने जा रहा है, तो स्पेशली हार्ट पेशेंट को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
1: देखिए, हार्ट पेशेंट्स को अभी जो काफ़ी गर्मी वाला मौसम होता है, जो 12 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में होता है, उस पीरियड में बाहर ना निकलें और कपड़े पूरे पहने, कॉटन वाले कपड़े लें और पानी, डिहाइड्रेशन से बचे। डिहाइड्रेशन सबसे मुख्य कारण है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम होगा। अच्छा। हार्ट की गति काफ़ी बढ़ने लगेगी, तो डिहाइड्रेशन से बचे। अगर बाहर निकलना भी पड़ता है आपको, तो 15-20 मिनट के अंतराल पे

0: 150 ml पानी आप बीच बीच में लेते रहें।
1: डॉक्टर साहब, आपने पानी का जिक्र किया और हम सब की आदत है कि हम धूप से आ रहे हैं चिलचिलाती हुई और एकदम ठंडा ठंडा पानी हमने पी लिया है, तो इसके क्या नुकसान है? नुकसान है भी या सिर्फ घर वाले ऐसे ही टोकते हैं मम्मियाँ कि जो है बस आप आए और ठंडा पानी पी लिया, कोल्ड ड्रिंक पी लिया या कोई भी तरल पदार्थ आपने ठंडा पी लिया, तो क्या वो नुकसान करता है दिल को?
0: देखिए जो, जो

0: देखिए, जो पानी अत्यधिक ठंडा पानी नुकसान करता है, दूसरा जो सोडा सोडा ड्रिंक होता है या फिर जो कोल्ड ड्रिंक या जो भी इस तरह की कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हम लेते हैं,
1: जी,
0: वो बेसिकली शरीर में उसका एब्जॉर्प्शन काफ़ी स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पानी की तुलना में धीरे धीरे शरीर में जाता है। तो जब भी हम डिहाइड्रेटेड रहते हैं तो उस समय हमें शरीर को पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है एब्जॉर्प्शन की, तो जो हम वो लेते हैं वो शरीर में पहुँच नहीं पाता, वो टाइम लगता है। तो उसके
1: अच्छा
0: वजह से आप इवन इफ आपने ले लिया है पानी या कोल्ड ड्रिंक या जूस लिया है, पर शरीर आपका डिहाइड्रेटेड है क्योंकि वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा। तो बेसिकली ज्यादा बेहतर रहेगा कि आप नॉर्मल पानी ही लीजिए।
1: नॉर्मल पानी लीजिए और सिप सिप करके
0: हाँ
1: लीजिए,
0: सर।
1: इकट्ठा पानी, आप जो गड़गड़ गड़गड़ बॉटल लगाई और पी गए पूरी बॉटल, वो नहीं करना
0: नहीं,
1: चाहिए।
0: जैसे मैंने पहले कहा था, हर 15-20 मिनट के अंतराल पे आप
1: हाँ
0: पानी कुछ कुछ लेते रहें जब भी आप
1: अच्छा,
0: ये
1: ओके
0: रहते हैं।
1: डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी क्या समस्या है। हेलो, अपना
0: हेलो
1: नाम बताइए,
0: हेलो
1: जगह का नाम
0: हेलो मैडम,
1: बताइए। जी
0: हेलो
1: जी
0: मैडम, गुड आफ्टरनून मैडम। संजय तिवारी बोल रहे लखनऊ से।
1: अरे वाह जी, बताइए संजय जी, क्या समस्या है आपकी?
0: मैडम हमको डॉक्टर से ही पूछना है। डॉक्टर गुड आफ्टरनून।
1: गुड आफ्टरनून संजय जी।
0: हाँ डॉक्टर जी, बताइए जैसे एक हार्ट जो बीट्स होती है उसकी एक गुड स्पीड कितनी रेंज की होती है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कभी कभी हम सुबह अगर अपने हार्ट बीट नापते हैं तो 62 रहती है, 65 रहती है, ऑफिस में जब काम करते हैं तो कभी कभी 80 से अबव चली जाती है, डॉक्टर इसका क्या व्हाट रीजन सर?
1: देखिए, हार्ट की जो धड़कन हमारी नॉर्मल होती है 60 से 100 के बीच में, ये नॉर्मल होती है।
0: जी
1: जब
0: सर।
1: भी हम रिलैक्स रहते हैं तो हार्ट को ज़्यादा काम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो हमारी दिल की धड़कन धीमी हो जाती है। जैसे हम सोएंगे तो शरीर को ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत है ही नहीं, और रिलैक्स पोजिशन
0: जी
1: में तो दिल की गति धीमी होती। जब भी आप काम करेंगे तो धीरे धीरे गति बढ़ेगी, और जब आप एक्सेसिव वर्क करेंगे जैसे खेलेंगे या हैवी एक्टिविटी करेंगे तो शरीर को ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत है, तो हार्ट उतना ज़्यादा ब्लड पंप करेगा, तो उस बीच धड़कन आपकी बढ़ेगी। ये नॉर्मल रिएक्शन है, 120 130 तक भी जा 140 तक भी चली जाएगी, तो वो नॉर्मल है। जी तो अगर आपकी भी समस्या है, आप भी दिल से जुड़ी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 0522-223-8845 पर, 2982377 पर। ये वो मैजिकल नंबर है जहां पर आपकी समस्या का समाधान है। हमारे साथ इस वक्त मनीष झा जी मौजूद हैं। लेंगे एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद गर्मियों में दिल का ख्याल कैसे रखें, इस पर चर्चा जारी है।
2: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
3: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
2: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
1: तो 12:14 और 6 सेकंड, आप सुन रहे हैं हेल्थ एंड फिटनेस, आपके साथ है समरीन और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मनीष झा, और विषय है हमारा कि गर्मियों में दिल का ख्याल कैसे रखें। तो डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, ज्यादा वक्त ना लेते हुए आइए जानते हैं और बातचीत करते हैं उनसे कि उनकी क्या समस्या है। हेलो
4: हेलो
1: जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं और अपनी परेशानी बताइए।
4: मैं सत्यन कुमार बात कर रहा हूँ, ग्राम व पोस्ट परसेंदी कैसरगंज बहराइच से।
1: बहराइच से बात कर रहे हैं आप, अपने सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से।
4: मैम पहले तो डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार, और सवाल मेरा यह है कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमसे दूर ही रहे गर्मी के महीने में, खासकर हृदय रोग हमसे दूर ही रहे एकदम।
0: नमस्कार जी, आप गर्मी में हृदय रोग आपसे दूर रहे तो इसके लिए बचाव के लिए सबसे ये है कि आप अत्यधिक गर्मी वाले समय में बाहर ना निकले, पहला चीज। दूसरा, जब ठंडा मौसम रहता है मॉर्निंग के आवर में और लेट जो शाम के बीच में, उसमें काफ़ी एक्सरसाइज करें। तीसरा, खान पान में काफ़ी ध्यान दें, अधिक तेल वाला और मसाला युक्त जो भोजन है वो कम लीजिए, और डिहाइड्रेशन से बचे रहिए, हमेशा पानी लेते रहिए हर कुछ कुछ अंतराल पर, ताकि शरीर में पानी की मात्रा कम ना हो पाए।
1: जी डॉक्टर साहब, एक और कमर्शियल ब्रेक लेंगे हम और उसके बाद बातचीत होगी हमारी।
2: शरीर में हॉर्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
3: थायराइड इम्बैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
1: जी तो हमारे साथ भी इस वक्त बहुत ही अनुभवी डॉक्टर मौजूद हैं। अगर आप इस गर्मी के मौसम में

0: हार्ट को लेकर चिंतित हैं, परेशान हैं या किसी तरह की समस्या से आप जूझ रहे हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, इसके अलावा मेल कर सकते हैं। नंबर्स मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, 0522-223-8845, 2982-377। इसके अलावा आप हमें fmakashwadilakhnow@gmail.com पर मेल भी कर सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, डॉक्टर साहब उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो, आपको हमारी आवाज सुनाई पड़ रही है? शायद कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम पानी की बात करते हैं, अभी हमने जिक्र किया, तो एक सामान्य व्यक्ति को और एक हार्ट पेशेंट को पानी कितना पीना चाहिए?
1: देखिए, हार्ट पेशेंट में दो तरह का है। एक सामान्य व्यक्तियों को नॉर्मली 4 से 5 लीटर पानी लेना चाहिए। दूसरा हार्ट के पेशेंट, दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जिनके हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम होती है, वैसे मरीजों को बहुत ज्यादा पानी नहीं लेना चाहिए।
0: अच्छा।
1: उन्हें गर्मियों के मौसम में 2 ढाई लीटर के आसपास पानी लेना चाहिए। लेकिन जिनकी पंपिंग कैपेसिटी, हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी अच्छी है, वो नॉर्मल सामान्य मनुष्य के जैसे ही 4 से 5 लीटर पानी ले।
0: डॉक्टर साहब एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो
2: हेलो,
0: हाँ जी, क्या नाम है आपका और कहाँ से बोल रही हैं आप?
2: जी, मैं सुरभि सिंह बोल रही हूँ।
0: क्या नाम बताया आपने?
2: सुरभि सिंह।
0: सुरभि जी, सवाल पूछिए सुरभि।
2: मेरा सवाल ये है
0: जी
2: कि हार्ट के मरीजों को मतलब किस तरह से अपना ख्याल रखना चाहिए?
0: डॉक्टर साहब, हार्ट के मरीज अगर आप हैं तो किस तरह से आप अपना ख्याल रखेंगे, ये सवाल हमसे सुरभि पूछ रही हैं।
1: सुरभि जी, सुरभि जी, हार्ट का ख्याल रखने के लिए सबसे पहले आपको अपने खान पान में नियंत्रण रखना चाहिए। अधिक तेल चर्बी युक्त खाना मत खाइए। दूसरा, नियमित व्यायाम करते रहिए। रेगुलर 30 मिनट प्रतिदिन एक्सरसाइज की सलाह दी जाती है, मिनिमम वो करें या फिर ब्रिस्क वॉक करें, तेजी से चलना है। तीसरा, अगर कोई स्मोकिंग और अल्कोहल इस तरह की चीजें अगर है तो उससे बचे रहें।
0: जी डॉक्टर साहब, एक मेल हमारे पास आया है, लिखती हैं डॉक्टर सर को, मेरा नमस्कार सर, मेरा सवाल है, जब भी मैं जीने की सीढ़ियां चढ़ती हूं तो मेरे सीने में दर्द होने लगता है। मैं हमेशा गर्म पानी से नहाती हूं, गर्मियों में मुझे गर्मी बहुत अधिक लगती है, लेकिन ठंडे पानी से नहाने से ठंड लगने लगती है। इसके लक्षण क्या हो सकते हैं? और मैं पानी का सेवन अधिक से अधिक करती हूँ, दिन भर में 6 से 7 लीटर पानी पी लेती हैं ये। क्या सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आपको लग रही है समस्या क्या है डॉक्टर साहब?
1: देखिए, जीने चढ़ने में अगर सांस फूलती है तो ये हार्ट की एक बीमारी के एक लक्षण हो सकते हैं। तो आप कृपया किसी डॉक्टर के पास चले जाएं, अपनी ECG, ECO और एक ट्रेडमिल टेस्ट होता है, ये 3 चीज़ें टेस्ट करा लें। साथ में कुछ ब्लड टेस्ट अपना करा लीजिए, जैसे कोलेस्ट्रॉल और शुगर, ये जाँचें करा लीजिए।
0: डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़े हैं, आइए उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? हेलो
3: हेलो,
0: नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं और अपना सवाल डॉक्टर साहब से पूछे।
3: मेरा नाम असमत है, मैं लखीमपुर खीरी से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि मेरे जो हाथ पैर है ना, उनसे पसीना आने लगता है और अजीब लगने लगता है।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, इनके चलने फिरने से शायद हाथों में पसीना आता है और इनको थोड़ी सी घबराहट होती है, यही कहना चाह रहे हैं आप?
3: मैम
0: जी,
3: मेरी उम्र 16 का है और मैम मेरा एक और सवाल है, चेहरा साफ करने के लिए कोई ट्यूब हो तो बता दीजिए।
0: ये विषय नहीं है हमारा डॉक्टर साहब, इनको जो है समस्या हो रही है, हाथ में पसीना आ रहा है, क्या ये सिम्टम्स हो सकते हैं कि दिल में कुछ खराबी होना शुरू हो गई है मात्र 16 साल की उम्र में?
1: नहीं, क्या नाम आपने बताया?
0: हेलो, नाम क्या बताया आपने?
3: अल्तमस।
1: अल्तमस, देखिए ये हार्ट की बीमारी से कोई ये नहीं है, आप घबराएं नहीं, ये आपके घबराहट की वजह से होता है। आप बिल्कुल रिलैक्स, निश्चिंत रहिए, आपको अभी संभावना कम है हार्ट की बीमारी होने का। ठीक है, खूब पानी पीजिए और खूब एक्सरसाइज करिए।
0: 6 से 7 लीटर पानी पीना सही है?
1: 5 लीटर तक।
0: तो सब एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। आपसे जानना चाहेंगे कि ये तो हमने जाना कि क्या नहीं खाना चाहिए, क्या हमारे हार्ट को नुकसान करता है, आप डॉक्टर साहब ये बताइए कि किस तरह का खाना खाना चाहिए जो हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है।
1: हार्ट को हेल्दी रखने के लिए हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और

0: फाइबरस, जिस खाने में फाइबर की प्रचुरता रहे
1: जी
0: वैसे खाना लीजिए। भोज आपके जो खाने का जो प्लेट्स होता है उसका 1/3 पोर्शन फल और हरी सब्जियां होनी चाहिए।
1: अच्छा
0: और कहा जाता है कि आप अपने प्लेट्स को रंग बिरंगा कर दें,
1: हाँ
0: डिफरेंट कलर्स के फ्रूट्स रहेंगे तो उसमें काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट, फ्लेविनॉइड्स, वो सारी चीज़ें रहती है, वो आपके हार्ट को बढ़िया रखेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल नियंत्रण में रखेगा।
1: जी, तो इस गंभीर विषय से चलते हैं एक छोटी से म्यूजिकल सफर पर और सुनाते हैं आपको एक बेहतरीन सा गीत। लेकिन उससे पहले डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे आपने बताया कि इस तरह का खाना खाने से हमारी दिल की सेहत जो है वो अच्छी रहती है, तला भुना आप अवॉइड करें तो किस लेवल तक अवॉइड करें? क्योंकि हमारे तो खान पान का हिस्सा है, बीइंग भारतीय इंडियन होने के नाते हम खाने में हमारे होता ही है, समोसे हमारे फेवरेट होते हैं, हर शाम हम चाय जरूर, चाय और समोसा साथ लेते हैं। तो कैसा, इसको आप कैसे देखते हैं, इसकी मात्रा एकदम खत्म कर देनी चाहिए, कम मात्रा में लें तो चलेगा?
0: नहीं, धीरे धीरे उसको हमें कम करना। बेसिकली हम इंडियंस की डाइट में कार्बोहाइड्रेट और की मात्रा काफ़ी ज़्यादा रहता है। जेनेटिकली भी हम लोगों का ट्राइग्लिसराइड लेवल काफ़ी बढ़ा रहता है,
1: जी
0: इसलिए हम लोगों को इसका मात्रा नियंत्रण में रखना है।
1: जी डॉक्टर साहब, और जैसे कि मैंने कहा था कि इस सवाल के बाद हम आपको ले चलेंगे म्यूजिकल सफर पर।

0: जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
2: 12:25 आप सुन रहे हैं हेल्थ एंड फिटनेस, जिसमें हमारा आज का विषय है कि गर्मियों में दिल का ख्याल कैसे रखा जाए। वैसे तो डॉक्टर साहब, हमारी लाइफस्टाइल ने बहुत सारी डिजीजेस इजाद कर दी हैं जो पहले हमारे बुजुर्ग नहीं जानते थे। आपसे जानना चाहेंगे कि अब इसको हम बेहतर भी करने की कोशिश कर रहे हैं आफ्टर कोविड, बहुत सारी

0: तब्दीलियां हमने अपनी जिंदगी में की हैं, जिसमें एक्सरसाइज, वॉक और योग जो है वो अब लोग जिंदगी में शामिल करने लगे हैं। क्या गर्मियों में हमें इनके वक्त में बदलाव कर देना चाहिए या बॉडी को थोड़ा रेस्ट देना चाहिए? क्या लगता है आपको?
1: नहीं, गर्मियों में भी एक्सरसाइज करिए, पर जो अत्यधिक गर्मी वो आप थोड़ा अर्ली मॉर्निंग कर ले, ज़्यादा
0: जी
1: जब
0: जी
1: तक धूप ना निकले उसके पहले ही एक्सरसाइज, जब तक मौसम ठंडा रहता है उसमें एक्सरसाइज कर ले, और शाम में भी धूप जाने के बाद अगर शाम में अगर करते हैं तो लेट में थोड़ा देर करके एक्सरसाइज करें, ताकि
0: मतलब ज्यादा
1: हाँ
0: पेन ना लें गर्मियों
1: हाँ
0: में।
1: ज़्यादा हो।
0: लेकिन आप पेन लीजिए अगर आपको अपनी समस्या का हल जानना है। 0525223885298237 ये वो मैजिकल नंबर हैं जिन पर आपको आपकी समस्या का समाधान मिल सकता है। डॉक्टर मनीष झा सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक कॉलर। आइए जानते हैं कि उनकी क्या समस्या है। नाम बताइए, जगह का नाम बताइए और डॉक्टर साहब से अपना सवाल रखिए।
2: हेलो,
0: जी क्या नाम है आपका?
2: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते
2: मैम, मैं मधु अंधेलिया पोस्ट फतेहपुर जिला उन्नाव से बोल रही हूँ।
0: जी।
2: मैम, कभी कभी मेरे सीने में दर्द सा होता है अचानक।
0: जी तो डॉक्टर साहब ये उन्नाव से बात कर रही हैं मधु, इनके सीने में कभी कभी इनको दर्द महसूस होता है। किस तरह का इन्हें जांच करने की जरूरत है या फिर गैस की नॉर्मल प्रॉब्लम भी हो सकती है?
1: मधु जी, क्या बताएंगे आपकी उम्र कितनी हो रही है?
0: मधु अपनी उम्र बताइए आप।
2: मेरी सारी 21 साल उम्र है
1: और इसके
2: और मेरे
1: हाँ
2: में दर्द भी होता है।
1: एक मधु जी, आप एक अपना ईसीजी करा लीजिए, और चलने वलने पे तो आपको सीने में कोई दर्द नहीं होता है?
2: नहीं, चलने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे ऐसे बात करते हैं ना, कभी कभी अगर कोई तेज बोल देता है तो घबराहट सी होती है, बस अचानक से सीने में दर्द होने लगता है।
1: ये जो लक्षण हो रहे हैं, ये हार्ट की तरफ संभावना काफी कम है, पर उसके बावजूद भी आप एक ईसीजी करवा लीजिए।
2: सर, धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: रुक सब, अगर सीने में दर्द जैसे इन्होंने बताया और एज आपकी 40+ है, आपको सीने में दर्द है, घबराहट है, तुरंत अगर आपके सामने या फिर किसी को आपको लग रहा है कि ये जो सिम्टम्स हैं ये हार्ट अटैक के हैं, तो आपको क्या करना चाहिए जिससे रिलीफ मिल जाए वक्ती तौर पे?
1: देखिए, अगर सीने में दर्द हो रहा है, अगर किसी को आपके आपको या किसी आपके जो मित्र हैं या किसी घर के संबंधी को, सबसे सबसे पहले एक डिस्प्रिन की टैबलेट और एक सॉर्बिट्रेट की टैबलेट इमीडिएट ले लें,
0: अच्छा
1: और वो काफ़ी हार्ट की जान बचाएगा। और दूसरा, किसी नज़दीक के किसी अस्पताल में चले जाएं, अपनी ईसीजी करा लें, किसी चिकित्सक से तुरंत सलाह लें, इसे इग्नोर ना करें, गैस समझकर इग्नोर ना करें।
0: जी। डॉक्टर साहब, एक मेल हमारे पास आया है, उसे भी शामिल कर लेते हैं। महेंद्र दीपान लिखते हैं, डॉक्टर साहब मेरा सवाल यह है कि गर्मियों में शरीर का तापमान नियंत्रित करने के लिए हमारा दिल बहुत तेजी से खून को त्वचा की तरफ पंप करता है, जिससे दिल पर काम का बोझ जो है वो बढ़ जाता है। ऐसे में यदि किसी मरीज का दिल पहले से ही कमजोर हो तो उनका इस दिल में एक्स्ट्रा लोड बढ़ जाता है। कैसे संभालें इसको और इस स्थिति में साइलेंट हार्ट अटैक या हीट स्ट्रोक के अंतर को एक आम इंसान कैसे पहचाने?
1: देखिए, गर्मियों में आपने बिल्कुल सही कहा, जो नॉर्मल शरीर के रिएक्शंस होते हैं, त्वचा की नलिकाएं खुल जाती है ताकि उसमें ब्लड फ्लो ज़्यादा जाए, उसके वजह से जो बॉडी जो है हीट रिलीज करने की कोशिश करता है, उस प्रक्रिया के दौरान हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो बेस्ट ये है कि आप उस परिस्थिति से बाहर निकले। क्यों आप बाहर जाएंगे? अगर आपको लगता है कि हार्ट के मरीज हैं और दिक्कत ज़्यादा हो रही है, तो आप यूजुअली अवॉइड करिए, बेस्ट ट्रीटमेंट है। और दूसरा, आपकी जो दवाएं चल रही हैं उसको नियमित रूप से लेते रहें, वो आपका काफी हद तक केयर रखेगा।
0: जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके
2: कॉलर
0: हैं।
2: से बात कर रही है, उन्होंने आपके कॉल को
0: शायद वो उनका कोई और कॉल आ गया है। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से हम गर्मियों में अक्सर ये करते हैं कि एसी से फौरन हम गर्मी में चले गए या चिलचिलाती धूप से आए और फौरन एसी ऑन करके बिल्कुल सामने बैठ गए, ये किस तरह से नुकसानदेह हो सकता है हमारे लिए?
1: देखिए, अगर एसी वाले कमरे में काफ़ी चिल्ड हैं और अचानक हम बाहर निकलते हैं, तो बॉडी को एक हीट शॉक होता है, लगता
0: अच्छा
1: है, तो उसकी वजह से काफ़ी प्रोफ्यूजली, मतलब काफ़ी ज़्यादा पसीना आएगा, और शरीर जो तापमान का जो अंतर है तुरंत
0: जी
1: ही 15-20 डिग्री का, वो जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाता है, तो इसकी वजह से काफ़ी हीट स्ट्रोक और हार्ट फेलियर सबके जो इंसिडेंस बढ़ते हैं।
0: बढ़ते हैं।
1: तो बेटर है कि तापमान कमरे का बहुत कम मत करें, जो
0: जी
1: लोग बहुत लोग 18-20 कर लेते हैं वो मत करिए, 25-26 आसपास में जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उसके आसपास रही।

0: और धीरे धीरे कमरे से तुरंत ही बाहर ना जाए, एक नॉर्मल वाला एसी से
1: जी
0: बाहर निकले, नॉर्मल कमरे में आए और शरीर को थोड़ा एडजस्ट होने का टाइम दे, 1-2 मिनट, और उसके बाद बाहर निकले।
1: जी डॉक्टर साहब एक कॉलर हमारे साथ हैं इस वक्त फोन लाइन पर. हेलो हेलो,
2: हेलो,
1: नाम बताइए अपना और सवाल पूछिए.
2: मेरा नाम शीलू तिवारी है,
1: कहाँ से हैं आप? शीलू,
2: मैं लखीमपुर खीरी से बोल रही हूँ।
1: शुरू अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से.
2: मेरा सवाल है कि मुझे जब ज्यादा भीड़ में जाती हूँ तो घबराहट होने लगती है।
1: अच्छा, ज्यादा भीड़
2: और
1: में जाती हैं तो घबराहट होती है.
0: सिलू जी, ये थोड़ा एंजाइटी का लक्षण है, आप जो है सो थोड़ा रिलैक्स रहें, मेडिटेशन करिए, उससे ये ठीक हो जाएगा.
1: जी डॉक्टर साहब एक और कॉलर को हम शामिल करते हैं इस कार्यक्रम में. हेलो, आहो लगता है कॉल डिस्कनेक्ट हो गई. डॉक्टर साहब अगर हम ये बात करें कि गर्मी जिस हिसाब से बढ़ रही है तो इंसानों के साथ साथ जानवरों के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है ये दौर, जो हम लगातार नौतपा भी शुरू हो रहा है, किस तरह से हम बाहर निकलने से पहले अपने लिए क्या ऐसे पेय पदार्थ कुछ हैं जो पुराने तरीके में, जैसे आम पन्ना का जिक्र होता था, गन्ने के जूस का जिक्र होता था और सत्तू पिया जाता था कि
0: जी
1: गर्मी का प्रभाव हमारे ऊपर उतना ना पड़े, क्या ऐसी तैयारी करके निकले हम बाहर?
0: गर्मियों में जब भी आप बाहर निकले, अब शरीर में पानी की मात्रा मेंटेन रखना, डिहाइड्रेशन
1: जी
0: से बचना है, तो पानी मेंटेन रखना. दूसरा, जब बाहर में पसीना काफी आता है तो उसके साथ में शरीर सॉल्ट भी लूज करता है, तो हमें सॉल्ट को भी शरीर में बचा कर रखना. इसके लिए आप जो है कुछ कुछ अंतराल पे पानी लेते रहें, हर 15-20 मिनट पे 100-150 ml पानी लेते रहें. दूसरा, साथ में कुछ जो इस तरह के जो पुराने अपने देसी जो है आम पन्ना या इस तरह से, उसमें कुछ सॉल्ट रहते हैं, पोटेशियम सोडियम ये सब रहते हैं, तो वो सब आप लेते रहें ताकि शरीर में जो सॉल्ट की कमी होती है वो ना रहे.
1: जी डॉक्टर साहब एक कॉलर हमारे साथ हैं इस प्रोग्राम में, उनसे जानते हैं क्या
0: जी,
1: सवाल है.
0: मेरा नाम श्रीम त्रिपाठी है. मेरा सवाल ये है कि जैसे लो बीपी में भी मतलब चक्कर आते हैं और हाई बीपी में भी मतलब इंसान को चक्कर आ जाते हैं, तो दोनों के सिम्टम्स में क्या अंतर है?
1: नहीं, देखिए दोनों के सिम्टम्स में कोई अंतर नहीं. चक्कर आएगा, अगर बीपी काफी कम हो जाएगा तो ब्रेन को जो है सो ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती है, तो उसकी वजह से चक्कर आने लगते हैं.
0: जी
1: और तो इसलिए अगर चक्कर आता है तो आप अपना, जिस वजह से चक्कर आ रहा है तो आपको उसको क्योर करना होगा. अगर ब्लड प्रेशर लो रहता है तो आप अपने शरीर में लिक्विड की मात्रा बढ़ाएं, थोड़ा नमक और लिक्विड ज्यादा लें, और अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है तो ब्लड प्रेशर को आप कंट्रोल करें, उसको 120-130 के आसपास, जितना क्लोज 120-80 के आसपास रखेंगे तो चक्कर आने की संभावना कम हो जाएगी. डॉक्टर साहब एक सावित्री देवी हैं, उन्होंने हमें मेल किया है कि गुड आफ्टरनून डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? मैं भरतपुर बरगदी पोस्ट अर्जुनपुर डिस्ट्रिक्ट लखनऊ से आपका प्रोग्राम सुन रही हूँ. सवाल ये है कि एक नॉर्मल इंसान कैसे जाने कि उसे हार्ट की बीमारी है, हार्ट प्रॉब्लम के क्या लक्षण होते हैं?
0: सावित्री जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है. एक नॉर्मल आदमी को ये जानना सबसे जरूरी है कि कब उसे हार्ट की दिक्कत हो रही है और कब कोई नॉर्मल से दूसरी बीमारी. जब भी आपको सावित्री जी, अगर सीने में दर्द हो, तेज दर्द हो रहा है, आधे घंटे से ज्यादा दर्द हो रहा है, तो ये समझिए हार्ट की बीमारी हो सकती है. दूसरा, अगर दर्द नहीं होता है तो अगर आप चलते हैं, कुछ दूरी चलते हैं तो सीने में दर्द होता है, या कसावट महसूस होता है, या आपके जबड़े में दर्द होता है, बाएं हाथ के तरफ दर्द जाता है, तो ये भी हार्ट के लक्षण हो सकते हैं. तीसरा, अगर आप जीने चढ़ते हैं, सीढ़ियों चढ़ते हैं, तो उसमें सांस फूलने लगती है अचानक, तो ये हार्ट के लक्षण हो सकते हैं, तो उस समय आप अपना जांच करा लें.
1: डॉक्टर साहब आपसे एक सवाल जो मेरे जहन में ये आ रहा है कि डायबिटीज और हाई बीपी के मरीजों में गर्मियों में क्या दिल से जुड़ी समस्याएं जो है वो बढ़ने के चांसेस रहते हैं, एक हेल्दी हेल्दी क्या एक नॉर्मल इंसान के कंपैरेटिवली अगर हम बात करें तो?
0: देखिए, डायबिटीज और जो नॉर्मल सभी मरीजों में हार्ट की संभावना, हार्ट की बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है. ब्लड प्रेशर वाले मरीजों में जो स्ट्रोक के चांसेस जो गर्मियों में बढ़ जाते हैं, और डायबिटीज सब में कभी कभी डिहाइड्रेशन ज्यादा हो जाने की वजह से एक डायबिटिक कीटोएसिडोसिस बीमारी कही जाती है, वो भी काफी ज्यादा पाया जाता है.
1: जी जी तो सब एक कॉलर है हमारे साथ. हेलो
3: ये मैम सुरेन सुरेन मदेसिया बोल रहा हूँ
1: जी.
3: लखनऊ से.
1: हाँ जी
3: मैंने
1: सवाल
3: गाड़ी
1: पूछिए.
3: में दिखाया था मैम, जैसे मैं मतलब हार्ट बीट तो सही है,

0: जो हार्ट का अल्ट्रासाउंड होता है वो भी हुआ है और हाँ. मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है 220 210 260 आपकी 260 हो गया और मैं चला भुंजा भी नहीं खा रहा हूँ. मैं क्या करूँ कि मेरा कम रहे.
1: सुधीर जी देखिए आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल सचमुच में बढ़ा हुआ है तो आप जो है सो तला भुना नहीं खा रही काफ़ी अच्छा कर रहे हैं. साथ में कुछ खाने में फल फल काफ़ी बढ़ाइए. दूसरा आप रेगुलर एक्सरसाइज करिए 30 से 40 मिनट रोज चलिए और अगर इसके बावजूद भी नहीं कंट्रोल होता है तो एक जो कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा ले लें.
2: जी डॉक्टर साहब अभी इसके बाद हम लेंगे एक छोटा सा कॉमर्शियल और म्यूजिकल ब्रेक एक साथ और उसके बाद हमारा जो विषय है गर्मियों में दिल का ख्याल कैसे रखें इस पर हम चर्चा करेंगे और आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में 0522-223-8845 और 2982377 नंबर्स के माध्यम से इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं. इसके अलावा आप fmakashwadi@gmail.com पर हमें मेल कर सकते हैं.
3: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है.
4: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज. एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ.
3: चरक हॉस्पिटल @ हरदोई रोड दुबग्गा.

0: Neurology services, experienced doctors or personalized care.
1: Pine Pediatric Brain and Spine Surgery, PICU, EEG, MRI, Genetic Test, Physio और Speech Therapy जैसी सुविधाएं ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए.
0: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा, हरदोई रोड, लखनऊ. कॉल 666-4444.
2: और देखते ही देखते हमारा प्रोग्राम अब इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन कॉलर्स का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है. अगर आप भी हमसे कुछ इस प्रोग्राम से विषय से संबंधित सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबरों पर 0522-223-8845-298-2377, FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर मेल के जरिए भी आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं. जो सवाल अभी हमारे पास मेल पर आया है, उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल जी लिखते हैं कि क्या हृदय रोग वाले सलाद में टमाटर खा सकते हैं?
3: उत्तम जी, हाँ, आप सलाद में टमाटर खा सकते हैं और सलाद में जो भी आपको सब्जियां लेते हैं आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. हाँ, अंटिल अनलेस कुछ बीमारियां होती है जिसमें, जैसे जिसकी वाल्व बदली की जाती है, धड़कन अनियमित रहती, उन्हें ब्लड थिनर चलता है, खून पतला करने की दवा चलती है, वारफेरिन और एसीट्रॉम चलते हैं. उन केसेज में हमें हरी पत्तेदार सब्जियाँ अवॉइड करनी होती है, थोड़े से टमाटर और ये चीज़ें थोड़ी अवॉइड करनी पड़ती है. अगर
2: लगातार हमारे पास मेल्स की संख्या बढ़ती जा रही है, जल्दी से मेल्स भी ले लेते हैं और उसके बाद कॉलर भी हमारा इंतजार कर रहे हैं. आनंद तिवारी लिखते हैं कि इनके नाक पर ज्यादा सूजन आ जाती है गर्मियों में और इरिटेशन और खुजली भी होती है और अपने आप ये दाने जो है वो ठीक भी हो जाते हैं. तो ये गर्मी की वजह से होता है या क्या रीजन है?
3: हाँ, ये लोकल स्किन रिएक्शन है या सनबर्न की वजह से होता है, ये गर्मी की वजह से हो रहा है आपका
2: जी. एक और सवाल डॉक्टर साहब, राज जी लिखते हैं कि मेरी बड़ी बेटी जिसकी उम्र 14 साल है, उसे काफी दिनों से सिरदर्द की शिकायत है, बहुत दवा कराने के बाद भी उसका सिरदर्द ठीक नहीं हो रहा है. कृपया बताइए कि इसके क्या कारण हो सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए?
3: सिरदर्द, देखिए आप पहले तो वो देख लीजिए कि कोई बच्ची स्ट्रेस तो नहीं ले रही है किसी तरह से, पहला सबसे पहला वो देखिए, और दूसरा उसको कुछ हेल्दी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करिए. तीसरा, अगर इन सब के वजहों से आराम नहीं होता है, काफ़ी सरदर्द होता है, तो किसी एक न्यूरोलॉजिस्ट से मिल लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा उपयुक्त रहेंगे.
2: एक सवाल सावित्री जी का फिर से आया है, वो लिखती हैं कि डॉक्टर जी ये बता दीजिए कि हार्ट अटैक की समस्या किस उम्र में ज्यादा होने की संभावना होती है?
3: देखिए, हार्ट अटैक की समस्या यूजुअली 50 साल के एवं अधिक में ज्यादा होती है, पर आजकल जो है सो आजकल हम युवाओं में भी हार्ट अटैक ज्यादा देख रहे हैं, कम उम्र में भी हार्ट अटैक ज्यादा देख रहे हैं, तो बेस्ट है कि पहले से ही प्रिवेंशन में रहिए, उसका बचाव करते रहिए
2: जी. डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ है, आइए जानते हैं कि उनका क्या सवाल है. आप हमें सुन पा रहे हैं?
4: हेलो.
2: हाँ जी, नाम बता दीजिए. और
4: आर्यन तिवारी बोल रहा हूँ लखनऊ से.
2: जी जी
4: साहब, डॉक्टर साहब को नमस्कार. और ये पूछना है, आवाज आ रही है?
2: जी, आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है.
4: जी जी, तो ये हमें पूछना है कि जो बड़े लोग, उम्र के लोग हैं, सीनियर सिटीजन ग्रुप में
2: जी,
4: और वो पेशेंट नहीं है हार्ट के
2: जी,
4: लेकिन उनको खाने पीने में और गर्मियों से तो बचना ही है, लू से बचना ही जो आप बता रहे हैं, तो उसमें ये मसालेदार खाना है और उसमें जैसे प्याज है, अदरक है, लहसुन है, इनको कम कर देना होगा ना?
3: हाँ, नमस्कार तिवारी जी.
4: हाँ,
3: सीनियर सिटीजन्स को आप लोगों को, हाँ, गर्मी से बचना आपने बिल्कुल सही कहा, उसके साथ में अत्यधिक तेल मसाले वाले खाने से अवॉइड करिए, क्योंकि वो शरीर में पचने में समय लगता है, और जो उसको जितना अवॉइड करेंगे बेटर रहेगा. और फ्रूट्स, फल, हरी सब्जियाँ काफ़ी लीजिए.
2: डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े थे जिन्होंने कहा कि वो ऑन एयर आके सवाल नहीं पूछना चाहते, लेकिन उनका सवाल ये था कि वो जब भी पानी पीते हैं उनको एंजाइटी होती है या घबराहट होती है तो वो और ज्यादा बढ़ जाती है, तो इसका क्या रीजन हो सकता है? ये एंजाइटी है या हार्ट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है कि पानी पीने के बाद घबराहट बढ़ रही है?
3: नहीं, ये हार्ट से ये लक्षण नहीं लग रहे, ये एंजाइटी से लक्षण है. आप पानी धीरे धीरे लें और रिलैक्स रहें.
2: डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ और हैं, आइए उनसे बात करते हैं. हेलो हेलो, आपसे डॉक्टर साहब एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि आजकल हमारा लाइफस्टाइल बदलने से खान पान में भी बहुत बदलाव आया है, हम क्विक फूड की तरफ जा चुके हैं, फास्ट फूड प्रेफर करते हैं, और ऐसे में जो सुबह का सबसे इम्पोर्टेंट मील है हमारा ब्रेकफास्ट, उसको भी रिप्लेस कर दिया है सैंडविचेस ने, बिस्किट्स ने, चाय पी ली आपने सुबह, जबकि पहले हम लोग के वक्त में आप प्रॉपर या तो सब्जी रोटी खा रहे होते थे या दलिया खा रहे होते थे, तो इसका कितना नुकसान हमें झेलना पड़ सकता है?

0: देखिए, हम लोग जो सैंडविचेस और क्विक फूड्स ले रहे हैं, यूजुअली इसमें या तो फैट की मात्रा ज़्यादा होती है नॉर्मल
1: जी
0: लेने से,
1: जी जी
0: या फिर इसमें फास्ट फूड्स में सॉल्ट की मात्रा काफ़ी ज़्यादा।
1: बिल्कुल
0: तीसरा जो सैंडविचेज और ये है, इसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है और विथ हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब है जब भी हम लेते हैं इसमें शरीर में अचानक शुगर स्पाइक बढ़ा देता है,
1: जी
0: लेने
1: जी
0: के साथ तुरंत ही शुगर का लेवल ज़्यादा बढ़, शुगर का लेवल एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा अगर बढ़ता है तो सारे अंगों को वो नुकसान पहुंचाता है। पर अगर इसको हम लोग रिप्लेस कर दें फल से, उतने ही मीठे अगर फल और वो रहे तो उनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी लो होते हैं। जैसे तरबूज है या सेब है तो उनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी लो होता है, तो वो उतना ही शुगर काफी धीरे धीरे रिलीज करता है।
1: नाश्ते में आप फ्रूट्स खाएं,
0: हाँ, नाश्ते में बेसिकली फ्रूट्स और फ्रूट्स लें।
1: लेकिन ऐसा कहा जाता है, पुराने लोग कहते थे कि नहीं, नाश्ता खाली पेट मत खाओ फ्रूट्स, ऐसा
0: नहीं, ऐसा
1: नहीं।
0: कुछ नहीं, फ्रूट्स लीजिए,
1: हाँ
0: आप मिल्क लीजिए, अच्छे से प्रोटीन अपना
1: जी
0: बढ़ाइए।
1: डॉक्टर साहब, एक और सवाल कि जो हमारा पोल्यूशन है वो भी बेहद बढ़ता जा रहा है, ये किस तरह से हमारे हार्ट को इम्पैक्ट करता है? जब हम बाहर निकलें तो क्या मास्क पहन के जाएं? और एक कॉलर भी और जुड़ चुके हैं, दोनों सवालों के जवाब मैं आपसे एक साथ जानना चाहूंगी क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी हो चुकी है। हेलो,
2: हेलो,
1: जल्दी से अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए।
2: विनीत कुमार सीतापुर से बोल रहे हैं।
1: सवाल पूछिए।
2: सवाल ये है कि जैसे काम ज़्यादा देर करते रहो
1: हाँ
2: तो दिल बैठने लगता है
1: हाँ
2: और पेट में जैसे आगपना और खौलन रह हो जाती है, मान लेने लगती है।
1: काम क्या करते हैं आप बनी जी?
2: काम तो हम ये खेती और बाड़ी करते हैं।
1: मजदूरी का आपका काम है, ठीक है। सवाल आपने सुन लिया डॉक्टर साहब, क्या जवाब है इसका?
0: दिलीप जी, काम ज़्यादा करते हैं तो अगर जो दिक्कत आपको महसूस हो रही तो ये हार्ट से हो सकता है आपका, तो एक बार आप अपना हार्ट का जांच करा लीजिए। दूसरा, पेट में जो दिक्कतें हो रही है वो लग रहा है कि वो एसिडिटी सब की वजह से है, तो आप उसके लिए एसिडिटी की दवाइयाँ ले लीजिए, और पर हार्ट की जरूर जाँच करा लीजिए किसी भी आसपास के जो भी चिकित्सक आपके उपलब्ध हों।
1: एक कॉलर और है, आप अपना सवाल पूछिए।
3: मैम नमस्ते, मैं इंदिरा नगर से बोल रहा था, इंदिरा लखनऊ से, संजय। हाँ
1: जी संजय।
3: मैम, मुझे ये जानना था, थोड़ा सा मेरी क्वेरी है कि मेरे पिताजी और मेरी माताजी
1: हाँ
3: दोनों
1: हाँ
3: की मृत्यु जो है हार्ट अटैक से हुई है लास्ट
1: ओहो
3: 10 इयर्स में,
1: जी
3: और कभी कभी जैसे बहुत घबराहट होती है तो जैसे लगता है दिल बैठा जा रहा है मेरे को, तो ऐसा मेरे को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे भी कभी हार्ट की दिक्कत हो जाए,
1: जी जी
3: है
1: जी
3: ना, या हार्ट की दिक्कत है तो नहीं, लेकिन हालांकि मैंने चेक कराए हैं सारी चीजें
1: जी जी संजय।
3: तो ऐसा कुछ निकला नहीं, लेकिन क्या भविष्य के लिए क्या ऐसा कुछ संभावना है या हो सकती है कि कोई हमें भी इसकी दिक्कत हो जाए,
1: जी आपको सवाल का
3: जहरीली
1: जवाब देंगे
3: किसी
1: डॉक्टर
3: या
1: साहब।
3: क्या?
1: हाँ
3: और
0: संजय जी, आपकी जैसे फैमिली हिस्ट्री है कि आपके जो पिताजी को भी हार्ट की बीमारी रही है, माता जी की भी जो है सो अनफॉर्चुनेटली हार्ट की बीमारी से मृत्यु हुई है, तो एक संभावना आपके भी है, तो आप अपना जैसे कहा कि हम रेगुलर चेक कराते हैं, उसी तरह आप अपना रेगुलर चेक कराते रहिए, आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करते रहिए, दूसरा आप अपनी ECG TMT बीच में करा लीजिए, और तीसरा हेल्दी डाइट अपना जो है सो संतुलित रखिए, हेल्दी डाइट लीजिए और रेगुलर एक्सरसाइज और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन रखिए कि बढ़िया जो संतुलित जीवन रहे, व्यायाम करिए, बस बचने का यही रास्ता है।
1: जी डॉक्टर साहब, मैंने जाते जाते एक सवाल और आपसे लेंगे, उसके बाद कमर्शियल ब्रेक लेंगे कि बाहर का जो पोल्यूशन है वो किस तरह से हमारे हार्ट को इम्पैक्ट करता है।
0: बाहर का पॉल्यूशन जो है सो हमारे हार्ट को असर करता है, जो पॉल्यूशन की वजह से हार्ट अटैक के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं जैसे,
1: अच्छा
0: तो
1: हाँ,
0: इसलिए पॉल्यूशन से अवॉइड करना है हम
1: कैसे,
0: लोग,
1: मास्क लगा के जाएं
0: हम
1: या?
0: जहाँ लगता है कि काफ़ी धूल धुआं है
1: जी
0: वैसे
1: जी
0: जगहों पे आप मास्क लगा के अब जाएं।
1: जी तो इस समय एक छोटे से कॉमर्शियल ब्रेक का, और उसके बाद गर्मियों में कैसे रखें दिल का हाल विषय पर चर्चा जारी रहेगी।
4: जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
5: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज, एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज डाइट प्लान और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट का लाभ।
4: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
1: बारह बजकर 50 मिनट और 56 सेकंड, हेल्थ एंड फिटनेस सुन रहे हैं आप मेरे साथ यानी सबरीन के साथ, और हमारे साथ डॉक्टर मनीष झा जी मौजूद हैं जो लगातार हमें बता रहे हैं।

0: कि इस बढ़ती गर्मी में किस तरह से आप अपने दिल का ख्याल रखें, क्या होनी चाहिए आपकी रूटीन लाइफ, क्या होना चाहिए आपका खान पान, किस तरह से आप अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करें। और अगर आप भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में खत्म होते होते शामिल होना चाहते हैं और आप हमारे नंबर्स से वाकिफ नहीं हैं, तो मैं आपको बता दूं 0522238845298237 और अगर आप की फोन जो है वो नहीं लग पा रहा है किसी वजह से, तो आप हमें fmakashwani@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। ये वो वक्त है जब आपकी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। एक मेल जो हमारे पास आया है उसे शामिल कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, तनु शर्मा दुबग्गा लखनऊ से सवाल पूछती हैं कि उनकी जो एज है वो 25 साल है और वो कहती हैं कि जब मैं बात करती हूँ फोन से या थोड़ा बहुत पैदल चल लेती हूँ तो मेरे सीने में दर्द होता है, अंदर से घबराहट होती है, चलने में चक्कर जैसे आते हैं। मैंने CBC जांच कराई थी, TIS 11,800 है और मुझे 6 महीने की प्रेगनेंसी भी है। सर, इसी की वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा कि मुझे गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है?
1: ये प्रेगनेंसी में हो सकता है कि आपको जो चलने पे सांस की जो दिक्कतें होती है, पर अगर ये अत्यधिक हो जाए, डिस्प्रोपोर्शनेटली बढ़े, तो फिर एक इको टेस्ट जरूर करवा लीजिए। पर रेगुलर एक्सरसाइज और वॉक करते रहिए और अपना हीमोग्लोबिन को कंट्रोल रखिए।
0: जी, तो लगातार चेक बनाए रखिए, टेस्ट के जरिए हर 6 महीने पर आप टेस्ट कराते रहें।
1: हाँ, बीच बीच में
0: रूटीन। ओके, एक कॉलर हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका?
2: हेलो,
0: नाम बताइए अपना, कहाँ से बात कर रहे हैं और आपका सवाल क्या है?
2: मेरा नाम प्रकाश गुप्ता है, ये लखनऊ से बात कर रहे हैं।
0: लखनऊ से बात कर रहे हैं?
2: हाँ, लखनऊ से बात।
0: सवाल क्या है आपका?
2: जी, हमें ये ठंड में बहुत ही दिक्कत हो जाती है, सांस फूलती है, हम आयरन की गोली डेली खा रहे हैं 2-3 साल से,
0: जी जी
2: रहता है और उसके बाद कोई दिक्कत हो जाती है, ठंड में ज्यादा होती है।
1: प्रकाश जी, देखिए, ये दो बीमारियां हो सकती है, या तो आपको कुछ फेफड़े की भी बीमारी हो या हार्ट की भी है, तो आप अपना एक रेगुलर चेकअप करा लीजिए, कुछ एक्सरे करा लीजिए, PFT पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, ये दो जांचें करा लीजिए। ये फेफड़े की अगर कोई बीमारी होगी तो उसके लिए टेस्ट हो जाएगा, बेसिक टेस्ट है, और दूसरा कुछ हार्ट की जाँचें ECG और एक ईको करा लीजिए किसी भी आसपास में जो भी आपके विशेषज्ञ उपलब्ध हों उनसे।
0: तो जी डॉक्टर साहब, अब एक छोटा सा हम कमर्शियल ब्रेक लेंगे और उसके बाद फिर से सवालों को शामिल करेंगे।
3: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
4: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
3: पाइन पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
4: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444-444।
0: तो देखते ही देखते दोस्तों, सिर्फ बमुश्किल हमारे पास 6 मिनट और बचे हैं जिसमें आप मेल कर सकते हैं हमें और कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल जो मैं आपसे जानना चाहूंगी, हमारे युवा भी उससे ग्रसित हैं, हमारे एल्डर्स भी उसमें शामिल हैं, धूम्रपान यानी कि स्मोकिंग किस तरह से हमारे हार्ट को नुकसान देती है, और ये भी बताएगा कि बहुत सारे लोगों से अगर इसके लिए मना करिए कि ये हार्ट को नुकसान करती है, तो वो ये कहते हैं कि नहीं, मैं तो दिन भर में बस 1-2 लेता हूँ। कुछ चेन स्मोकर्स को कैसे नुकसान करती है और जो कम लेते हैं उनको कैसे नुकसान करती है, और साथ ही साथ एक ये भी लॉजिक दिया जाता है कि बाहर इतना धुआं है, इतना पॉल्यूशन है कि अगर आप सिगरेट नहीं भी पी पा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए जाते हैं, इस बारे में आप थोड़ी सी रोशनी डालिए।
1: स्मोकिंग आपके हार्ट का सबसे बड़ा दुश्मन है। इवन हम लोगों ने देखा है कि अगर मॉर्निंग का एक सिंगल सिगरेट लिया है, उसके बाद काफी मरीज हार्ट अटैक लेके आते हैं। बेसिकली अच्छा। होता क्या है कि स्मोकिंग करने में उसमें काफी तरह के जो केमिकल्स रहते हैं वो आपके हार्ट की गति को बढ़ा देते हैं, साथ में जो हार्ट के अंदर ब्लड वेसल्स की जो अंदर की लाइनिंग होती है उस लाइनिंग को वो डिस्टर्ब करते हैं, तो जो उस स्मूथ लाइनिंग रहती है तो उसके वजह से ब्लड काफी आराम से फ्लो करता है, तो वो लाइनिंग जब डिस्टर्ब हो जाती है तो उसमें ब्लड आके जमने लगता है। ये वजह है कि उसमें खून के थक्के आके जम जाते हैं और हार्ट अटैक होता है। तो मेरी सलाह सबसे अच्छी रहेगी कि आप बिल्कुल स्मोकिंग छोड़िए और एक्सरसाइज करिए,
0: और पैसिव स्मोकिंग पर भी मैं आपका कहना चाहूंगी।
1: स्मोकिंग आइदर या तो एक्टिव रहे या पैसिव रहे, दोनों जो है सो सेम अमाउंट, क्योंकि हमारे बॉडी में वो सारे केमिकल्स तो जा ही रहे, तो दोनों नुकसानदेह होता है, तो इसलिए पैसिव स्मोकिंग भी अवॉइड करना चाहिए।
0: जाते जाते हमारे आखिरी

0: कॉलर को मैं इस प्रोग्राम में शामिल करना चाहती हूँ। आइए जानते हैं कि उनका क्या सवाल है। नाम बताइए, अपनी जगह का नाम बताइए और सवाल बताइए।
1: नमस्ते
0: नमस्ते। नाम
1: जिला
0: बताइए
1: औरैया
0: अपना।
1: ग्राम पुराने छल्ला से गगन दीप कमल बोल रहे
0: जी
1: थे। जिला औरैया ग्राम पुराने छल्ला से गगन दीप कमल बोल रहे।
0: गगन जी, सवाल पूछिए अपना।
1: पानी पीने में सीने में दर्द होने लगता है, ये क्या समस्या है उसमें?
2: गगनदीप जी, पानी पीने में ज्यादा अगर तेजी से कभी कभी पानी पीते हैं तो जो आहार नली है उसमें संकुचन की वजह से दर्द होने लगता है। तो आप जो है सो धीरे धीरे पानी पीजिए और आराम से पानी लीजिए, बस बोलता हूँ।
0: तो इसी के साथ हम इस कार्यक्रम से अब लेंगे आपसे इजाजत। यकीनन आज के इस कार्यक्रम में दी गई जानकारियों से आप अपने दिल का इस बढ़ती हुई गर्मी में बेहतर ख्याल रख सकेंगे, और इसी तरह का कोई और मौजू, कोई और विषय लेकर हम अगली बार आपसे हेल्थ एंड फिटनेस पे फिर मुलाकात करेंगे। डॉक्टर साहब, आप आए हमारे स्टूडियो में, इतनी बेहतरीन जानकारियां दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: FM रेनबो के सारे श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
0: धन्यवाद।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे 300 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी चरक हॉस्पिटल दुबग्गा लखनऊ।
1: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
2: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
1: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।

0: सुबह की खूबसूरत शुरुआत। सुकून से भरा दोपहर,
1: पुरानी जींस और गिटार,
0: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
2: है, रते आश के जगा,
0: फिर रात को फुर्सत के वो पल,
3: ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा,
4: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, दोपहर के 1 बजे हैं और अब आप सुनेंगे अनुरोध गीत, आपके पत्रों पर आधारित।

श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनुरोध गीत में, और साथ ही कीजिए स्वीकार हमारा प्यार भरा नमस्कार। और आप अपना कीमती वक्त निकालकर इतने प्यारे प्यारे पत्र हम तक पहुंचाते हैं, इसके लिए हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। और कोशिश रहती है हमारी भी पूरी कि हम आपके द्वारा जो पत्रों पर फरमाइश की जाती है

उसे हम पूरा करें और पूरी करने की कोशिश भी रहती है। तो आज पहला पत्र इसी क्रम में हमारे पास पहुंचा है आप सभी लोगों का। खमरिया बिलासपुर से हैं साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार का। गांव कुमारहेड़ा जिला सहारनपुर से हैं आप सभी लोग सैयद मसरूर, गुलजार जहां, अजहर हसन, इब्राहिम, नाजिया और आफिया का। कुंज निवास धाकुंज इज्जत नगर बरेली से हैं वीके जौहरी विनोद, अर्चना जौहरी, अर्पित जौहरी और शायना बी का। शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से हैं अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष्ण श्रीवास्तव का। अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से हैं दीपक कुमार, रोशन कुमार, वंशी लाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव का। ग्राम पठेना पाटन बलकरण से हैं अंजनी वर्मा, ज्योति वर्मा, मुरली शिवम, चटौदा सारागांव से हैं सुजान, सुहद्रा वर्मा, आयुषी, निर्मला और कृष्ण वर्मा का। इस्लामपुरा सनावत से हैं मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, बेबी मंतशा, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री का। ग्राम करेली पुरानी मस्जिद जिला बरेली से हैं लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद तबरेज अंसारी, अब्यार हुसैन अंसारी, बबलू कैप्टन, निसार और मस्तान पापा का। आप सभी लोगों ने पसंद किया है फिल्म दिल का क्या कसूर का ये गीत। इस गीत को गाया है कुमार सानू ने।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं अनुरोध गीत, आपके पत्रों पर आधारित आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। जहां हैं आप वहां हैं हम, ओनली 100.4 FM पर। और ये पत्र हम तक पहुंचा है आप सभी लोगों का। आदर्श नगर मलोट पंजाब से हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा और शाइना शर्मा का। कस्बा शीशगढ़ से हैं गुड्डू इदरीसी, मोहम्मद फरहान इदरीसी। जिला जलगांव से हैं आप सभी लोग सन्नी मुन्ना, बंडू दादा, रविंद्र सोनार, नरेंद्र डंगवाल, संतोष कुमार सोनार और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। यादव मोहल्ला सनावत मध्य प्रदेश से हैं दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार। औरंगाबाद से हैं राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश का। मनकारा मंदिर बीडे कॉलोनी करगेना बरेली से हैं बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश सागर उर्फ पंटी, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्या रचना, श्रीमती उमती भारती, रवनक, शुगुन, सारांश, आयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और प्रथव सिंह का। महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से हैं राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे, गायत्री धनजे। खुर्दी रोड मानपुर से हैं विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद। और बरेली जंक्शन से हैं आप सभी भाई लोग, गरीब भाई, नासिर भाई, सादिक भाई, विक्की भारद्वाज, अमान भारद्वाज, महीपाल, प्रदीप।

नमन, संतोष, नीतीश, सोनू और साथी हैं स्टार खान, अमान खान, हसीन भाई और वीरेश सिंह चौहान का। सभी के साथ मिलकर सुनिए अपनी पसंद का ये गीत। फिल्म का नाम है विधाता और इस गीत को गाया है सुरेश वाडेकर और अनवर ने। फिल्म का नाम है विधाता, आपकी पसंद आपके लिए।

श्रोताओं, इस समय आपने ट्यून किया है 100.4 FM आकाशवाणी का बरेली केंद्र। जहां हैं आप वहां हैं हम, और ये पत्र हम तक पहुंचा है आप सभी लोगों का। ट्रांसपोर्ट नगर बरेली से हैं भूरे सगीर अहमद, ताहिर खान, खुशनूर और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। कस्बा मीरगंज धौली से हैं जीशान वारसी, इमरान शेख,

श्रोताओं, ये पत्र हम तक पहुंचा है आप सभी लोगों का। पंजाब से हैं अजीत नगर मलोट से छिंदर सिंह छिंदा, सतनाम कौर, दिलप्रीत सिंह, गगनदीप कौर और रौनकदीप कौर का। जसपुर उत्तराखंड से हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, रानी तबस्सुम रुखसार और मोहम्मद आशिफ का। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से हैं कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, असमा सालिया, शोएब खान, मुस्ताबा खान, राव भाई, शाहिद भाई। गांधी बाग अकोला से हैं रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर का। सुदामा नगर झालावाड़ राजस्थान से हैं हर्षिता, रामेश्वर कान्हा, सफलता, कपिल, मीनाक्षी, सत्य नारायण, मनोहर भाई और प्रभुलाल बागरी का। कृष्णानगर टीवी टावर से हैं नाना डोंगर दिवे, रमाताई डोंगर दिवे, सीमाताई, रीमाताई, दीक्षाताई और राहुल डोंगर दिवे का। सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुलडाणा महाराष्ट्र से हैं आप सभी लोग ज्योति नरवाड़े, नरेंद्र नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े और आकाश कुमार का। बिलराम गेट कासगंज से हैं एम असलम सैफी, जैबुनिशा बेगम, अक्रम सैफी और आबाद खान का। डावर तालाब लोनी से हैं रजा अहमद, आरिश हुसैन, ईशान हुसैन, मरियम और बुशरा का। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हैं हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जैतक विरक और मीका विरक का। आप सभी लोगों ने पसंद किया है कुमार सानू और धीरा घोष की आवाज में फिल्म गिरफ्तार का ये गीत। श्रोताओं, ये गीत इस समय के समय को इंगित करता हुआ है। खास ख्याल रखें अपना, धूप से।

0: श्रोताओं, ये पत्र हम तक पहुंचा है आप सभी लोगों का। मोहल्ला हलवाइयां शेरकोट जिला बिजनौर से हैं मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर का। पुराना होली चौक ग्राम करगेना करेली बरेली से हैं गणेश कुमार, शगुन शर्मा, कार्तिक शर्मा, युवराज शर्मा, इशिता वीर, संदीप शर्मा, चंचल शर्मा, सूरज शर्मा, चिंकी अपरार अंसारी और लाल मोहम्मद अंसारी का। चंडीगढ़ से हैं सतीश अनेजा और विमला अनेजा। पीपरपारा पायल चुवा मुंगेरी छत्तीसगढ़ से हैं उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, योगिता दिवाकर, नितिन वंशिका दिवाकर का। बठिंडा पंजाब से हैं रेलवे कॉलोनी से आप सभी लोग जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और डागला परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। लक्षणपुर से हैं रामजी साहू, जीवनलाल रजक, मोपका भाटापारा से हैं भेवेंद्र कुमार साहू, लकी हर्षित और सुमित्रा साहू का। फूलबाग किला छावनी बरेली से हैं विशनदत्त भारद्वाज, शिवदत्त भारद्वाज, गंगादत्त, विक्की भारद्वाज, वर्षा कविता कल्पना, ईशु भावना आदित्य, देवकी देवी भारद्वाज, शिप्रा नीलम भारद्वाज, मुन्नी देवी और श्रीराम राठौर का। विरम गांव गुजरात से हैं अजीत भवसार, भावेश सनी, हेतल कृष्णा, जैमिन भवसार का। मिलक भूजपुर आशा जिला मुरादाबाद से हैं बड़ी मस्जिद के पास से रजा हुसैन, शाहिद हुसैन, आदिल हुसैन और शहजाद हुसैन। बागपत चौहलदा से हैं संजय ढिंगिया, नमन, मुस्कान और कुणाल का। आप सभी लोगों ने पसंद किया है उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में फिल्म दिलवाले का ये गीत।
1: तूने सपना को हाथ लगाया, हमारी इज्जत पे हाथ डाला।
2: मामा ठाकुर,

श्रोताओं, अनुरोध गीत में ये पत्र आप सभी लोगों का हम तक पहुंचा है। अस्तुपुरा जिला मऊ यूपी से हैं मजर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, सादिक और साजिद का। बहादुरगंज गाजीपुर से हैं आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आजाद। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुविहा नेवादा गाजीपुर से हैं प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय। शेरपुर कला गाजीपुर से हैं अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय का। दिल्ली शहर मोरी गेट से हैं कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार का। कटरा चांदखा मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से हैं अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश, श्रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, आरोही और स्वाति मौर्य का। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां का। छावनी अशरफ खां मंदिर के सामने से हैं जिला बरेली से आप सभी लोग रामप्रसाद शर्मा, जयश्री देवी, वंदना शर्मा, मनोरमा देवी, अजय शर्मा, वंश, छोटी गौरी, काकू, रीता, विनोद कुमार और इनके परिवार के सभी सदस्य और साथ ही इनके दोस्त। राजनंद गांव से हैं याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा, इरफान आसमा। जेल रोड रायगढ़ से हैं रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी और आदिबा तिवारी का। दौलतबाग मुरादाबाद से हैं जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी का। जमभेदपुर से हैं आप सभी लोग देवेंद्र ताती, राकेश तांती, कुमारी निशा, प्रकाश और देवेंद्र जी का। मोहल्ला गड़गिया बरेली मस्जिद के पास से मोहम्मद केसर शमसी, अजीम शमसी, सलीम शमसी, नवे शमसी और रजिया शमसी, साथी हैं बेबी का। परी महल कासगंज से हैं आवाद खान, अल्ताफ खान, नबील, असलम सैफी और एजी खान का। गंज डुंडवारा से हैं शमसुल कमर राही और शाहीन कमर का। आप सभी लोगों ने पसंद किया है ये गीत। फिल्म का नाम है तमन्ना और इस गीत को गाया है कुमार सानू ने।

श्रोताओं, ये पत्र हम तक पहुंचा है आप सभी लोगों का। बहड़ी से हैं अंजुम भाई, खालिदा बेगम, मोहल्ला तलैया उड़ला जागीर से हैं फजरुद्दीन भाई, अब्रार भाई, अफजाल भाई, राम प्रसाद शर्मा, बबलू और अलवी का। रिंगनी छत्तीसगढ़ से हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। ततरेंगी से हैं भागवत वर्मा, लेवई से हैं गुलाब दास मानिकपुरी, लच्छनपुर से हैं विश्वनाथ साहू, चरडोगरी पिपरिया से हैं दुर्गाराम साहू। खरगोन मध्य प्रदेश से हैं डॉक्टर त्रिलोक चंद्र वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक सीमा वर्मा, अमित वर्मा, सचिन, समर राज, आर्यन वर्मा, बेबी आरोही, इशिका वर्मा, अंजलि, श्वेता वर्मा का। जिला बदायूं कस्बा बिलसी से हैं रहमान अलवी, अनोखी बेगम अलवी, फरासत अलवी, गुलशन अलवी, जानवी अलवी, हानिया अलवी, नज़ाकत, शाहीन, आहिल बाबू और आदिल अलवी का। पीर बहोड़ा परेली से हैं आज़ाद खां, दिलशाद, मुस्तकीम और तबस्सुम का। कनेरा मोहल्ला पटियाला से हैं आप सभी लोग मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पल्लक, करण गीतू।

निहारिका और वंश पत्ता का। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से है विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू, थनक्ष और आरू साहू का। पुराना तल्लाब डुमराव से है वली उल्लाह अंसारी, अरमानाज अंसारी और सारिमपुर बक्सर से है शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, मोहम्मद समी अंसारी। इंदिरा विहार दिल्ली से है डब्लू अंसारी, बेबी अंसारी। छटिया पोखरा डुबराव से है लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती का। आप सभी लोगों ने पसंद किया है फिल्म दिल तुझको दिया का ये गीत। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने।

श्रोताओं अपने पत्रों के माध्यम से जरूर बताइएगा आपका पत्र मिला में कि आपको अनुरोध गीत कैसा लगा, क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा होने से कमी रह गई। तो इसके लिए आप हमें जरूर बताइएगा। हमारा पता है अनुरोध गीत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बरेली और पिन कोड नंबर है 2430001।

आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। लीजिए प्रस्तुत है रस रंग।

कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति है भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह के युगल स्वरों में ये गजल।

0: रस रंग। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। आइए सुनते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में होगा कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

आप सुन रहे थे इशारा फिल्म का गीत, मोहम्मद रफी का गाया। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे कल्याण जी, आनंद जी का संगीत था।

0: तलत महमूद की आवाज में सुजाता फिल्म का गीत था। मशहूर सुल्तानपुरी का लिखा, संगीत सचिन देव बर्मन का था।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

मजनू सुल्तानपुरी के बोलों को सुरों में ढाला राहुल देव बर्मन ने। किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल सुरों में आप सुन रहे थे दो चोर फिल्म का गीत।

मजरू सुल्तानपुरी के बोलों को सुरों में ढाला चित्रगुप्त ने। लता मंगेशकर को आपने सुना, फिल्म थी ऊंचे लोग। विविध भारती से आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

0: नहीं है वल्ला जवाब।
1: पेइंग गेस्ट फिल्म में किशोर कुमार की आवाज आपने सुनी, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, सचिन देव बर्मन की तर्ज थी।
2: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता।

0: बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: तुम इसको खेल समझे हो, मगर एक दिन दिखा देंगे मोहब्बत इसको।

0: मोहब्बत इसको कहते हैं इस फिल्म का गीत था, मुकेश और आशा भोसले का गाया, मजरू सुल्तानपुरी के बोलों को सुरों में ढाला खयाम ने।
1: तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन

फिल्म माया का दोगाना था मोहम्मद रफी लता मंगेशकर का गाया, मजरू सुल्तानपुरी के बोलों को सुरों में ढाला सलील चौधरी ने। यही थी आज के सदाबहार कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। श्रोताओं,

नमस्कार श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के ठीक 3:01 हुए हैं। हम हाजिर हैं लेकर आपका पसंदीदा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत। तमाम व्यस्तता के बीच कहीं दोपहर में ठंडे शरबत की ताजगी है और खस की खुशबू और ऐसी ही ताजी हवा के झोंके सा आपके चुने हुए गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत आ चुका है आपके रेडियो सेट पर। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आज मन चाहे गीत

कार्यक्रम में किन किन श्रोताओं के मनचाहे गीत शामिल हो रहे हैं। मनचाहे गीत प्रोग्राम में अपने सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

0: बिल्कुल भी ये अर्थ नहीं है कि 99 बार की गई चोट बेकार है, बिल्कुल नहीं। वो 99 बार की चोट ने उसको कमजोर किया, तब जाके वो 100वें चोट में टूटा वो
1: जी
0: पत्थर।
1: बिल्कुल,
0: तो
1: नहीं
0: बिल्कुल भी
1: कानून
0: हमारे
1: वही
0: सभी
1: अच्छा,
0: एस्पिरेंट जो हमको
1: स्पेशल
0: सुन रहे
1: कानून वही
0: हैं
1: है,
0: निराश ना हो, और
1: हमारे
0: अच्छे
1: कानून
0: से
1: अन्य अच्छा
0: अपने चूंकि अभी अभी परिणाम आए हैं, बच्चों को सब्जेक्ट चूज करना है, आगे बढ़ना है, अपनी दिशा चूज करनी है, तो ये कार्यक्रम उनके लिए जरूर लाभान्वित होगा। तो कार्यक्रम में आज आप हमसे जुड़े काजल जी आप और आदर्श जी आपका अनेक अनेक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने बहुमूल्य विचार हमसे साझा किए, हमारे स्टूडियोज में
1: धन्यवाद।
0: पधारे, आपका एक बार फिर से धन्यवाद। थैंक यू।
2: जनमंच, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। प्रतिभागी थे आदर्श कुमार और काजल गंगवार। आपसे जानकारी प्राप्त कर रहे थे ब्रजेश तिवारी। यह आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। रात्रि के 8 बजे हैं। अब आप सुनिएगा मुझे याद है जरा जरा। इसमें MR यदुवंशी जी से अतीत के पन्ने पलट रहे हैं मिथिलेश श्रीवास्तव जी।
3: श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आकाशवाणी के 90 वर्ष हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हम आकाशवाणी से जुड़े तमाम लोगों से मिल रहे हैं और आज हमारे बीच हैं MR यदुवंशी सर, हमारे साथ हैं और आप सबको पता है कार्यक्रम अधिशासी थे और लंबे वक्त तक आकाशवाणी बरेली में सेवाएं दी हैं। आपने आकाशवाणी रामपुर में भी सेवाएं दी हैं। आपके अनुभव के बारे में जानेंगे सर। कितने वर्ष आपने देखे हैं आकाशवाणी?
4: क्योंकि 90 नहीं तो 60 वर्ष तो देखे, 33 साल
3: की बात।
4: अगर मैं ये कहूं कि दूसरा कार्यकाल जो मेरा था जिस वक्त में 2017 में ही आया एज ए प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव कोऑर्डिनेटर, इसके साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट अफसर और राजभाषा अधिकारी और DDO, ये 4 पोर्टफोलियो मेरे साथ जुड़े हुए थे। ये 2010 में कर्फ्यू रहा, इतना बड़ा बरेली में कभी भी कर्फ्यू लगा नहीं। तो उस समय आकाश वाणी में श्रीमती मंदीप कौर थी, वो प्रोग्राम हेड थी। तो हम लोगों ने एक सलाह की कि क्यों ना हम लोग शांति मार्च निकाले और उसको लेकर के हमने प्लानिंग की। सारे धर्म गुरुओं को हमने उस कार्यक्रम से जोड़ा और चौकी चौराहे से लेकर के हम वहां दामोदर दास से एक वो पार्क पड़ता है तो वहां तक कोतवाली के सामने तक हम लोग गए मार्च लेकर के, और उसमें हमारे प्रशासन के लोग भी शामिल हुए। लेकिन एक बड़ा संदेश बरेली के अंदर गया। तो उस वक्त जब आकाशवाणी ने ये प्रयास दूसरे दिन से लोगों का निकलना शुरू हो तो ये सोचा गया कि आकाशवाणी जो वार्षिक पुरस्कार एक सिस्टम है हमारे यहाँ एनुअल अवार्ड्स का, तो क्यों ना इसको कंपाइल करके और ठीक से भेजा जाए बना करके। तो उसी रिकॉर्डिंग को लेकर के उसमें यहाँ के प्रशासन के DM साहब की रिकॉर्डिंग, समय में हम जो चल रहे थे तो लाइव प्रसारण भी हो रहा था, लाइव बोला जा रहा था, सब कुछ चल रहा था। तो वो सारी रिकॉर्डिंग्स को लेकर के और उसको एक राइट अप तैयार करके फिर उसको एक शक्ल दी गई है प्रोग्राम की। प्रोग्राम के लिए आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कार मिला उसे, जी लासा कॉल पुरस्कार मिला उसके लिए। तो ये एक बड़ी उपलब्धि। झुमका गिरारे एक प्रोग्राम आज भी होता है केंद्र से और इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी उस दिन, और मुझे अच्छे से याद है क्योंकि मैं ही इस प्रोग्राम में गया था कवरेज के लिए, साथ प्रेजेंटेशन के लिए, और हमारे अनाउंसर्स थे। तो हम लोग कुतुब खाने पर गए थे घंटा घर पे, और घंटा घर के वहां पर ये हम लोग जब लौट करके आए वहां से प्रोग्राम करके तो आकाशवाणी के लोग यहाँ पर लाइन लगाकर खड़े हुए थे जिसमें ये मंदीप कौर भी हैं और अनाउंसर स्टूडियो में बैठ करके हमें संकेत देते थे। स्टूडियो परिसर है हमारा और यहाँ पर हमने ना जाने कितने लोगों की फेयरवेल पार्टीज और की है, यहाँ पर वेलकम पार्टीज की है लोगों की, और बड़ा अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग ज्वाइन किए हैं, रिटायर हुए हैं, तो ये वो परिसर है जहाँ पर
3: आप भी यहाँ से रिटायर।
4: अरे बिल्कुल, मेरा अपना कार्यक्रम भी यहीं से हुआ है और तो बड़ा अच्छा लगता था। और ये हमारे गणेश जी भगवान हैं, मैं जब आया था उसी समय से विराजमान हैं।
3: अब ये स्टूडियो जो है हम लोगों का यहाँ पे रिकॉर्डिंग होती है,
4: MP स्टूडियो है, मल्टीपर्पज स्टूडियो, और ये मशीनें आप देख रहे हैं। जिस वक्त हम 2008 में आए थे तो उस समय ये मेल्ट्रॉन मशीनें हुआ करती थी, एक नमूने के लिए तौर पर।

0: रखी हुई है यहाँ, जो केवल अब
1: हाँ बिल्कुल
0: अब केवल स्पीकर के लिए हम सुनते हैं। इसका होता क्या था, यहाँ पर स्पूल होते थे, दो दो स्पूल या छोटे या बड़े, एक में टेप लिपटा रहता था और एक तरफ से जाकर के दूसरे पे वो टेप जो है चढ़ता था, और ये हेड होता है मशीन का, रिकॉर्डिंग हेड। तो यहाँ पर टेप में जो कुछ बोला जाता था उधर स्टूडियो के अंदर, वो यहाँ रिकॉर्ड हो जाता था। अब चूंकि मेरे सामने ही कंप्यूटर शुरू हुआ, ये तो शुरुआती दौर में इसमें जो साउंड फोर्स आया या फिर वेब लैब था, ऐसे ऐसे इसके अंदर सॉफ्टवेयर आए, तो चूंकि नया नया चीज थी तो बड़ा अजीब सा लगता था कि कंप्यूटर पर काम कैसे करेंगे। लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे सीखा, और सीखने के बाद इतने ट्रेंड हो गए कि अब मेल्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। अब बाकी उसके बाद तो फिर सीधे सीधे हम लोग कंप्यूटर पर ही रिकॉर्डिंग करने लगे। ये सामने जो है वो हमारा स्टूडियो है, कंपोनेंट प्रोग्राम का जो कंसेप्ट आया वो बड़ा अच्छा आया, क्योंकि लिसनर्स को ये लगता कि हमारा भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए कार्यक्रम के अंदर। तो उस समय में ये कंसोल तैयार किए गए, और वो ये पहले डायरेक्टेड से ही कंसोल आते थे, तो ये लगा करके और पहले हम रिकॉर्डिंग करते थे, बीच में बैठ रहे हैं जैसे हम और आप बात कर रहे हैं
1: जी जी।
0: तो इसी तरह बात कर रहे हैं और बीच में लिसनर का फोन आ गया तो उनको भी अटेंड कर लिया। तो इसमें जो इसकी कहना चाहिए जो लाइवनेस थी, तुरंत कनेक्ट होते थे और बड़ा अच्छा लगता था। लिसनर्स को भी लगता था कि भैया हम भी आकाशवाणी में एक तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और बड़ा उनको भी बड़ा अच्छा लगता था, गौरवान्वित होते थे वो। रेडियो हेल्पलाइन आज भी चलता है, और इस तरह के प्रोग्राम जब शुरू किए तो जो यहाँ के डॉक्टर्स लॉबी है वो कहीं ना कहीं बहुत प्रभावित हुई, और उन्होंने हमें विज्ञापन देना शुरू कर दिया
1: जी जी।
0: और क्योंकि वो डायरेक्ट मरीजों के साथ कनेक्ट होने लगे, और हमारा जो यहाँ का टारगेट रहता था कहीं ना कहीं हम उन टारगेट से आगे अचीव कर देते थे,
1: बिल्कुल
0: आगे आते थे
1: जी। और डॉक्टर्स के भी फीडबैक अभी भी मिलते
0: हैं,
1: सारे जो श्रोता है उनके पास कॉल करते हैं कि हाँ आकाशवाणी सुना था आपके बारे में, अब आपको कॉल कर रहे हैं, अब दिखाने जाना है
0: जी जी बिल्कुल।
1: ये अच्छा हम लोगों के लिए भी अच्छा है और उनको भी फायदा मिल जाता है
0: जी।
1: और फिर जो पहला प्रोग्राम कहा गया, या फिर जो कोई वाकया ऐसा हुआ हो कि बड़ा मुश्किल रहा हो, ये टेप मतलब ऑनियर आप प्रोग्राम कर रहे हो पता चला कुछ फंस गया है, कुछ ऐसा हो गया।
0: इससे पहले जो मशीनें होती थी वो बैल की मशीनें होती थी।
1: अच्छा,
0: ये बहुत अच्छी मशीनें थी बैल की मशीनों के सामने।
1: अच्छा अच्छा,
0: इससे भी कहीं गई गुजरी मशीनें थी बैल की शुरुआती दौर में।
1: अच्छा अच्छा,
0: तो वो जो बैल की मशीनें थी तो उसमें एक जो लट्टू होते हैं ना, ये जो लट्टू होते हैं ये उसमें दोनों तरफ बड़े बड़े लट्टू लगे रहते थे, तो उनको कई दफा घुमाना पड़ता था इसे करके, घुमा करके तब वो स्पीड पकड़ते थे।
1: अच्छा
0: अच्छा, वो मशीनें बहुत जल्दी स्पीड वेरिएशन करती थी, बड़े प्रोग्राम बनाए और पता लगा स्पीड वेरिएशन कहीं बीच में आ गया तो निश्चित तौर पर बहुत खराब लगता था। उसके बाद जब मेल्ट्रॉन आए तो फिर इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी रही
1: जी, बिल्कुल तो हम एकदम
0: बिल्कुल कंप्यूटराइज्ड है, सब कुछ कंप्यूटर में है हम लोग, और वीडियो भी बना रहे हैं
1: हम लोग, और हम लोग लाइव भी करते हैं।
0: अब तो सब कुछ है स्टूडियो, और बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे आज कि मैं काफी दिनों के बाद यहाँ आया हूँ, और बाकी आज भी जो चीजें सामने नजर आ रही हैं बड़ा देख करके अच्छा लग रहा है। तो ये स्टूडियो जहाँ पर हम लोग बैठ करके चर्चाएं करते हैं और चार चार पांच पांच लोगों को इकट्ठा बैठा करके यहाँ पर हमने चर्चाएं की हैं तो वो बहुत अच्छा लगता था। और वैसे तो वार्ताकार आकर के उनके इंटरव्यूज लेना वो तो होता ही है, जनरली रूटीन वर्क है हमारा
1: जी जी।
0: और कई दफा आपको ये श्रीवास्तव भी जानकर के बड़ा आश्चर्य होगा, आपके केंद्र से आज भी एक गीत बजता है, वो गीत यहाँ रिकॉर्ड किया गया जो आकाशवाणी के 25 वर्ष पूरे हुए थे, तो वो सारी हमने ही रिकॉर्ड किया, जब इतनी अच्छी रिकॉर्डिंग की कि आज भी अगर वो गीत बजेगा तो आप देखिए कि आपको लगेगा कि वाकई ये रिकॉर्डिंग ओरिजिनल है, कहीं रिकॉर्ड की गई है बड़े स्टूडियो में।
1: उस समय कुछ ऐसा क्या था जो आज नहीं है, क्या अंतर महसूस कर रहे हैं?
0: उस समय थोड़ा आकाशवाणी का देखा जाए तो बहुत ज्यादा बोलबाला था,
1: छत्र राज था
0: आकाशवाणी का। यूं तो हम आकाशवाणी बहुत पहले से सुन रहे थे बचपन से। अब मैं ये बताऊं अपने श्रोताओं के लिए कि जब हम पढ़ रहे थे तो उस समय रेडियो का इतना महत्व था कि हमारे घर में रेडियो नहीं था, तो दूसरे के घर का रेडियो सुनने जाते थे हम, ये सोच लीजिए। और जब हमने ले लिया रेडियो तो
1: लाइसेंस भी,
0: हाँ लाइसेंस शुरुआती दौर में लाइसेंस होते थे रेडियो के, खैर वो धीरे धीरे खत्म कर दिया
1: होगा आपने।
0: रेडियो हमारा तो खैर वो

0: उस समय में एक बहुत ही अहम बात बता रहे हैं हम आपको कि जब लड़के की शादी होती थी तो उस समय में रेडियो और साइकिल बड़ा मस्ट होता
1: था। बिल्कुल बिल्कुल, तो बड़ा सम्मान
0: की बात मानी जाती थी। तो हमारे घर में हमारे बड़े भाई साहब की शादी हुई तो उनका रेडियो आया, उसमें तो वो रेडियो हम लोग सुनते थे, बजाते थे। तो उस समय लाइसेंस फ्री हो गया, लाइसेंस उस समय नहीं था, लेकिन उससे पहले लाइसेंस हुआ करते थे
1: आजादी के। हाँ,
0: जस्ट बात की बात है। तो लाइसेंसिंग प्रक्रिया थी और तो लेकिन जिसके पास रेडियो होता था, अब ये मानिए कि चौपाल पे रखा हुआ है तो लोग अपने आप आकर के कि इतने समय पर समाचार आएंगे, इतने समय पर ये प्रोग्राम आएगा, वो सुनने के लिए लोग अपने आप आ जाते थे।
1: प्रादेशिक समाचार 7:20 पे तब भी आते थे,
0: आज भी आते हैं,
1: आते हैं सुबह और शाम।
0: बिल्कुल, दिल्ली के समाचार अपने समय पे पहले भी आते थे और आज भी आ रहे हैं वो।
1: तो उस समय कौन सा फेवरेट प्रोग्राम था आपका, जैसे किसी भी केंद्र का, मतलब विविध भारती भी हो सकता है?
0: जी देखिए, अगर ये बात करें हम तो दरअसल हुआ क्या कि उस समय बचपन की बातें हैं ये, तो उस समय तो ज्यादातर हमारा मन जो लगता था वो गीतों में लगता था। संगीत के प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते थे और समाचार, दो चीजें बहुत जरूरी थी, क्योंकि उस समय समाचार ये माना जाता था आकाशवाणी का समाचार, पेपर की पहुंच इतनी नहीं थी। अखबार आज तो खैर गांव में भी जा रहे हैं, उस समय में अखबार गांव तक नहीं पहुंचते थे, तो आकाशवाणी के माध्यम से समाचार सुनकर के देश विदेश की जो खबरें मिलती थी वो बहुत मायने रखती थी। और संगीत का प्रोग्राम, उसके अलावा जो कार्यक्रम चलते थे किसानों के प्रोग्राम, चूंकि हम, मेरी बैकग्राउंड खेतीबाड़ी से ही रही है, किसान के बेटे हैं, तो किसानों का प्रोग्राम जब भी आया तो उसे जरूर सुना अगर मौका मिला तो। जब अपने घर में रेडियो आ गया तो विशेषकर सुना कि भाई जो नई नई चीजें बताई जा रही हैं उनको अमल में लाया जाए, जिससे कि कुछ जो हम भूल बस नहीं कर पाते हैं वो भी करें और हमारा प्रोडक्शन जो है, उत्पादन जो है वो हमको ज्यादा मिले। जो सुनने की आदत थी वो थी।
1: अच्छा, बाद में आप प्रोग्राम भी करने लगे?
0: हाँ, बाद में प्रोग्राम करने लगे। देखिए, ये तो ये जो जर्नी है वो बड़ी मजेदार है। जब हम एमएससी मैंने कर ली, एमएससी एग्रीकल्चर मैंने किया, तो उसके बाद मुझे जाना पड़ा अंडमान निकोबार। वहां मेरे रिलेटिव रहते थे, तो वहां पर सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहां पर एग्रीकल्चर की रिसर्च होती है। तो वहां
1: पहली जॉब आपकी वहां लगी?
0: वहां पहली जॉब
1: आकाशवाणी से पहले?
0: आकाशवाणी से पहले मैं वहां था।
1: अच्छा,
0: इसी बीच में फिर,
1: लेकिन सर अंडमान जाना,
0: अंडमान जाना अपने आप में बड़ी बात थी।
1: बरेली में रहने वाले हैं।
0: बात है 88 के आसपास की। दर बात बताते हैं आपको, वहां क्या हुआ, जब मैं 90 में ज्वाइन कर लिया तो हमने उसी बीच में एक बांधे में एक प्रोग्राम बनाया। वहां क्या था, एक मच्छी नाला करके जगह थी, तो वहां एक लेडी थी, उनका नाम था पद्मावती। तो वो कपड़े धोती थी, कपड़े धोने का काम करती, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी वही काम कर रही थी। उन्होंने कहा कि देखिए, हम जो काम करते चले आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा ये चला आ रहा है, मैंने ये प्रतिज्ञा की है पद्मावती कि आज हम जो काम कर रहे हैं मेरे बच्चे ये काम नहीं करेंगे, इसलिए मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी और मैं अपने बच्चे भी नहीं होने दूंगी आगे।
1: अच्छा,
0: जबकि उनके पास केवल दो बच्चे थे, लेकिन उस लेडी ने बोल्ड डिसीजन लिया, अपने हस्बैंड को एग्री किया और उन्होंने अपने को ऑपरेट करा दिया, क्योंकि फैमिली वेलफेयर की बातें थी
1: और संवेदनशील भी थी,
0: तो आप देखिए कहानी पद्मावती शीर्षक से एक रूपक तैयार किया गया।
1: अच्छा अच्छा,
0: 22 मिनट का प्रोग्राम बन के तैयार हुआ हमारा। आकाशवाणी एनुअल अवार्ड्स में स्पेशल अवार्ड दिया गया।
1: क्या बात।
0: तो उसी बीच में एक और अच्छी बात निकल कर आई कि वहां पर दूरदर्शन केंद्र आ गया।
1: अच्छा,
0: हिंदी बेल्ट से था तो हिंदी ठीक ठाक थी, तो और हिंदी के प्रोग्राम चलते थे, तो आकाशवाणी के जो डायरेक्टर थे मिस्टर एके मंडल, वो मुझे बहुत लाइक करने लगे। उन्होंने मेरे स्टेशन डायरेक्टर को कहा कि भाई हमें इनको चाहिए होगा, आप इनको हमें दे दें, स्पॉट रिकॉर्डिंग कराएंगे वहां। तो हमारे डायरेक्टर एग्री हो गए और 1996 में मैं अंडमान निकोबार से आ गया रामपुर में।
1: जी, उससे पहले एक सवाल ये है सर, पहली पोस्टिंग आपकी अंडमान निकोबार आपने अपनी इच्छा से ली थी?
0: इच्छा से ली थी। क्योंकि मैं वहीं था तो वहीं मिल गई, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा।
1: तो रामपुर फिर आना पड़ा,
0: फैमिली कुछ समस्याएं आई जिनकी वजह से फिर मैंने

0: अप्रिसिएशन डायरेक्टर को कहा कि सर मैं अब जाना चाहता हूँ, और उन्होंने मेरा ट्रांसफर यहाँ के लिए कर दिया। तो मैं रामपुर आ गया, 2005 में मेरा प्रमोशन हो गया, फिर मुझे सेक्शन के इंचार्ज बना दिया गया। तो उस समय में जो सेक्शन दिया गया उन्होंने मन लगा करके काम किया, और साथ ही साथ नेशनल लेवल के प्रोग्राम बनाए, दिल्ली भेजे। मैं ये कहूँ कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन एक ऐसा डिपार्टमेंट से हमारा ऐसा विभाग है जहाँ काम करने के बाद आपको लोग सम्मान देते हैं।
1: बिल्कुल जी, और इस सम्मान के सच्चे हकदार हमारे श्रोता हैं।
0: बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल। और उनके जो सुझाव होते हैं उन पर आधारित प्रोग्राम बनाते हैं
1: जी,
0: तभी उनको अच्छा लगता है, और जो उनको अच्छा लगता है तो जाहिर सी बात है हमको अच्छा लगता है
1: जी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज आपने जो अपने अनुभव साझा किए आकाशवाणी बरेली में, जहाँ जहाँ बैठते थे, जहाँ बैठ के काम किया, उन पलों को याद किया, चिट्ठियां लिखेंगे तो हमें और अच्छा लगेगा।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि वो हमारी संपदा है, विरासत है, जिन्हें हम संजो के रखे हुए हैं। तो आप लोग जरूर लिखिएगा कि हमारी बातचीत और सर ने जो अपने अनुभव साझा की वो कैसी लगी। तो सर आप हमारे स्टूडियो में आए और हमसे इतनी सारी बातें साझा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: मुझे याद है जरा जरा, इसमें अभी आप सुन रहे थे एम आर यदुवंशी जी के स्मरण, और आपसे बातचीत कर रहे थे मिथिलेश श्रीवास्तव जी। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। अब आप सुनेंगे लखनऊ केंद्र से अगला कार्यक्रम।

आरसी प्रसाद का लिखा ये गीत अभी आप सुन रहे थे इलियास खां की आवाज में। इन्हीं की आवाज में लीजिए सुनिए ये भजन जिसे लिखा है सूरदास ने।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप आनंद ले रहे थे इलियास खां के गाए गीतों और भजनों का। और इसी के साथ ही आज का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ।

तेज फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, आवाज थी राहत फतेह अली खान की। कार्यक्रम की अगली पेशकश में आपको सुनवा रहे हैं जावेद अख्तर का लिखा गीत, आवाजें हैं शान और सुनिधि चौहान की, फिल्म का नाम है तारा रमपम।

बाबुल फिल्म के इसी गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने 1 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को संदिग्ध अवैध प्रवासियों के लिए हिरासत

0: सत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया। सरकार ने सीबीएसई पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए आईआईटी मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के थट्टे हक्कालू नदी में तेज बहाव के कारण 8 लोग डूबे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। अगले 7 दिनों तक यह स्थिति बनी रहेगी। और वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, गतिशीलता तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के सामने मुख्य चुनौती अपने राष्ट्रहित और इन देशों के साथ संबंधों का संतुलन बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है।
2: We want peace and stability.
1: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है।
2: Importer of energy and much of it comes from that region.
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
3: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। बैठक 26 मई को होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सी मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को बड़े अंतर से हराया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: तृणमूल कांग्रेस के तथाकथित डायमंड हार्बर मॉडल को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फलता विधानसभा सीट पर रिकॉर्ड जीत दर्ज की। पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंदर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। देवांशु पांडा को 1,49,666 वोट मिले। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान केवल 7,783 वोट के साथ चौथे स्थान पर रहे। कांग्रेस तीसरे स्थान पर है। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। इस जीत के साथ विधानसभा की 294 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या बढ़कर 208 हो गई है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
5: सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में अधिकारियों को भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं के निर्वासन तथा

0: स्वदेश वापसी प्रक्रियाओं के संबंध में गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य पुलिस अधिकारियों को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को अदालत में पेश करने के बजाय सीधे सीमा सुरक्षा बल को सौंपने का निर्देश दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल को 27 किलोमीटर भूमि सौंपने के बाद सिलीगुड़ी उपमंडल के फांसी देवा क्षेत्र में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ का काम भी शुरू हो गया है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

है स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों IIT के विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेंगे और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता तथा सर्वर के सुचारू संचालन की जाँच करेंगे। इस बीच शिक्षा मंत्री ने आज वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात की और CBSE परिणाम और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी और भुगतान से संबंधित चुनौतियों के बारे में बातचीत की। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विचार विमर्श के दौरान यह तय किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक CBSE की भुगतान प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद करेंगे। श्री प्रधान ने CBSE को अपनी भुगतान प्रणाली में पूरी तरह बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने आज सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। UPSC ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। UPSC के अध्यक्ष डॉ अजय कुमार ने परीक्षा में के सफल आयोजन के लिए UPSC टीम के साथ साथ राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के प्रयासों की सराहना की है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा के कथित दहेज हत्या मामले में दूसरा पोस्टमार्टम किया। ये पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया। 33 वर्षीय ट्विशा की 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में एक पीठ कल इस मामले की सुनवाई करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस मामले की जांच CBI को सौंपने पर सहमति व्यक्त की है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, इनमें 7 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप

इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के निकटतम परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। अगले 7 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी भीषण लू का प्रकोप जारी है। वहीं मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई इलाके इस समय भीषण लू की चपेट में हैं।
2: प्रदेश के ज्यादातर शहरों में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। मौसम विभाग ने आज टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया था। विभाग ने दतिया, निवाड़ी, सागर समेत 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत 22 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया। प्रदेश के कुल 37 जिले हीट वेव की जद में रहे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 दिनों तक गर्मी और लू से कोई राहत नहीं मिलेगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इन एपिसोड में हम प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कार्यक्रम के लिए कल सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड से जुड़े रहें। वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। पुरुषों के ग्रीको रोमन वर्ग में सुमित दलाल ने 63 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में उजुदबेक खालिम्बेक को हराया और 55 किलोग्राम में नीरज पटेल ने, वहीं रोहित बोरा ने 87 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। मुंबई में आज हुए मुकाबले में राजस्थान ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। इस बीच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अंतिम लीग मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 150 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देबांशु पांडा ने 1,00,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। देश के मध्य और उत्तर पश्चिमी भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं, आपकी रेडियो सखी ममता सिंह।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म थी ममता।

0: साथी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में, शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार नौशाद।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता, सिर्फ विविध भारती पर।

16वां साल फिल्म का गाना आप सुन रहे थे हेमंत कुमार की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, सचिन देव बर्मन का संगीत था। इसी के साथ आज का आपके लिए कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

मजरू सुल्तानपुरी का जन्म आजमगढ़ के निजामाबाद में 1 अक्टूबर सन 1919 में हुआ था। उनका असल नाम था असरार उल हसन खान। उनके पिता पुलिस विभाग में थे और वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा असरार उल हसन इंग्लिश की पढ़ाई करे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को पारंपरिक शिक्षा के लिए मदरसे में दाखिल किया और अरबी व फारसी में काबिल बनाकर आलिम का सर्टिफिकेट दिलवाया। बाद में असरार उल हसन उर्फ मजरू ने लखनऊ के तकमील उल तिब कॉलेज से यूनानी चिकित्सा की तालीम भी हासिल की और वो हकीम कहलाए, लेकिन शायराना तबीयत की वजह से वो हकीमी ठीक से कर नहीं पाए और सुल्तानपुर में रहकर गजलें लिखते रहे और मुशायरों में शिरकत करते रहे। तत्कालीन दौर में वो शायर जिगर मुरादाबादी के सानिध्य में भी रहे। हकीम से शायर बनते बनते असरार उल हसन खान की शख्सियत मशहूर शायर मजरू सुल्तानपुरी में कब तब्दील हो गई, ये खुद उन्हें भी पता नहीं चला।

सन 1945 में मजरू सुल्तानपुरी तत्कालीन बॉम्बे शहर में साबू सिद्दीक इंस्टीट्यूट में एक मुशायरे के सिलसिले में आए और अपनी पुरअसर शायरी से सुनने वालों के दिलों पर छा गए। सुनने वालों में उस समय जाने माने फिल्मकार A.R. कारदार भी शामिल थे। वो मजरू साहब से बेहद मुतासिर हुए। उन्होंने जिगर मुरादाबादी के जरिए मजरू से संपर्क किया और संगीतकार नौशाद से मजरू साहब की मुलाकात तय कर दी। दौर था 1946 के साल का, फिल्म थी शाहजहां और फनकार थे K.L.

वामपंथी विचारधारा के समर्थक मजरू सुल्तानपुरी ने 1949 में बलराज साहनी के साथ कुछ समय जेल में भी बिताया। आर्थिक रूप से कमजोर भी हुए, लेकिन सिद्धांतों से कभी भी समझौता नहीं किया।

1950 से लेकर 1960 के पूर्वार्ध तक मजरू सुल्तानपुरी भारतीय सिनेमा में अपनी गीतकारी के साथ पूरे शबाब पर रहे। सन 1965 में राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म दोस्ती के एक गीत के लिए फिल्म फेयर के श्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मजरू साहब को प्रदान किया गया।

दोस्तों, मजरूह सुल्तानपुरी ने हर बड़े संगीतकार के साथ काम किया, जैसे नौशाद, मदन मोहन, एसडी बर्मन, रोशन, रवि, शंकर जयकिशन, ओपी नैयर, उषा खन्ना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आरडी बर्मन, अनु मलिक, राजेश रोशन से लेकर आनंद मिलिंद, जतिन ललित और ए आर रहमान तक सभी के संगीत में मजरू ने अपने बोल पिरोए।

आरडी बर्मन के संगीत में भी मजरूह के गीतों ने कई बार धूम मचाई, चाहे वो फिल्म तीसरी मंजिल हो या हो जमाने को दिखाना है। सभी गानों ने सुनने वालों के कदमों को थिरकाया है।

24 मई सन 2000 को न्यूमोनिया बीमारी के गंभीर हमले से मजरू साहब उबर नहीं पाए और मौत ने आखिरकार उन्हें अपनी आगोश में ले लिया। जिंदा दिल शायरी का मतवाला और रूह को छू लेने वाले गीतों का ये रचयिता बेशक आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने गानों के जरिए सदा हमारे दिलों पर राज करता रहेगा।

0: छाया गीत
1: लग जा गले।
0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
2: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
2: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

0: एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डीजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमीडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रोक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा
2: ये आकाशवाणी है। रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आज रात प्रस्तुत है सितार वादन। कलाकार हैं पंडित हौरु शंकर भट्टाचार्य। जाने माने संगीतज्ञों वाली विशिष्ट परिवार में जन्मे पंडित हौरु शंकर भट्टाचार्य के दादा श्री लाल मोहन भट्टाचार्य जाने माने सितार वादक थे, जिन्होंने इस सांगीतिक विरासत की नींव रखी। अपने पिता श्री गंगा शंकर भट्टाचार्य के मार्गदर्शन में पंडित हौरु शंकर भट्टाचार्य ने शुरुआती तालीम हासिल की। आगे चलकर आपको विष्णुपुर घराना के श्री मुरलीधर ठाकुर से सीखने का सुअवसर भी प्राप्त हुआ। 1968 में पंडित हौरु शंकर भट्टाचार्य उस समय के बंबई यानी मुंबई रवाना हुए। आपने वहां बीनकार शैली के लिए प्रसिद्ध इंदौर घराने के प्रवाद प्रतिम सितार वादक पद्म भूषण उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खां से सितार वादन सीखना आरंभ किया। आकाशवाणी और दूरदर्शन के शीर्ष श्रेणी के कलाकार पंडित हौरु शंकर भट्टाचार्य की जाफर खानी बाज के तौर पर एक विशिष्ट पहचान है। आपने देश और विदेश के तमाम संगीत समारोहों में अपनी बेहतरीन प्रस्तुतियां दी हैं। पंडित हौरु शंकर भट्टाचार्य भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR के सूचीबद्ध कलाकार हैं। साथ ही आपको अनगिनत पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।

0: सितार वादन के अंतर्गत आप पंडित हरशंकर भट्टाचार्य से राग दरबारी सुन रहे थे। आपकी अगली प्रस्तुति है राग छायानट, जो आप आलाप से शुरू करेंगे। यह बंदिश गत में विलंबित तीन ताल तत्पश्चात द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: You are listening to Rag Darbari on the sitar by Pandit Harishankar Bhattacharya. He continues with his presentation in Rag Chayanat, which begins in Alap with a composition set to Gat in Vilambit and Drut Tintal.

0: सितार वादन के इस कार्यक्रम में आप राग छाया नट सुन रहे थे। पंडित हरशंकर भट्टाचार्य आज की इस प्रस्तुति का समापन राग जिला काफी के साथ करेंगे। शुरुआत आलाप से होगी और यह बंदिश गत में दीप चंदी, तत्पश्चात द्रुत तीन ताल में आवत है।
1: यू आर लिसनिंग टू राग छायानट इन द सितार रिसाइटल। पंडित हरशंकर भट्टाचार्य कंक्लूड्स हिज प्रेजेंटेशन विद राग जिला काफी बिगिनिंग विद आलाप। The composition of the rag is set to Gat in Deep Chandi and Dhrut Teen Taal.

0: सितार वादन के इस कार्यक्रम में आप पंडित हौरो शंकर भट्टाचार्य से राग जिला काफी सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे प्रशांतो दे रॉय।
1: You are listening to Rag Zila Kafi in the sitar recital by Pandit Harishankar Bhattacharya. He was accompanied on the tabla by Prashanto De Roy.
0: इसी के साथ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा आज रात यही संपन्न होती है।
1: And with this, we end tonight's रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा. This program was recorded at the studios of Akashvani, Kolkata.
2: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनका अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं।

0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों और को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया कि ये फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा बकरी ईद की छुट्टी की तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने आज सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। आयोग ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, जिनमें 7 महिलाएं शामिल थे। पुलिस के अनुसार शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। देश के मौसम के मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर से देर शाम तक धूप से बचने और बच्चों, बुजुर्गों तथा पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोगों को विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi today. Both the leaders reaffirmed the strength of the India-U.S. strategic partnership and outlined key areas of cooperation, including trade, energy, mobility, and regional security. Addressing a press conference following delegation-level talks, Dr. Jaishankar highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcomed the expansion in energy trade, and stressed that diversified energy supplies are vital for India's energy security.
2: Our government's fundamental responsibility is to address the needs of 1.4 billion people. Obviously, ensuring the accessibility and affordability of energy for them is our prime objective. Secretary and I therefore welcome the expansion in our energy trade in recent months. Diversified supplies are at the heart of energy security for India.
1: On the Iran conflict, Dr. Jaishankar said, both India and the United States have a strong interest in ensuring that global energy prices remain low and that there is unimpeded commerce. India's position in favor of dialogue and diplomacy, as well as safe and unimpeded maritime commerce, was also reiterated. The West Bengal government has directed all district magistrates to set up holding centers for suspected illegal foreigners and foreign prisoners awaiting deportation or repatriation in line with Ministry of Home Affairs, that is MHA, guidelines. According to an official communication issued by the Home and Health Affairs Department, districts have been asked to take necessary steps for housing individuals identified as staying illegally in the country, including those who have completed prison sentences